कौन कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई नहीं की जा सकती? अगर देखिए मन में पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो गरीबी हो या कोई दूसरी बाधा, जब कोई व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है तो वो एक दिन कामयाब होकर ही रहता है। आप कहेंगे कहना बड़ा आसान है लेकिन बरतना बड़ा मुश्किल। जी दोस्तों, बरतना मुश्किल तो होता ही है। इस दुनिया में जो कुछ आसान है वो कामयाब तो है ही नहीं। एक छोटे से दक्षिण भारतीय गांव मुकुद्दल में जन्मी अश्विता शेट्टी ने इस बात को सिद्ध कर दिया। ये एक ऐसे गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं जहां पर लड़कियों को बोझ समझा जाता है, तो ऐसे में पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना तो दूर की बात है। इसके बावजूद अश्विता ने सभी बाधाओं को पार किया। शिक्षा के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि आज वो कई ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम है द बोधि ट्री। अश्विता बचपन में अपने परिवार के साथ बीड़ी बनाने का काम किया करती थी। सोचिए दोस्तों, जिस गांव में अश्विता रहती थी वहां की महिलाओं की हालत बहुत खराब थी। एक तो अशिक्षा और ऊपर से वो पुरुषों द्वारा भी सताई जाती थी। कहीं ना कहीं इससे उन्हें कुछ करने की प्रेरणा मिल गई और बस पढ़ने का जुनून सवार हो गया। दरअसल 13 साल की उम्र में अमेरिकी लेखिका हेलेन केलर की आत्मकथा उन्होंने पढ़ी। बस उसे पढ़कर तो उन्हें एहसास हुआ कि उनमें खुद के जीवन को बदल देने की ताकत तो है। उन्होंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई जिससे उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। वो बताती हैं कि उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय शिक्षा के, इसलिए वो हार नहीं मान सकती थी। शिक्षा के जरिए अश्विता ने अपनी किस्मत बदल डाली और आज वो पूरी दुनिया के लिए बड़ी प्रेरणा की तरह काम कर रही हैं। वो कितनी ही महिलाओं को पढ़ने में मदद भी करती हैं। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के बारे में, जो मशहूर दर्शन शास्त्री थे और हमारे देश के पूर्व माननीय राष्ट्रपति भी थे। अपना देश बहुत आगे निकल आया है। अब देश में संपन्नता के अनगिनत ऐसे डेरे हो गए हैं जहां खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पैसा पानी की तरह बह रहा है, निरंतर महोत्सव चलता रहता है। पर एक समय वो भी था जब भारत में संपन्नता के बस कुछ ही डेरे थे। देश अभावों का जंगल हुआ जा रहा था। अंग्रेज जो भारत से लूटते थे, उसका महज 4% ही यहां के लोगों पर खर्चा करते थे। सेहत और शिक्षा पर ना बराबर का खर्च होता था। तो 1901 में देश में सिर्फ 186 कॉलेज और विश्वविद्यालय थे। पूरे देश में मुश्किल से 20-25 हजार ही कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होते थे। कभी विश्व गुरु रहे देश में सिर्फ 5.4% साक्षरता खूब मुंह चिढ़ाती थी। लाखों छात्र चाहकर भी पढ़ नहीं सकते थे। तमिलनाडु के इस तेलुगु लड़के के साथ भी यही स्थिति रही। वो स्कूल पास कर चुका था, आगे पढ़ने के लिए ज्यादा धन चाहिए था और पिताजी इस स्थिति में थे नहीं कि पढ़ा पाते। वो अपने बेटे को सलाह देते रहे कि बेटे पुजारी बन जाओ, सम्मान का काम है, लोगों के साथ उठना बैठना भी आसान हो जाता है। स्कूली शिक्षा के बाद पिताजी तो क्लर्क बन गए थे, लेकिन भला क्लर्क के काम में क्या कमाई होती? मुश्किल से 10 रुपए तनख्वाह मिलती थी। कमाई का कंबल इतना छोटा था कि पैर ढको तो चेहरा खुला रह जाता था और चेहरा ढको तो पैर खुले। अब ऐसे में समस्या ये थी कि पुत्र को कॉलेज पढ़ने कैसे भेजा जाए, कहां से जुटेंगे पैसे? बेहतर है कि पुत्र पुजारी ही बन जाए, लगे हाथों कुछ कमाई भी शुरू हो जाएगी। पुजारी बनने का एक फायदा यह भी था कि गांव में रहने से ही काम चल जाता। पढ़ाई के साथ एक झमेला यह भी था कि पता नहीं क्या क्या याद रखते हैं बच्चे, पर अपने घर का रास्ता ही भूल जाते हैं। ऐसे में पुजारी बन जाना ही ठीक है। लेकिन लड़के के मन में उच्च शिक्षा की आकांक्षा थी, वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दिन रात जुटकर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से छात्रवृत्ति का इंतजाम कर लिया। लेकिन सिर्फ छात्रवृत्ति से क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे तो निकल जाएंगे, पर कहां से आएंगे किताबों के लिए पैसे? एक एक रुपए की किताब बिकती थी। एक अखबार या जर्नल भी 5 पैसे से ज्यादा का पड़ता था। उस दौर में किताबें दुर्लभ भी थी, कम छपती थी। कक्षाएं शुरू हो जाती थीं और 2-2 महीने तक बहुत हाथ पैर मारने के बाद किताबें हाथ लगती थीं। कहां से आती किताबें? कौन देगा किताबें? अब संयोग ही था कि उन्हीं दिनों दूर के एक भाई ने दर्शन शास्त्र में स्नातक किया था। उनके पास किताबें थीं और मुफ्त में मिल भी सकती थीं। जब दर्शन शास्त्र की पुरानी किताबें इस लड़के के हाथ में आ गईं, तब लगा कि चलो उच्च शिक्षा बस इन किताबों को पढ़ने भर से दूर है। गरीबी में एक बड़ा सहारा मिल गया। भौतिक विज्ञान न सही, दर्शन शास्त्र ही सही। मौका मिला है तो इसी में कुछ कर गुजरेंगे। मुफ्त में मिली किताबों ने न केवल उच्च शिक्षा की राह को आसान बना दिया, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल दी। बेटे ने शुल्क और पुस्तकों का जुगाड़ कर लिया तो फिर कैसे रोक पाते पिता? कुछ ही दिनों में दर्शन शास्त्र में इतना मजा आने लगा कि अंग्रेज शिक्षक भी उस छात्र को सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम से जानने लगे। स्नातक कक्षा में उनके पहले ही शोध का लक्ष्य इस आरोप का जवाब देना था कि वेदांत व्यवस्था में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। अंग्रेज शिक्षक अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर भारतीय दर्शन की खूब आलोचना करते थे। ये बात राधाकृष्णन को अच्छी नहीं लगती थी। स्वामी विवेकानंद की धारा में बहते हुए राधाकृष्णन ने ठान लिया कि शास्त्रों के गौरव को लौटाना होगा और दुनिया को बताना होगा। बस कुछ ही वर्षों में वो भारत के दिग्गज दर्शन शास्त्रियों में से एक माने जाने लगे। शिक्षकों के ये शिक्षक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। राष्ट्रभक्त
और बंधुता प्रेमी राधाकृष्णन मॉस्को में भारत के राजदूत भी रहे। उन्होंने सोवियत नेता स्टालिन को शीत युद्ध से बचने की सलाह दी थी। तब स्टालिन ने कहा, ताली दोनों हाथों से बजती है। तब विद्वान दर्शन शास्त्री ने जवाब दिया, हां दो हाथों से बजती है, पर शांति प्रिय देश होने के नाते सोवियत संघ कम से कम अपने हाथ खींच तो सकता है। वो देश के उपराष्ट्रपति बनाए गए और फिर राष्ट्रपति, पर वो गरीबी की अपनी बुनियाद को कभी नहीं भूले। उन्हें जब लगा कि राष्ट्रपति के रूप में खर्च चलाने के लिए सिर्फ 2,500 रुपए ही काफी हैं, तो उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें तनख्वाह के रूप में सिर्फ 2,500 रुपए ही चाहिए, 10,000 रुपए की जरूरत नहीं है, और बाकी रुपये प्रधानमंत्री कोष में डाल दिए गए ताकि किसी गरीब तक कोई मदद पहुंचाई जा सके।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और सुनते रहिए।
1: ईश्वर ने शुरुआत में ही मनुष्य को इस तरह बनाया था कि उन्हें न खाने पीने की आवश्यकता थी, न काम करने की, न कपड़े लत्ते की और न घर में रहने की। उन दिनों सब तंदुरुस्त हुआ करते थे और उनकी औसत आयु भी 100 वर्ष के आसपास हुआ करती थी। इसकी वजह यह थी कि लोगों में कोई बीमारी थी ही नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता था कि बीमारी कोई चीज है। ईश्वर मनुष्य को बनाकर निश्चिंत हो गए और उन्हें लगा कि संसार में सब अच्छा ही रहेगा। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर चलकर देखें कि इंसान रह कैसे रहा है। तब वो पृथ्वी पर आए। उन्हें यह देखकर बेहद हैरानी हुई कि मनुष्य सुखी नहीं था। वे रात दिन आपस में लड़ते झगड़ते थे। उन्हें सिर्फ अपने दुख सुख की चिंता थी और इसके लिए हर कोई दूसरे को परेशान किया करता था। ऐसा करके हर एक ने अपना जीवन विषाद पूर्ण बना दिया था और वे रात दिन संसार को ही कोसने में लगे रहते थे। बहुत सोचने के बाद ईश्वर को समझ में आया कि शायद इंसान अलग अलग रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है, इस वजह से शायद वह अपने ही जीवन के बारे में सोचता रहता है। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर मनुष्य का कोई ना कोई काम हो जिसके बगैर उसका जीवन ना चल सके। तो अब मनुष्य के पास काम भी आ गया। उन्हें खेती करनी होती थी, अपने खाने के लिए अनाज उगाना पड़ता था, साथ ही सर्दी बारिश धूप से बचने के लिए घर बनाना पड़ता और फिर तन ढकने के लिए सूत भी काटना पड़ता। ईश्वर ने सोचा कि ये सारे काम अकेला इंसान तो नहीं कर सकता, इसके लिए उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। इस तरह मिलकर काम करने से उनमें एकता की भावना पैदा होगी और ये दूसरे के जीवन की कीमत समझ सकेंगे। औजार बनाना, मकान बनाना, लकड़ी काटना, ढोना, अनाज बोना, सूत काटना, कपड़े बनाना, ये सभी काम अकेले कर पाना तो मनुष्य के लिए संभव था ही नहीं। इसी से मनुष्य को समझ में आ जाएगा कि जितनी अच्छी तरह वह दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करेगा उतना ही सुखी रह सकेगा। अंत में उसे एकता की कीमत पता चल जाएगी। ईश्वर यह सब प्रबंध करके निश्चिंत हो गए। कुछ समय बीता तो वह फिर से मनुष्यों को देखने आए कि वो लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं या नहीं, उनका जीवन सुखमय हुआ या नहीं। वो ये जानकर और दुखी हो गए कि मनुष्यों का जीवन तो पहले से भी बदतर हो गया था। वे साथ साथ काम तो करते थे क्योंकि ऐसा करना जरूरी था, मगर सब एक साथ नहीं थे। उन्होंने छोटे छोटे दल बना लिए थे। हर दल दूसरे के काम छीनने की कोशिश में लगा रहता था। वे एक दूसरे के काम में विघ्न डालकर अपनी शक्ति और समय को लड़ाई झगड़े में नष्ट कर रहे थे। सभी की दशा बुरी थी। ईश्वर को लगा यह व्यवस्था भी तो ठीक नहीं है। तब उन्होंने ऐसा उपाय किया कि मनुष्य को मृत्यु का सामना करना पड़े और मृत्यु भी ऐसी हो कि उसके समय का पता ही ना चले, कोई भी अचानक कहीं भी मर जाए। ईश्वर ने इस बात की घोषणा मनुष्य के बीच में कर दी। ईश्वर को आशा थी कि किसी भी समय मृत्यु आ जाने की बात जानने पर मनुष्य अपने जीवन के अनिश्चित समय को बर्बाद नहीं करेगा और क्षणिक लाभ के लिए आपस में झगड़ा नहीं करेगा। परंतु परिणाम उल्टा ही रहा। जब ईश्वर मनुष्यों की दशा को पता लगाने के लिए वापस लौटे तो देखा कि उनकी दशा तो इस बार भी बुरी ही थी। मनुष्यों में जो अधिक बलशाली थे उन्होंने इस मृत्यु वाले फलसफे का फायदा उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था में किसी की भी मौत कहीं भी आ सकती थी, तो ऐसे में सबल लोगों ने निर्बलों को मार डाला और बहुतों को मारने की धमकी देकर प्रताड़ित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बलवान लोग और उनके परिवार वाले खुद तो कुछ करते नहीं थे, लेकिन निर्बलों को खटाते रहते थे। धनी लोग आलस्य और बेकारी के कारण दुखी थे, जबकि गरीबों को अपनी ताकत से ज्यादा काम करना पड़ता था। उन्हें न तो अपने लिए और न परिवार के लिए समय मिल पाता था। यही नहीं, दोनों पक्ष एक दूसरे से डरते और असुरक्षित भी थे। एक दूसरे से वो नफरत करने लगे। तो कुल मिलाकर मनुष्य का जीवन पहले से भी अधिक दुखी हो चुका था। यह सब देखकर ईश्वर असमंजस में पड़ गए। मनुष्यों की दशा में सुधार करने की इच्छा से उन्होंने एक आखिरी उपाय करने की ठानी। मौत जैसी व्यवस्था करने के बाद उन्होंने मनुष्यों के बीच रोग फैला दिए। हर मनुष्य को तरह तरह के रोगों का सामना करना पड़ता। ईश्वर ने सोचा, जब मनुष्य बीमार होगा, शरीर और मन से लाचार होगा, तो उसे दूसरों की तकलीफों के बारे में पता चलेगा। तब उसे समझ में आएगा कि जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें बीमारों पर करुणा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि जब वो खुद रोग के कारण कष्ट भोग रहे हों तो दूसरे लोग उसी तरह उनकी भी मदद करें। ईश्वर इस व्यवस्था के बाद निश्चिंत थे कि इसका मनुष्य जाति को जरूर लाभ होगा। सारा प्रबंध करके वो वापस अपने लोक में चले गए। काफी समय बीतने के बाद वो एक बार फिर से पृथ्वी पर देखने के लिए लौटे कि उनका बनाया मनुष्य अपने घर, कपड़े, अनाज, रोग और मृत्यु के साथ किस तरह जीवन यापन कर रहा है। क्या वो अब सुखी है, या फिर अब भी उसके पास ढेर सारी शिकायतें हैं? कहना ना होगा कि इस बार मनुष्य की हालत देखकर तो ईश्वर भी पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने देखा कि किस तरह तरह के रोगों के हमला होने के कारण लगभग सभी मनुष्य कष्ट भोग रहे हैं और उनके जीवन का सुख चैन गायब हो चुका है। वे पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगे हैं। ईश्वर ने जिन रोगों को मनुष्य के बीच इसलिए फैलाया था ताकि उनके बीच मेलजोल, भाईचारा बढ़े, वही रोग उन्हें अलग अलग कर रहे थे। जिन मनुष्यों में दूसरों से अपना काम कराने की क्षमता थी, वे रोगी होने पर निर्बलों से अपनी सेवा करा लेते थे, लेकिन दूसरों के बीमार पड़ने पर खुद कभी भी उनकी मदद को नहीं जाते थे। यह अजीब सी व्यवस्था थी कि यहां भी निर्मल पिस रहा था। इस तरह बलशाली और निर्बल के बीच की खाई और बढ़ती जा रही थी। निर्बलों को बलवान के लिए काम करना पड़ता। इसके अलावा जब भी वे बीमार होते तो भी उन्हें धनवानों की सेवा करनी पड़ती। इन सब से इतना थक जाते कि ना तो खुद पर और ना अपने परिवार पर ही ध्यान दे पाते। उन्हें अपने ही घर के रोगियों की देखभाल या मदद करने का वक्त ही ना मिल पाता। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा दुखदायी पहलू यह था कि निर्धन रोगियों और उनके कष्ट से भरे दृश्य धनवानों के भोग विलास में बाधा न डाल सकें, इसके लिए कुछ अलग घरों की व्यवस्था कर दी गई। यहां निर्धन रोगियों को रख दिया गया, यहीं पड़े पड़े वो मर जाते थे। विडंबना यह थी कि मरते दम तक उनके प्रिय संबंधी उनके पास नहीं आ पाते थे। भाड़े पर रखे हुए कुछ लोग उनके अंतिम समय में उनके पास रहते, जिन्हें उनके सुख दुख या पीड़ा के बजाय अपने वेतन की परवाह होती। वे बिना किसी सहानुभूति के मरीजों की सेवा करते, साथ ही उनसे घृणा भी करते। इसके अलावा बहुत से रोगों को संक्रामक समझकर लोग न सिर्फ उन रोगियों से बल्कि उनकी सेवा करने वालों से भी दूर रहा करते। इस तरह की व्यवस्था ने इंसान को कई तरह से बांट दिया और वो बेहद दुखी हो गया। तब ईश्वर ने सोचा कि जब मेरे इतने उपायों के बाद भी मनुष्य एकता का महत्व नहीं समझ पाया है, वह नहीं देख पाया है कि उसे वास्तविक आनंद कैसे मिल सकता है, तो फिर उसे उसकी हाल पर ही छोड़ देना ठीक है। शायद बहुत दुख सहने के बाद उसे थोड़ी अक्ल आ जाए। अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था और मनुष्य से आहत होकर ईश्वर इस बार यूं ही वापस चले गए। कहते हैं कि इस तरह मनुष्य हमेशा के लिए अकेला और बेसहारा हो गया। बहुत समय तक ऐसे ही रहने के बाद उसे समझ में आया कि उसे सुखी होना चाहिए और वो सुखी रह सकता है। उसे समझ आने लगा कि उनके सुख का दायित्व उन्हीं पर है, उन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं है। अभी थोड़े ही दिन हुए जब कुछ मनुष्यों ने काम की अहमियत को जाना, उन्होंने समझा कि काम के आधार पर मनुष्य को कमतर या उच्चतर नहीं समझना चाहिए। काम से हर मनुष्य को सुख मिलना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य के बीच एकजुटता का भाव बना रहे। अब वो समझ गए हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए जीवन का जितना भी समय हमारे हाथ में है, उसका प्रत्येक साल, महीना, दिन, घंटा और मिनट हमें प्यार और सौहार्द के साथ बिताना चाहिए। वे समझने लगे हैं कि रोग हमें एकता की ताकत समझाने के लिए आते हैं, इसलिए दूसरे की दुख, बीमारी और कष्ट में उनकी मदद करना हर इंसान का कर्तव्य है।

0: एक बार एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक आदमी जो कि दरअसल भिखारी था वो आता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए खिसक जाता था। एक दिन जब वो खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि ये भाई जी भीड़ का लाभ उठाएगा और देखिएगा बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह भाई ने इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताइए तो सही कि आपने इस व्यक्ति को भला जाने क्यों दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, भाई आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने देखा है उसे और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वो रेस्टोरेंट के सामने बैठा रहता है और जब ये देखता है कि भीड़ हो गई तो वो चुपके से खाना खाने आता है और खा के निकल जाता है। मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं है, उसे कभी पकड़ा भी नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इसी भाई की वजह से है। कैसे? देखिए, वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना ही करता रहता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ इकट्ठी हो तो मैं भी जल्दी से अंदर जाकर कुछ खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आता है तो हमेशा यहां भीड़ ही होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसी की प्रार्थना का असर है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूं, क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हों।
1: आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

तो दोस्तों, भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं।

भरपूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आइसलैंडिक वुमेन्स स्ट्राइक, एक दिन ने बदली सोच। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक दिन, हाँ बस एक दिन, पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है? हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स, फ्लावर्स, स्पीचेस, अप्रिसिएशन मैसेजेस और क्या नहीं, लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे एक लंबी कहानी है, स्ट्रगल की कहानी, वॉइस की कहानी और एक ऐसे दिन की कहानी जिसने सबको हिला दिया। 1975, देश आइसलैंड। अब आइसलैंड छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो वहां हुआ वो दुनिया की सबसे पावरफुल इक्वालिटी मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड की लगभग 90% वुमेन ने डिसाइड किया कि आज हम काम नहीं करेंगे। और ध्यान दीजिए, सिर्फ ऑफिस का काम नहीं, घर का काम भी नहीं, ना कुकिंग, ना क्लीनिंग, ना चाइल्ड केयर, ना ऑफिस अटेंडेंस। एक दिन के लिए वुमेन सिंपली स्टॉप्ड। इमेजिन कीजिए, स्कूल्स डिस्टर्ब हो गए, ऑफिसेज हाफ एम्प्टी हो गए, फैक्ट्रीज रुक गई, बच्चे फादर्स के साथ ऑफिसेज में बैठे हुए, टेलीफोन एक्सचेंजेस पर क्योस, न्यूज़पेपर्स लेट और क्या नहीं। एक दिन में पूरे देश को समझ आ गया कि अनपेड लेबर होता क्या है, इनविजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वुमेन के बिना सिस्टम कैसे कोलैप्स हो सकता है। और सबसे पावरफुल बात, ये स्ट्राइक वायलेंट नहीं थी, ये अग्रेसिव भी नहीं थी, ये डिग्निफाइड थी, साइलेंट थी, लेकिन इम्पैक्ट अर्थ शैटरिंग। उस स्ट्राइक के सिर्फ एक साल बाद 1976 में आइसलैंड ने इक्वल राइट्स एक्ट पास किया और 1980 में आइसलैंड ने दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट दी, विद दिस फिन बोगा डोटीर। सोचिए, एक दिन की कलेक्टिव एक्शन ने पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया। और इसी दौर में 1975 को यूनाइटेड नेशंस ने भी ऑफिशियली 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में अडॉप्ट किया। वुमेन्स डे सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब वुमेन यूनाइट होती हैं तो नरेटिव्स शिफ्ट होते हैं, और जब हम वुमेन्स डे पर एम्पावरमेंट बोलते हैं तो याद रखिए, एम्पावरमेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, वो क्लेम किया जाता है। आइसलैंड की वुमेन ने हमें यही सिखाया कि कभी कभी दुनिया को समझाने के लिए लाउड स्पीच नहीं, सिर्फ एक साइलेंट पॉज काफी होता है। पॉज कर देखिए,

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मैंने डिसाइड किया मैं डिजिटल डिटॉक्स करूंगी। फोन साइड पे रखा, डीप ब्रेथ ली। 5 मिनट बाद ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने फिर से फोन उठाया और चेक किया लोग क्या कर रहे होंगे मेरे बिना। फोन उठाया, किसी ने कोई मैसेज नहीं किया था। तब मुझे समझ आया मेरा डिटॉक्स नहीं, दुनिया का पीस चल रहा है।
2: मैं उनका चेहरा देखकर ही समझ जाती थी कि वो मुझे हंसाने की कोशिश करने वाले हैं, और पहले से ही कह देती थी, हाँ किशोरदा, पहले गाना फिर हंसना। वाकई उनके साथ गाने में बड़ा मजा आता था।

इंडिया की असली शेरनियां, ग्राउंड लेवल हीरोज, या कहूं शीरोज। दोस्तों, वुमेन्स डे के दिन हम अक्सर सेलिब्रिटीज को सेलिब्रेट करते हैं, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, सीईओज। लेकिन आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूं उन वुमेन से जो हेडलाइंस में कम आती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रेवोल्यूशन क्रिएट करती हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के गांव से। नाम बीना देवी, लोग उन्हें कहते हैं मशरूम महिला। अब मशरूम सुनते ही आपको लगता होगा छोटा सा कोई क्रॉप, लेकिन बीना देवी ने मशरूम को लाइवलीहुड रेवोल्यूशन बना दिया। उन्होंने खुद मशरूम कल्टीवेशन सीखा, फिर गांव की औरतों को ट्रेनिंग दी, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, फिर मार्केट लिंकेजेस क्रिएट किए। आज उनके इनिशिएटिव्स हजारों फैमिलीज की इनकम इंप्रूव कर रहे हैं। उन्हें मिला नारी शक्ति पुरस्कार, लेकिन अवार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कॉन्फिडेंस। एक गांव की वुमन ने यह प्रूफ किया कि एम्पावरमेंट शब्द से नहीं, स्किल से आता है। अब एक और कहानी, मालविका अय्यर। चाइल्डहुड एक्सीडेंट में दोनों हाथ खो दिए, लाइफ रुक सी गई, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी रीराइट की, फिर से लिखी। जी हाँ, फिर से लिखी। आज वो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, यूएन फोरम्स पर बोल चुकी हैं। उन्होंने एक बार कहा था, डिसेबिलिटी इज नॉट इनेबिलिटी, इट इज अ डिफरेंट एबिलिटी। क्या बात है। फिर एक और नाम, कलावती देवी जी का, बिहार की ही एक और वुमन। उन्होंने मैसोनरी सीखी और 4000 से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए स्पेशली वुमेन सेफ्टी के लिए। सोचिए, सैनिटेशन, डिग्निटी, सेफ्टी, ये सभी एम्पावरमेंट के सही मायने हैं, सही मकसद हैं, सही मतलब हैं। वुमेन्स डे सिर्फ ग्लास सीलिंग तोड़ने की बात नहीं करता दोस्तों, ये मड हाउसेस में डिग्निटी बनाने की भी बात करता है। इंडिया में आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुके हैं, पुलिस फोर्सेस में वुमेन रिप्रेजेंटेशंस ग्रो हो रहे हैं, स्टार्टअप्स वुमेन लेड हो रहे हैं। पर सबसे बड़ा चेंज क्या है जानते हैं? माइंडसेट। आज की लड़की सिर्फ परमिशन नहीं मांगती, वो पार्टिसिपेशन क्लेम करती है। और वुमेन्स डे हमें ये याद दिलाता है कि हर विलेज, हर मोहल्ला, हर शहर में एक बीना देवी है जो बस एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही है। देकर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: लड़कियां बोलती हैं, मैं बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, और साइंस आज तक रिसर्च कर रहा है कि ये 5 मिनट अर्थ के हैं या जुपिटर के, क्योंकि जुपिटर का एक दिन 10 घंटे का होता है। बस वही वाला 5 मिनट होता होगा ये शायद।

राइट टू सिट, एक कुर्सी की क्रांति। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत अजीब सा सवाल करना चाहती हूँ। आपने कभी किसी मॉल, किसी कपड़े की दुकान या ज्वेलरी स्टोर में सेल्स वुमन को नोटिस किया है? शायद नहीं। वो पूरा दिन खड़ी रहती है, कभी 6 घंटे, कभी 8, कभी 10 घंटे तक। और हम बस आते हैं, कपड़े ट्राई करते हैं, उल्टे सुलटे जैसे भी उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन केरला की कैलिकट शहर में एक औरत ने एक दिन ये डिसाइड किया कि ये नॉर्मल नहीं है। उनका नाम है विजी पली थोड़ी। उन्होंने देखा कि शॉप्स में मेल स्टाफ को चेयर्स मिलती हैं, पर फीमेल सेल्स स्टाफ को पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है। रीजन, कस्टमर के सामने बैठना अच्छा नहीं लगता। सोचिए, डिग्निटी का मेजर भी जेंडर के हिसाब से। विजी खुद एक वर्कर थी, उन्होंने इस इनइक्वालिटी को अनएक्सेप्ट किया। उन्होंने डिमांड की बस एक सिंपल चीज की, राइट टू सिट। जी हाँ, बैठने का अधिकार। कुर्सी मांगना कोई रेवोल्यूशन लगता है? नहीं ना। लेकिन जब सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो तो छोटी छोटी डिमांड्स भी क्रांति बन जाती हैं। विजी ने वुमेन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, मीटिंग्स की, प्रोटेस्ट्स किए, मीडिया को इन्वॉल्व किया, शॉप ओनर्स को कन्फ्रंट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने वुमेन को ये एहसास दिलाया कि कंफर्ट भी इम्पोर्टेंट है, उनका राइट है। हमें लगता है एम्पावरमेंट मतलब सीईओ बनना, रॉकेट साइंटिस्ट बनना या पुलिस ऑफिसर बनना। बिल्कुल सही, पर कभी कभी एम्पावरमेंट का मतलब होता है मुझे बैठने दो। लॉन्ग वर्किंग आवर्स में खड़े रहने से हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि वेरिकोस वेन्स, जॉइंट पेन, क्रॉनिक फटीग। पर इससे भी ज्यादा डेंजरस होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट। विजी ने ये नॉर्मलाइजेशन तोड़ दिया। आखिरकार केरला में पॉलिसीज चेंज हुई, शॉप्स को सीटिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ी। एक कुर्सी सिर्फ फर्नीचर नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट थी। और 2018 में बीबीसी ने विजी को अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में इंक्लूड किया। जी हाँ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एक कुर्सी के लिए लड़ी गई लड़ाई के लिए। दोस्तों, वुमेन्स डे पर जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो सिर्फ बोर्डरूम्स की नहीं, रिटेल फ्लोर्स की भी बात करें, क्योंकि चेंज तब कंप्लीट होता है जब वो हर लेवल पर हो। आज अगर आप किसी दुकान में जाओ और देखो कि सेल्स वुमन बैठी है, तो याद रखना वो कुर्सी किसी ने जीती है, और हर जीती हुई कुर्सी एक जीती हुई इज्जत होती है। देखकर देखो।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय। पहले लोग घर की घंटी बजाते थे, अब मोबाइल की घंटी बजती है सारा दिन। पहले लोग कहते थे कौन आया है, अब कहते हैं कौन ऑनलाइन आया है। रिश्ते भी अब ऐसे ही हो गए हैं, सामने बैठकर बात नहीं करेंगे पर लास्ट सीन जरूर चेक करेंगे।

0: है।
1: मलाला, एक आवाज जो गोली से भी ज्यादा पावरफुल थी। दोस्तों, कभी कभी दुनिया बदलने के लिए आर्मी चाहिए नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक आवाज काफी होती है। ये कहानी है एक लड़की की जो स्कूल जाना चाहती थी, बस इतनी सी बात, छोटी सी बात। ईयर 2012, एक 15 साल की लड़की मलाला यूसुफ़ज़ई, उसने सिर्फ कहा था कि लड़कियों को पढ़ने का हक है। सिंपल सी बात है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। तालिबान ने अनाउंस कर दिया कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए और लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। सोचिए, जब आपके सपने पर किसी और का हक हो जाए, कोई और उस पे अपनी मोहर लगा दे, तो कैसा लगता होगा? मलाला ने ब्लॉग लिखना शुरू किया। बीबीसी उर्दू के लिए अनोनिमसली लिखती गई और बस लिखती गई। वो बताती थी कि कैसे स्कूल्स बंद हो रहे थे, कैसे लड़कियां डर के मारे घर में बैठी हैं, कैसे एजुकेशन एक लग्जरी बन गई है। और फिर 9th अक्टूबर 2012 स्कूल बस एक मास्क्ड गनमैन चढ़ा, उसने पूछा मलाला कौन है, और फिर गोली चली। एक 15 साल की बच्ची को सिर्फ इसीलिए शूट कर दिया गया क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। मलाला बच गई, सर्जरी हुई, वो यूके शिफ्ट हुई, और फिर उसने चुप रहना चूज नहीं किया, कभी नहीं। उसने दुनिया के सामने खड़े होकर कहा, वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक कलम पूरा देश बदल सकता है, पूरी दुनिया बदल सकता है। जिसे चुप कराने के लिए गोली चलाई गई थी, उसकी आवाज और तेज हो गई। ये सिर्फ हिम्मत की कहानी नहीं है, ये एजुकेशन के हक की कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि लड़कियां सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, दुनिया की जिम्मेदारी भी संभाल सकती हैं। मलाला ने मलाला फंड शुरू किया, जो वर्ल्ड ओवर गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करता है। आज भी दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, और हर बार जब कोई लड़की क्लासरूम में एंटर करती है, वो सिर्फ खुद नहीं, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को एम्पावर करती है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम अक्सर सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस स्टोरीज, लेकिन मलाला हमें एक और चीज सिखाती है, रेजिस्टेंस। कभी कभी फेमिनिज्म लाउड स्लोगन्स नहीं होता, कभी कभी फेमिनिज्म बस यही होता है कि मन में डर को जीते और उस डर से आगे बढ़ें। मैं डर के नहीं रहूंगी, बंद के नहीं रहूंगी, और कोई मुझे रोक नहीं सकता अपने हक की लड़ाई लड़ने से। और अगर आप गौर करें, मलाला की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये हर उस जगह की कहानी है जहां लड़कियों को कहा जाता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। और हर बार जब कोई लड़की कहती है मैं ट्राई करूंगी, वहीं से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। दोस्तों, वुमेन्स डे सिर्फ रोजेस और विशेस का दिन नहीं, ये उन आवाजों को याद करने का दिन है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी हुई, गिरी, संभली, फिर खड़ी हुई। और अगर आज भी किसी घर में एक लड़की अपने सपने के लिए लड़ रही है, तो याद रखिए, हर मलाला पहले एक नॉर्मल लड़की होती है जिसकी बहुत नॉर्मल सपने होते हैं और इच्छाएं होती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है, सिर्फ इतना सा, कि वो डर से बड़ा सपना चूज करती है। तो आज आपके पास कोई लड़की अगर है जो पढ़ना चाहती है, कुछ नया सीखना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, उसे रोकिए मत, उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए। क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक लाइफ नहीं बदलती, एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज उसके साथ आगे बढ़ता है। और शायद इसीलिए एक आवाज, एक पेन, एक क्लासरूम कभी कभी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज होती है। इस्तेमाल कर कर देखिए।

डेनाली, जब महिलाओं ने सिर्फ पहाड़ नहीं सोच भी चढ़ी। दोस्तों, कभी कभी सबसे ऊंचा पहाड़ पत्थर का नहीं होता, सोच का होता है। 1970, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन डेनाली, और एक ऑल वुमेन एक्सपेडिशन टीम ने ये डिसाइड किया, हम समिट करेंगे। उस जमाने में माउंटेनियरिंग सिर्फ मेल डोमिनेटेड थी। लोग कहते थे वुमेन फिजिकली वीक होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हैंडल नहीं कर सकती। और ये सिर्फ वेदर का चैलेंज नहीं था, ये परसेप्शन का चैलेंज था। ग्रेस होमॉन और उनकी टीम ने ट्रेनिंग की, प्रेपरेशन की, और फिर डेनाली के बेस कैंप तक पहुंची गई। माइनस टेम्परेचर्स, हैवी इक्विपमेंट्स, स्नो स्टॉर्म्स, एल्टीट्यूड सिकनेस का स्ट्रेस, पर उनसे ज्यादा हैवी था सोसाइटी का सारा डाउट। हर स्टेप के साथ वो सिर्फ माउंटेन क्लाइंब नहीं कर रही थी, वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही थी। और जब उन्होंने समिट अचीव किया, वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल विक्ट्री नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। उन्होंने प्रूव किया करेज का जेंडर नहीं होता, स्ट्रेंथ स्टीरियोटाइप से नहीं डिसाइड होती। आज हम वुमेन माउंटेनियर्स को एवरेस्ट, K2, अंटार्कटिका एक्सपेडिशंस में जाते अक्सर देखते हैं, पर ये रास्ता किसी ने सबसे पहले बनाया था ये शायद बहुत कम ही लोगों को पता है। और हर समिट के पीछे एक अनसीन स्ट्रगल होता है। डेनाली एक्सपेडिशन ने माउंटेनियरिंग कम्युनिटी को फोर्स किया रीथिंक करने के लिए। क्या हम टैलेंट को जेंडर के लेंस से देख रहे हैं? वुमेन्स डे पर जब हम ग्लास सीलिंग की बात करते हैं तो याद रखिए, कुछ सीलिंग स्नो से बनी होती हैं और कुछ माइंडसेट से। और जब वुमेन उन दोनों को तोड़ देती हैं, तो दुनिया का नया एल्टीट्यूड मिलता है, एक नई ऊंचाई मिलती है। दोस्तों, हर वुमन की लाइफ में एक डेनाली होता है, एक चैलेंज जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, पर जब वो करती हैं तो सिर्फ अपनी नहीं पूरी जेनरेशन की हाइट को बदल देती हैं, बढ़ा देती हैं। और शायद इसीलिए वुमेन्स डे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, एलिवेशन है। करके देखिए,

frontline fearless, women who wear courage. दोस्तों, जब हम वुमेन्स डे की बात करते हैं तो हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको उन वुमेन की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो यूनिफॉर्म पहनती हैं, पुलिस यूनिफॉर्म। दिल्ली पुलिस में आज हजारों वुमेन ऑफिसर्स सर्व कर रही हैं। सोचिए, नाइट पेट्रोल, रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्राउड कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशंस, ये सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं है, ये रिस्क डिस्क्रिप्शंस हैं। सोच कर देखिए। एक ऑफिसर ने शेयर किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में जब उन्होंने एक छोटी बच्ची को रेस्क्यू किया और उसे उसकी माँ के गले लगते देखा तो सारी थकान खत्म हो गई। उन्होंने कहा, फियर तो हर ड्यूटी का पार्ट है, लेकिन पर्पस उससे बहुत बड़ा है। वुमेन ऑफिसर्स को सिर्फ क्रिमिनल्स का सामना नहीं करना पड़ता, कभी कभी स्टीरियोटाइप्स का भी करना पड़ता है। फील्ड वर्क टफ है, नाइट ड्यूटी सेफ नहीं, फैमिली का क्या, लेकिन आज वुमेन ऑफिसर्स क्राइम ब्रांचेस लीड कर रही हैं, साइबर सेल्स हैंडल कर रही हैं, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स चला रही हैं। और सिर्फ ये दिल्ली की कहानी नहीं, इंडियन एयरफोर्स में वुमेन फाइटर पायलट्स, आर्मी में वुमेन कमांडिंग ऑफिसर्स, स्पोर्ट्स में वुमेन वर्ल्ड चैंपियंस, स्टेम फील्ड्स में साइंटिस्ट्स, और हर जगह एक चीज कॉमन है, डिटर्मिनेशन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हिस्ट्री लेबर राइट्स मूवमेंट से शुरू हुई थी, वोटिंग राइट्स, इक्वल पे, फेयर वर्किंग आवर्स। आज हम उस जर्नी का एक्सटेंशन देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन, लीडरशिप, विजिबिलिटी। लेकिन सफर कंप्लीट नहीं है अभी, जेंडर पे गैप एग्जिस्ट करता है, बहुत बड़ा पे गैप, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए वुमेन्स डे सिर्फ सेलिब्रेशन का नाम नहीं, कॉन्वर्जेशन भी है। जब एक पुलिस वुमन रेस्क्यू करती है, एक साइंटिस्ट रॉकेट लॉन्च करती है, एक एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप बिल्ड करती है, तब वो सिर्फ अपना ड्रीम नहीं जीती, वो नेक्स्ट जेनरेशन का बिलीफ बिल्ड करती है। इस वुमेन्स डे पर एक काम तो जरूर कीजिए, सिर्फ क्लैप मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एनकरेज कीजिए। और जब भी किसी वुमन को ग्रो करते देखें, खुद की सक्सेस को नॉर्मल बना दीजिए, क्योंकि इक्वालिटी जब नॉर्मल लगने लगे तब ही रियल प्रोग्रेस होती है। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। जो है उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, ये छोटी बात नहीं है। कई बार हम इसके लिए दूसरों को आभारी भी मानते हैं, दूसरों को थैंक्स भी कहते हैं, लेकिन कृतज्ञता इससे भी ज्यादा गहरा भाव है। हमें किसी चीज को अच्छा या

0: लगातार भाग दौड़ वाली जीवन शैली हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। जो सब कर रहे हैं वह सब कुछ आपके लिए करना जरूरी नहीं है भाई। सबको खुश करने के लिए उनके हर काम को हाँ हाँ हाँ हाँ कह देना कोई खास फायदेमंद नहीं है भाई। अपना ध्यान रखना खुदगर्जी नहीं है, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बात लगातार बांधे हुए है तो उसे छोड़ने में ही फायदा है भाई। भले ही कोई बीती बात हो, विचार हो या रिश्ता हो, उसे छोड़ देना ही अच्छा है। अगर कुछ है जो लगातार आगे बढ़ने से आपको रोकता है ना, तो उसे तो जरूर छोड़ दीजिए। हो सकता है जो बात दुख दे रही हो वह बहुत बड़ी हो, उसे भूलना या छोड़ना आसान ना हो, लेकिन आपका आज भी आपके इंतजार में बैठा है। अरे भैया, जो भी चीजें होती हैं उनमें सब कुछ हम काबू नहीं कर सकते। उन चीजों के साथ अपने संबंधों को बदल डालिए।
1: बने रहिए आरजे समीर के साथ।

जिंदगी की शिकायतें सभी के सामने क्यों बोल देना, कोई हाल पूछे तो सिर्फ झूठ बोल देना।

0: कर लो नजरअंदाज अपने हिसाब से, जब हम करेंगे तो बेहिसाब करेंगे।
1: मैंने तेरे

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो एक बार पति और पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ। पत्नी अपना घर छोड़कर मायके चल पड़ी। वो इतने गुस्से में थी कि पति को रास्ते में से ही मैसेज कर डाला, अब आप अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। पति ने रिप्लाई किया, आप हैं कौन?
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। छोटा सा घर होगा।

रूपाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारे जाए दूजे गांव में, अच्छा है।

0: बंगला बेटा घर सोना सोना है।
1: कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सोना सोना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: ये वीर गाथा है भारत माँ की मिट्टी के सपूत
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। उन्हें सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाही ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर। सर ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, तो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: ओले बोले।
2: अरे ये क्या, बच्चे कहाँ चले गए?
3: बच्चे
2: आए भी हैं या नहीं आए? एक काम करता हूँ, बाहर चलकर देखता हूँ। बच्चों तुम यहाँ छुपे थे, तुम यहाँ छुपे बैठे हो हैं। आपने मुझे पकड़ लिया, लेकिन ये तो बताओ क्या मैं चोर हूँ? हैं? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आप छोड़ो तो भाई, अब बैठ तो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तुम्हारी बात मान ली। आज मेरे अक्षर हैं ओ और ओ। ओ ओ
4: ओ ओ।
2: एक बार फिर ओ ओ
4: ओ ओ।
2: शाबाश। तो आज की मेरी कहानी का नाम है ओले बोले के औजार। ओले बोले के
4: औजार।
2: शाबाश। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओले बोले के औजार। शाबाश। तो बच्चों एक था व्यापारी। कौन था?
4: व्यापारी।
2: अच्छा ये बताओ व्यापारी होता कौन है?
5: वो सामान बेचता है।
2: सामान बेचता है,
6: जो चीजें बेचता है।
2: चीजें बेचता है, तरह तरह की चीजें।
7: वो साड़ी बेचता है।
2: साड़ी बेचता है।
8: वो लड्डू बेचता है।
2: लड्डू बेचता है।
9: वो खाना भी बेचता है।
2: खाना बेचता है।
10: वो लोहा बेचता है।
2: लोहा बेचता है।
11: वो बर्तन बेचता है।
2: बर्तन बेचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो व्यापार करता है उसे कहते हैं हम व्यापारी। क्या कहते हैं?
4: व्यापारी।
2: शाबाश। तो बच्चों एक था व्यापारी, उसका नाम था ओले बोले। क्या नाम था?
4: ओले बोले।
2: वो बहुत सारी चीजें बेचता था, जैसे कपड़ा, बर्तन, औजार। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। अच्छा औजार पता है ना क्या होता है? बताओ बताओ।
12: प्लास,
2: कीले,
12: पेचकस,
2: आरी,
13: हथौड़ी।
2: हथौड़ी, अरे वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। सही कहा तुमने। हाँ इसके अलावा वो और भी कुछ बेचता था, बताऊं क्या क्या?
14: क्या भैया?
2: वो ओखली बेचता, और वो भी दो दो मूसल के साथ।
14: ये ओखली क्या होता है?
2: ओखली बेटा जिसपे मसाला कूटते हैं। हाँ ऐसे धम
4: धम
2: धम धम धम। हाँ
14: धम
2: धम। तो बच्चों वो ओखली बेचता दो दो मूसल के साथ, और हाँ साथ में लाल गुलाबी लहंगा भी बेचता था, जिसके साथ चार चूड़ियां भी होती।
15: बिल्कुल मुफ्त।
2: हाँ, बिल्कुल वो
16: गोलगप्पे के साथ पानी।
2: तो बच्चों बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मैं आगे कहानी सुना। हाँ तो सुनो कहानी। एक बार बच्चों हुआ ये कि ओले बोले की दुकान पर एक औरत आई। शाबाश। ओ से औरत। तो बच्चों वो औरत ओले बोले से बोली,
17: अरे ओले बोले भैया एक ओढ़नी दिखा दो जिसमें मोर बने हो।
14: भैया
4: ओ से ओढ़नी।
2: ओ से ओढ़नी। ओ से ओले बोले। हाँ तो ओले बोले ने उस औरत से कहा,
17: हाँ हाँ बहन जी, हाँ अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लाल, ये हरी, ये पीली, और ये लो एक और, ये है नीली।
2: तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओले बोले और ओ से
4: औरत,
2: औरत और ओ से और। तो बच्चों आगे सुनो क्या हुआ। तभी वहां पर एक बूढ़े बाबा आए और बोले,
18: अरे बेटा बेटा।
17: हाँ बाबा कहिए।
18: बेटा क्या यहाँ मेरी दवा मिलेगी?
2: तब ओले बोले ने कहा, अरे बाबा मैं औषधि नहीं बेचता। औषधि यानी
4: दवाई।
2: दवाई। वाह क्या बात है, इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सब बहुत ही होशियार हो, बहुत ही प्यारे हो और बहुत ही समझदार भी हो। अब आगे सुनाओ कहानी।
16: हाँ भैया।
2: तो सुनो कहानी। तो बच्चों ओले बोले ने कहा,
17: बाबा जी ये दवा वहाँ सामने वाली दुकान पर मिलेगी। हाँ वहाँ जाइए आप।
18: अच्छा बेटा,
7: मैं केमिस्ट से ले लूंगा।
2: केमिस्ट से ले लूंगा। वाह क्या बात है, केमिस्ट कौन होता है बताओ? जो दवाई बेचता है, जो दवाइयाँ बेचता है। हाँ पता फिर क्या हुआ?
3: क्या हुआ?
2: तभी वहाँ पर दो आदमी आए। पता उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे ओंकार और ओम। ओंकार और

0: ओसे ओंकार।
1: शाबाश, ओसे ओंकार, ओसे ओम, और ओसे और ओंकार और ओम। अच्छा पता है वो दोनों क्या करने लगे? वो दोनों औने पौने पैसे देकर सारा सामान मांगने लगे। ओ से ओम,
2: वो चोरी कर रहे थे।
1: हाँ चोरी समझ लो, चोरी और सीना चोरी। ओ से ओम, ओ से ओंकार, और ओ से औने पौने। औने पौने यानी उल्टे सीधे, ठीक है बच्चों? तो कभी वो कहते
3: ओने पौने हमें 2 रुपए में ओखली दे दो,
1: और वो भी 2-2 मूसल के साथ। हा?
4: हाँ,
1: हाँ, 1 रुपए में हथौड़ी दे दो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ,
2: 1 रुपए में साड़ी दे दो।
1: हाँ,
4: 1 रुपए में बर्तन दे दो,
1: बर्तन दे दो।
4: 1 रुपए में कुल्हाड़ी दे दो,
1: 1 रुपए में कुल्हाड़ी। फिर पता क्या हुआ?
2: क्या हुआ भैया?
1: हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। वो एक एक कर सारे औजार निकलवाते और कहते,
5: ये सामान तो बेकार है। अरे बिल्कुल बेकार है भैया,
6: तुम्हारे पास सारी चीजें बेकार है, कोई भी ढंग की नहीं है यहाँ पर। हाँ
2: ये तो बहुत बुरी बात है,
1: बहुत बुरी बात है,
4: बहुत बुरी बात है, बुरी बात
1: है। तंग करना उससे भी बुरी बात है,
2: वो अच्छा नहीं कर रहे,
1: बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे।
2: क्या हुआ भैया?
1: बताता हूँ। फिर उनमें झगड़ा होने लगा, मार पिटाई शुरू हो गई। ओहो,
2: ओसे ओहो।
1: ओसे ओहो, शाबाश। तो उनमें बच्चों खूब धक्का मुक्की हुई। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये ले, और ले, अरे क्यों मार रहे हो? और ले, अरे मत मारो, अरे मत मारो, अरे मत मारो। बच्चों उनमें इतनी धक्का मुक्की हुई कि तभी ओले बोले, ओंकार और ओम तीनों औंधे मुंह गिरे जमीन पर धड़ाम।
2: बहुत चोटें लगी।
1: हाँ बहुत चोटें भी लगी होंगी। हाँ
4: और उनको बहुत दर्द हुआ,
1: बहुत दर्द
2: हुआ, फट गया,
4: वो घायल हो गए,
1: घायल हो गए, बिल्कुल सही।
4: और भैया औसे औंधे,
1: औसे औंधे। हाँ तो उसके बाद बच्चों हुआ ये कि वो जो औरत ओढ़नी लेने आई थी ना, वो वहीं पर खड़ी थी, और ये झगड़ा देखकर उसने तुरंत
2: पुलिस को फोन कर
1: दिया। हाँ बिल्कुल सही, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को देखकर ओम और ओंकार डरकर सरपट भागे, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। तो बच्चों ओ से ओझल, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम, ओ से ओंकार, और ओ से ओले बोले, ओ से औरत, ओ से औजार, और ओ से औंधे। हाँ बच्चों बात दरअसल ये थी कि ओले बोले इतने अच्छे औजार बेचता था कि ओम और ओंकार उन्हें लेना तो चाहते थे पर पैसे देना नहीं चाहते थे।
2: ये तो बहुत बुरी बात है,
1: बहुत बुरी बात है, सच
4: ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
2: हमें पैसे देकर चीज खरीदनी चाहिए,
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल
4: हमें ईमानदार होना चाहिए,
1: बिल्कुल सही, ईमानदार होना चाहिए,
2: और चोरी कभी नहीं करनी चाहिए,
1: नहीं करनी चाहिए,
4: बुरी बात होती है,
1: बहुत बुरी बात होती है। शाबाश। तो बच्चों अब हुआ ये कि ओम और ओंकार को पुलिस ने पकड़ लिया, और ओले बोले अपने औजार फिर से बेचने लगा, और बाकी चीजें भी आराम से बेचने लगा,
4: और हथौड़े और कील और पेचकश और औजार बेचने लगा,
1: औजार बेचने लगा,
4: और ओढ़नी और चूड़ी, और पेच,
2: ओढ़नी और चूड़ी,
1: ओढ़नी और चूड़ी,
4: और साड़ी भी,
1: साड़ी भी,
4: बर्तन, और पेच भी,
1: पेचकश भी, कपड़े,
4: और आरी,
1: आरी। शाबाश। हाँ तो बच्चों उसके बाद ओले बोले ने उस औरत का धन्यवाद किया और कहा,
5: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी जो आपने मुझे आज बचा लिया।
7: अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।
5: रुकिए रुकिए, आप ये खुरपी लीजिए मेरी तरफ से।
7: अरे मगर चलो ठीक है, मुझे खुरपी लेनी भी थी, धन्यवाद ओले बोले, धन्यवाद।
1: तो बच्चों ओ से ओले बोले और ओ से औजार, ओ
2: Oh!

0: तभी वहाँ दो आदमी आए, ओंकार और ओम था नाम। औने पौने पैसे देकर मांग रहे सारा सामान।
1: ला दे ओखली, दे मूसल, सारे औजार दे।
2: अरे इतना घटिया सामान कौन देगा तुझे इसके दाम?
0: कभी वो मांगे ओखली मूसल, एक एक करके सारे औजार। बार बार देखे और बोले, ये सामान है बेकार।
3: हुई धक्का मुक्की और ओले बोले गिरा घड़ा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: कितना हल्का कितना भारी,
2: कितना हल्का कितना भारी।
3: नमस्ते बच्चों।
4: नमस्ते नमस्ते।
5: अरे भाई, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए।
6: हमें आज कहानी भी तो सुननी है। भैया, आज दीदी क्यों नहीं आई?
5: हाँ, ये बात है।
7: अनंत, लो मैं भी आ गई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों?
5: बढ़िया हो ना?
7: तो अनंत, आज तुमने बच्चों को बताया कि हम इन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?
5: बस वही तो बताने वाला था। बच्चों, आज हम सुनाएंगे एक घोड़े की कहानी।
6: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना।
5: हाँ।
6: मैं एक बार घोड़े पे बैठा भी था।
7: अच्छा? अच्छा, बस एक ऐसा ही घोड़ा था जैजू और मन्नू के पास।
8: जैजू मन्नू कौन थे?
5: बच्चों, जैजू और मन्नू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उनके पास था एक घोड़ा।
6: बहुत तेज दौड़ता था।
7: बहुत तेज।
5: अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा घोड़ा था। और पता है वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था।
8: 700 किलोग्राम?
5: हाँ, और वो भी बड़े आराम से।
6: 700 किलोग्राम?
5: हाँ।
6: इतना ज्यादा उठा लेता था वो घोड़ा।
5: हाँ श्रेया, अरे वो तो बहुत ताकतवर था,
7: लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। आलसी।
5: हाँ बच्चों, काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। वो तो बस सोता रहता था घोड़े बेचकर।
6: वो तो खुद ही एक घोड़ा था।
5: लेकिन बच्चों, ये तो कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना है।
6: फिर क्या हुआ?
7: फिर एक बार जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। वो घर का सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लादने लगे।
5: और फिर जैजू और मन्नू के पिताजी ने कहा,
9: सबसे पहले इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोड़ा गाड़ी पर।
5: फिर जैजू और मन्नू की मम्मी बोली,
10: ये रहे 5 बोरी गेहूं, इन्हें भी रख देती हूँ।
11: अरे अरे भाई, ये 3 मेज तो रह गए। अरे पापा।
9: अरे बेटा, ले आ ले आ।
5: और घोड़ा कहने लगा,
11: अरे इतना भार, अरे मैं कैसे उठाऊं,
9: पहले ही बहुत थक गया हूँ।
7: अरे रुको रुको, 4 कुर्सियाँ भी बाकी हैं। और उसके बाद जैजू और मन्नू ने 4 कुर्सियाँ, 1 अलमारी, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल और रखे।
5: तब घोड़ा बोला,
11: अरे इतना भार।
7: अरे रुको रुको रुको, अभी तो और भी सामान है। और तब जैजू और मन्नू ने एक बांस की सीढ़ी, कुछ और बर्तन भी रख दिए।
5: और बच्चों, घोड़ा बोला,
11: अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार। अरे इतना सारा सामान, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
6: घोड़ा बोला, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ?
7: और तब जैजू और मन्नू के पापा ने उनसे कहा,
9: जैजू मन्नू।
11: जी पिताजी।
12: जी पिताजी।
9: भाई, लगता है घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो 700 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं उठा सकता।
6: वो बहुत भारी हो गया था।
13: क्या वो 1000 किलोग्राम हो गया था?
7: अरे रुको रुको, पहले तो जैजू और मन्नू के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया, वजन के बारे में जानकारी दी, और फिर जैजू और मन्नू सामान का भार जोड़ने लगे।
5: हाँ बच्चों, तुम भी जैजू और मन्नू का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो।
8: ठीक है।
5: तो एक गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम।
8: हाँ,
5: और एक चावल की बोरी और एक अलमारी मिलाकर हुई 105 किलोग्राम।
4: 105 किलोग्राम।
7: तो बच्चों बताओ कुल कितना भार हुआ, 100 और 105 किलोग्राम?
4: 205।
5: 205 क्या?
4: ग्राम।
5: सिर्फ ग्राम?
4: किलोग्राम।
5: शाबाश, ये हुई ना बात, 205 किलोग्राम। हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की। एक कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है?
4: 5 किलोग्राम।
5: और पहले जो भार था वो था 205 किलोग्राम। तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े तो कितना भार हो गया?
4: 205 किलोग्राम।
5: शाबाश, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ, तो भाई अब बारी आती है पानी की टंकी की। और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है?
4: कितना है?
5: 50 किलोग्राम।
4: 50 किलोग्राम।
5: हाँ, तो अब बताओ कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हुए? अभी तक भार था 210 किलोग्राम, उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड़ दिया यानी कि 50 किलोग्राम जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया?
4: 235 किलोग्राम।
5: अरे नहीं बचवा, 235 नहीं, 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिला के कितना भार हो गया?
4: 260 किलोग्राम।
5: शाबाश, इसी बात पर बजाओ ताली। तो 260 किलोग्राम के बाद आया 10 किलोग्राम का मिस।
4: 270
5: किलोग्राम।
4: किलोग्राम।
5: शाबाश, ये हुई ना बात, किलोग्राम। शाबाश।
7: और अब बारी आती है गद्दे की।
5: भाई एक गद्दा है 20 किलोग्राम का।
4: 290 किलोग्राम।
5: क्या बात है भाई, बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए हैं।
7: बहुत होशियार।
5: अब बारी आती है बांस की सीढ़ी की, जिसका भार है 10 किलोग्राम।
7: तो बच्चों अब बताओ कुल कितना भार हुआ,
5: यानी 290 किलोग्राम पहले और अब 10 किलोग्राम मिलके हो गया
4: 300 किलोग्राम।
7: बिल्कुल ठीक बताया,
5: 300 किलोग्राम। अच्छा बर्तन तो रह गए है ना?
4: हाँ।
5: तो बर्तन हुए 10 किलोग्राम के।
4: 310 किलोग्राम।
5: हाँ, 310 किलोग्राम।
7: वाह वाह वाह वाह। तो भाई ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया।
5: क्या बात है।
7: तो बच्चों अब ये बताओ 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कम हुआ या ज्यादा?
4: कम।
5: बच्चों जैजू और मन्नू ने कहा, अरे घोड़े भाई ये तो बस 310 किलोग्राम है, तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो। घोड़ा शर्माने लगा और बोला,
12: अरे अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ।
6: सर दर्द भी नहीं हो रहा, मेरे को टांग भी नहीं दर्द।
12: अरे अरे ये तो बहुत ही हल्का है, अरे मैं अभी ले चलता हूँ। जैजू और मनु, अरे तुम भी बैठ जाओ घोड़ा गाड़ी पर, बैठ जाओ शाबाश। और हाँ सुनो सुनो, अरे पापा को भी तो बिठाओ। हाँ
6: मम्मी को भी तो बिठाओ।
12: अरे हाँ, अरे बुलाओ भाई मम्मी को भी बुलाओ, जल्दी बुलाओ।
14: अब मैं सर पर दौड़ लगाता हूँ।
12: चलो सर।
7: अरे अनंत रुको रुको रुको भाई, यही रोक दो अपनी घोड़ा गाड़ी को। कुछ और भी बाकी है।
5: अरे आकृति क्या बाकी है भाई?
7: आज का सवाल।
5: सही याद दिलाया तुमने। तो बच्चों आज का सवाल है 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है, यानी कितने किलोग्राम कम है? सवाल एक बार फिर सुन लो, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है? तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा विसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनि अंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
4: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
5: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए जो कि भारत

0: प्रकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड हैं, और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की RKVY रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे SEO की जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
2: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
1: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
3: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा, एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा, एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट। एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
1: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
4: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन साथियों इससे पहले उनकी हम रिपोर्ट आपको साझा करें, इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपना रेडियो, आपनी बातें।

0: शराब मारे ही थोड़ा
1: रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस भीली गीत को सुना और ये गीत खास तौर पर विवाह में बजाया जाता है। तो अभी आपने इसका आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेगमेंट हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
2: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो

0: पहलू इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
1: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
2: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहली, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी, तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें, जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें, जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
0: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
2: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अब जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा, तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
0: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
3: पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
4: लेकिन इस कैलेंडर को जानने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से फिरी गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।

好，可以。

अपनी लड़ाई से अपना अपनी लड़ाई लड़वा मांगो हमें जान थी मारा बाजू मारी बहन मारा चाचा मारी काकियों।

0: તડપ મારે થોડું.
1: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है. पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं. ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें. पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें. पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं. गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें. भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं. गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें. आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें. मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें. साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें. पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें. पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें. पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं. इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं. बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें.
2: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ. जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं. कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली.
3: गेहूं हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है. इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके. हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं. क्या है वो विधि, आइए जानते हैं. गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है. वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार. ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है. लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है. लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला. सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी.
4: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया. फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है. कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है. तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा. उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया. उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाऊ से जोत निकाली. उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया. उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया. जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले.
3: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी. इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना. ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे. तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में.
4: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है. और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
3: आइए जान लेते हैं इस तकनीक में होने वाले फायदों के बारे में।
4: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं, बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा, इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
3: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है, उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अभी इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
0: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
6: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपने कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यार से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, जानते हैं जॉन डेवी जी के बारे में। शिक्षा की शरण में जाना मनुष्य होने की सबसे बड़ी शर्त है। वैसे तो शिक्षा सिलसिला है, लेकिन जिंदगी में सोचने समझने की शुरुआत के समय ही शिक्षा यदि शुरू हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अपने गुजारे के लिए हर सुबह अखबार बांटने वाला वो किशोर भी सोने पर सुहागी की तलाश में ही स्कूल जाता था। अमेरिका में तब स्कूली व्यवस्था जर्जर थी, देश गृह युद्ध में ही खर्च हुआ जा रहा था, मास्टर खासे रोष खाए रहते थे। कुछ मास्टर तो हर दम बस कोड़ा थामे हाथ साफ करने की फिराक में ही दिखते थे, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो रोज पिटने के लिए ही शायद स्कूल आते थे। 54 गलती पर 16 आने पिटाई मामूली बात थी। हर बार कोड़े से ज्यादा जुबान बरसती थी। सब मानते थे कि चलो शिक्षक हैं तो अकड़वा बोल सकते हैं, सीधे सीधे बेवकूफ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब पिटाई होती तब हर कोई बस तमाशा ही देखता। ज्यादातर लोग दूसरे की पिटाई देखकर मंद मंद मुस्कुराते थे, पर उस किशोर को पिटाई की व्यर्थता तब भी समझ में नहीं आती थी। वो सीधा साधा स्कूली किशोर बहुत बचकर चलता था। स्कूल में अच्छे अनुभव कम और बुरे अनुभव ज्यादा मिलते थे। पढ़ना अच्छा लगता था, नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, लेकिन स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो हद हो गई, एक गरीब लड़के की जमकर पिटाई हो रही थी। सारे शिक्षक बेचारे लड़के को ऐसे पीट रहे थे मानो गृह युद्ध हो रहा हो। सामंत स्वभाव के शिक्षक अपने अहंकार पर पड़ी हुई किसी मामूली सी चोट का बदला ले रहे थे। पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो लड़का भय से और अपमान से थर्रा रहा था। उसकी सहमी आंखों से

आंसू बह रहे थे। कोई सुनवाई नहीं। लड़का बचाव में जब भी मुंह खोलता और मार शरीर पर पड़ती। उस गरीब लड़के की पिटाई पर तब भी लोग मुस्कुरा रहे थे, पर ये संवेदनशील किशोर अंदर ही अंदर रो रहा था। कमजोर था ना, चुपचाप रह गया, क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो वो भी नहीं बचता। स्कूल की ये त्रासद घटना मानो दिल में बस गई। पिटने वाला बच्चा तो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक, शिक्षा और स्कूल के प्रति जो सहज लगाव होना चाहिए, वो तो कभी नहीं आएगा। दिल में गांठें रह गईं, कभी फिजूल डांट से तो कभी बेरहम मार से। कौन रोके डांट और कौन रोके पिटाई, बस चिंतन की धारा बह निकली। शिक्षक शायद इसलिए पीटते थे कि एक ही बार में सुधार देंगे, लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने हमेशा के लिए कितना कुछ बिगाड़ डाला। पिटाई से सुधरने की गारंटी तो नहीं, पर बिगड़ जाना तो बिल्कुल तय है। और ऐसे बिगड़े माहौल में न जाने कितने स्कूल चल रहे हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, अपने चारों तरफ देखिए तो, बच्चों को स्कूलों में घसीट घसीट कर डरा धमका कर लाया जा रहा है। नहीं नहीं, शिक्षा का ये रूप तो बिल्कुल गलत है, एक नया रूप बनाना होगा। उस किशोर ने, यानी कि जॉन डेवी ने, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में ही टीचर बनना मंजूर किया। बच्चों को बहुत प्रेम से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन 2 साल में ही एहसास हुआ कि शिक्षा में सुधार के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। स्कूल में पढ़ाते रहने से कुछ नहीं होगा, दार्शनिक बनना होगा, तभी बड़े पैमाने पर लोग बात सुनेंगे और सुधार करेंगे। स्कूल की पक्की नौकरी छोड़कर जॉन डेवी उच्च शिक्षा और शोध की दिशा में चल पड़े। शिक्षा सुधार के तमाम सुझावों, प्रयासों के साथ उन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हम अनुभव से नहीं सीखते, हम अनुभव पर चिंतन करने से सीखते हैं। शिक्षा खुद की कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि क्रिया के चयन के माध्यम से बहती हुई, हमेशा बहने वाली चीज है। शिक्षा की दुनिया में उनका नाम गूंजने लगा। वो उसी कोलंबिया कॉलेज में पढ़ाते थे जहां पढ़ने के लिए भारत से भीमराव अंबेडकर जी गए थे। पूरे 2 साल जॉन डेवी ने अंबेडकर को अपने पास रखा और सिखाया कि शिक्षा ही लोकतंत्र की नींव है। बहुत प्यारे स्वभाव के प्रोफेसर जॉन डेवी की शिक्षा अंबेडकर के बहुत काम आई। अंबेडकर ने बार बार माना कि उन्हें बनाने में जॉन डेवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भी अंबेडकर याद किए जाते हैं, जॉन डेवी जी भी ही याद आते हैं। जॉन डेवी 1859 से 1952 तक कोड़े मारने वाले उन शिक्षकों को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए बहुत काम किया, पर अभी भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया के सारे बच्चे, सारे लोग अभी भी पूरी तरह से शिक्षित और जागरूक हुए नहीं हैं। शिक्षा अभी भी पूरी स्नेहिल हुई नहीं है। एक दिन आएगा जब दुनिया के सभी स्कूलों में सारे टीचर्स कक्षा में आते ही सीधे पढ़ाने नहीं लग जाएंगे, बच्चों को कुछ करने के लिए देंगे और बच्चे कुछ कुछ करते हुए सच्ची शिक्षा पाएंगे।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें। पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी, कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं, जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कौन चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें। आइए दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो अपने आप में मोटिवेशन का एक स्तंभ बन चुका है। इस गांव से बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। मध्य प्रदेश का कांकड़ी गांव वैसे तो एक बहुत साधारण सा गांव है, पर यहां के आदिवासियों ने इसे हरा भरा करने और गांव की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ने की जो राह अपनाई है वो असाधारण है। काकड़ी गांव सतपुड़ा अंचल का एक छोटा सा गांव है जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कारण वहां बनाया गया था। इसमें बस 34 घर हैं, सभी कोरकू आदिवासी हैं। वो गांव के जयसिंह बताते हैं कि इस बदलाव की कहानी वर्ष 2015-16 से शुरू हुई, जब ये गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विस्थापित किया गया। यहां नए गांव के रूप में बसने के लिए सब तैयार हुए। जयसिंह बताते हैं कि आपसी विचार विमर्श के बाद गांव बसाने की पूरी योजना बनाई गई। सभी लोगों ने मिलकर बैठकों में सब कुछ तय किया। योजना के अनुसार जब लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए तो पंक्तिबद्ध मकान बनाए गए, फिर उनके आगे 50 फुट जमीन खाली छोड़ी गई। इन खाली जगहों में दो पंक्तियों में फलदार और छायादार पेड़ लगाए गए। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि जब भी यहां किसी की बेटी की शादी होगी तो उसके ससुराल में दो फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे उसे इस गांव की याद हमेशा आती रहे। पुनर्वास समिति के अध्यक्ष लखनलाल कलमे ने बताया कि हमने वर्षा के पानी की बूंद बूंद को भूजल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। यहां के हर घर की छत पर पानी जमीन के अंदर वर्षा जल संचयन पद्धति से डाला जा रहा है, जिससे कि भूजल का स्तर बढ़ रहा है। जयसिंह ने बताया कि उन्होंने जैविक खेती शुरू की, जिससे जैविक अनाज के साथ साथ पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता। किसान आदिवासी संगठन के अनाज के साथ साथ पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता। किसान आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता फाग राम जी कहते हैं कि उनका संगठन हमेशा से ही जंगल बचाने और हरियाली का पक्षधर रहा है। काकड़ी के लोग भी संगठन से जुड़े हैं। ये पहल दूसरे गांव में भी होनी चाहिए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस तरह की पहल बैतूल जिले में श्रमिक आदिवासी संगठन भी चला रहा है, जो बारिश के पहले गांव गांव में हरियाली यात्रा निकालकर पौधे लगाने

का संदेश देता है। जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में पेड़ों और हरियाली से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। यह जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने का एक तरीका है। जैविक खेती में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता ही नहीं, दूसरी ओर मिट्टी भी बेहतर रहती है। यह पहल सराहनीय होने के साथ साथ अनुकरणीय भी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की पहल हमारे ही देश में छोटे छोटे गांवों में शुरू हो चुकी है। क्या हमें थोड़ा और जागरूक नहीं होना चाहिए इस बारे में?

दोस्तों, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम पहचाने कि नेगेटिव चीजें हमारी तरफ आए ही नहीं, और अगर वो आए भी तो हम उन्हें अपने पास आने की इजाजत न दें। सावधान रहें दोस्तों, हमेशा खुश रहें, जोश से भरे रहें। आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ।

ना से ही है हां का अस्तित्व। दोस्तों, कभी सोचा है कि सच को कौन पसंद करता अगर झूठ ना होता, या उजाले की इज्जत कौन करता अगर अंधेरा ना होता? बुराई ना होती तो अच्छाई किस कोने में पनाह पाती? दर्द ना होता तो खुशियों की कद्र कैसे होती? धूप ना होती तो छाह में कौन जाकर बैठता? मृत्यु का भय ना होता तो हमारे जीवन का मूल्य कैसे समझते? इन और इन जैसी तमाम मिसालें गिनाने का मकसद यह है कि जब भी हम सकारात्मक चीजों को प्यार और नकारात्मक चीजों से नफरत करते हैं, तो इस सत्य और तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि नकार से ही सकार की सार्थकता है। अंधेरा प्रकाश को निखारता है, बुराई अच्छाई को मजबूती देती है, दर्द खुशियों को महत्वपूर्ण बना देते हैं। झूठ का होना हमें सच की पहचान, उसका सम्मान सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने की चीजों की पृष्ठभूमि में सुनहरे या पीले की बजाय, अथवा मोती के नीचे सफेद या रुपहले की बजाय स्याह गहरे रंगों के कागज या कपड़ा रखने से वो और ज्यादा चमक बिखेरने लगते हैं। लेकिन जीवन हमें सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही सार्थक बनाना सिखाता है। हम भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में झूठे ना होते तो सच्चे किस बात पर इतराते, बुरे ना होते तो अच्छे किस बात का गुरूर करते। हर नायक को लोकप्रियता पाने के लिए एक अदद खलनायक की जरूरत तो होती है। हर शय अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अपना खलनायक चुन लेती है। हमारी सकारात्मक और नकारात्मक की परिभाषाएं बहुत संकुचित हैं। मोटे तौर पर जो चीजें हमें सुख शांति और लाभ दें वे हमारे लिए सकारात्मक हैं, और जो कष्ट दें हानि पहुंचाएं वो नकारात्मक। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग नकारात्मक में भी सुख पाते हैं और बहुत से लोग सकारात्मक चीजों से भी कष्ट का अनुभव करते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दो सापेक्ष चीजें हैं और दोनों की ही अपनी अपनी समयानुसार उपयोगिता है। कई बार हमें उजाले से ज्यादा अंधेरे की जरूरत महसूस होती है। कई बार हम सच की जगह झूठ बोलकर बहुत सी संभावित समस्याओं से बच जाते हैं। कई बार हमें छांव की बजाय धूप का होना ज्यादा उपयोगी लगता है। एक ही बारिश कहीं जीवन का संदेश लेकर आती है, कहीं प्रलय का कारण बन जाती है। जिस कुएं से लोग प्यास बुझाते हैं उसी कुएं में कोई अपनी जान दे देता है। लेकिन यह स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक तो वही है जिस रूप में प्रकृति से हमें मिला है। हम ही हैं जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे अपने अनुरूप या प्रतिकूल मान लेते हैं। सबसे विचित्र बात तो यह है कि नकारात्मकता हमें स्वतः मिलती है, हमें उसे और कहीं से प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। हम अंधेरे को उत्पन्न नहीं करते, उसे दूर करने के लिए प्रकाश के स्रोत रचते हैं। खुशियों की तलाश में हम ताजिंदगी जतन करने में लगे ही रहते हैं, लेकिन दुख खुद ब खुद हमारी राह में आ जाते हैं। अपनी परिवेश को सुगंध से भरने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन दुर्गंध के लिए कुछ नहीं करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं से घुसपैठ कर ही लेती है। जिस समय हम जीवन में सिर्फ सकारात्मकता चाहते हैं, उस समय जीवन को उसके अधूरेपन के साथ प्राप्त करते हैं, प्रकृति के नियम का निषेध करते हैं। जबकि सच तो यह है कि नकारात्मकता जीवन को संपूर्णता देती है, हमें उसका सम्मान करना सिखाती है। हम नकारात्मकता से कितना ही दूर भागें, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था निर्मित की है कि वो हमें नकारात्मकता को अनदेखा करने ही नहीं देती। जैसे कि कोई मां ये पसंद नहीं करती कि कोई उसके एक बच्चे को दुलार करे और दूसरे का तिरस्कार करे, प्रकृति भी हमारे सामने सकारात्मकता के साथ हमेशा नकारात्मकता परोसने में कभी कंजूसी नहीं करती। इसी व्यवस्था के कारण हम सकारात्मकता को जितना ज्यादा प्रेम करते हैं वो उतनी ही अस्थायी हो जाती है, जबकि नकारात्मकता
ज्यादा स्थायी और निश्चित होती है। सोचिए कि जीवन में ज्यादा सकारात्मक क्या हो सकता है, लेकिन मृत्यु कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, एक ना एक दिन इसका अंत कर ही देती है।

दोस्तों खुश रहना, उत्साहित रहना, जोश से भरे रहना हमारे अपने हाथ में है। हम ये हक किसी और को कैसे दे सकते हैं कि वो हमारे मूड को जब चाहें बदल दें? नहीं, हमारा मूड हमारा है, हम जोश से हमेशा भरे रहेंगे, ये हमारा वादा है। मैं हूं आपका दोस्त समीर, बने रहिए मेरे साथ। मौन का महत्व। अंग्रेजी में इस कहावत को कि स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन को प्रथम दृष्टया आत्मसात कर पाना जरा कठिन ही है। इसकी वजह यह है कि एक ऐसी दुनिया जहां शब्द, भाषा, वाक्य चातुर्य एक निरंतर फलते फूलते उद्योग के रूप में प्रतिष्ठित है, हम खामोशी की हिमायत भला किस आधार पर कर सकते हैं? लेकिन हमारी संस्कृति में भी एक चुप सौ को हरावे की अवधारणा में विश्वास व्यक्त किया गया है। आखिर क्या है इस चुप्पी का रहस्य जो इसे शब्दों से ज्यादा ताकतवर और मूल्यवान बनाता है? मुझे चुप रहने वाले लोगों का भी सानिध्य मिला है और बड़बोलों का भी, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बड़बोले ज्यादा से ज्यादा आपकी खीज की वजह बन सकते हैं, लेकिन खामोश रहने वालों की चुप्पी आपको तरह तरह से तकलीफ देती है, अपमानित करती है। यूं ही नहीं कहते कि समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कई बार यह इतना लाउड हो जाती है कि आपके कानों के पर्दे फटने लगते हैं। दरअसल शब्दों की अपनी एक सीमा होती है, मुंह से निकलने के बाद आप उनके दो तीन से ज्यादा अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन खामोशी अपने आप में असंख्य अर्थ लिए रहती है। आप इन अर्थों की भूल भुलैया में उलझकर अपना सुख चैन सब खो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि शब्दों को ऊर्जा नाहक ही कहा जाता है, खामोशी में तो उनसे ज्यादा ऊर्जा भरी हुई होती है। यूं भी कह सकते हैं कि शब्दों में अगर एक चिंगारी जितनी ऊर्जा है तो खामोशी में अणु जितनी। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों ही का सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे संजीदा हालात तब पैदा होते हैं जब दोनों आमने सामने आते हैं। कई बार शब्दों को परास्त करने के लिए खामोशी का इस्तेमाल किया जाता है और कई बार खामोशी को काटने के लिए शब्दों का। राजनीति को ही लीजिए, एक वक्त नेता बोलता है जनता चुपचाप सुनती है, तो एक वक्त जनता बोलती है और नेता को चुपचाप उसकी बात सुननी पड़ती है। खामोशी और शब्द एक ही तराजू के दो पलड़े हैं जो वक्त की नजाकत के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि अगर दुनिया को दोनों में से किसी एक को अपने लिए चुनने को कहा जाए तो उसके लिए क्या बेहतर होगा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यहां हम देखते हैं कि प्रकृति ने मौन और कोलाहल दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित करके रखा हुआ है। जैसे कि नदियां शोर मचाती हैं, सागर शांत रहता है, बादल गरजते हैं, आकाश अपने मौन व्रत पर अडिग रहता है, पत्तियां खड़खड़ाती हैं, वृक्ष चुप्पी साधे रहते हैं, तो क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि खामोशी विशालता की द्योतक है? ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि विशालता चुप्पी की शर्त है या चुप्पी विशालता की जरूरत। पर जहां तक जीवित प्राणियों का संबंध है तो मेरा विचार यह है कि मौन हमारा नैसर्गिक गुण नहीं है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है तो हर क्षण उसका एहसास कराने के लिए शब्द भी दिए हैं, ध्वनियां भी दी हैं। हम बोलने के लिए बने हैं, मौन हमें ओढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि खामोशी का कोई मतलब नहीं। शब्द और ध्वनियां हमें हमारे परिवेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो खामोशी हमें अपने भीतर ले जाने का काम करती है, आत्म साक्षात में हमारी मदद करती है।

ध्वनियां और मौन दोनों का अपना अपना महत्व है। खामोशी अगर अप्रिय स्थिति से बचाती है तो संवाद उस अप्रिय स्थिति से बाहर निकालने में सहायक होता है। अगर आप इलाज से परहेज बेहतर वाली सोच के कायल हैं तो खामोशी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि दोनों की ही अधिकता समस्याओं का कारक बनती है, इसलिए दोनों के मध्य एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 स्कॉर्पियन 29 स्क्वाड्रन्स ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ जो मेहमान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं से ट्रेन से आ रहा था और हमारे जो मेहमान है, मेरे दोस्त है, उनका नाम है आयुष। वो भी मेरे साथ ट्रेन में ही थे, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ परेशान हो रहा था। मुझे दिल्ली में उतरकर मेट्रो लेनी थी और फिर मुझे ISBT स्टेशन पहुंचना था, टाइम बहुत कम था। आयुष भाई ने हेल्प की पेशकश की और इस हद तक हेल्प की कि मुझे वो प्रॉपरली ISBT स्टेशन तक छोड़ने आए, बस में बैठाया। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, इतना प्यार, इतना सहायता, इतनी सौहार्दता मैंने सचमुच कई सालों में नहीं देखी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को रोक नहीं सका आयुष भाई को हम आप सब से मिलाने के लिए, उनको मैंने आमंत्रित किया है। आयुष, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए आप अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
1: थैंक यू समीर सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और रही बात हेल्प करने की, तो वो तो मेरी ड्यूटी थी। मतलब अगर कोई मेरे सिटी में आया है और मैं उसकी हेल्प ना करूं तो इट इज नॉट, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: ऐसा
1: अपॉर्चुनिटी मिली आपके हेल्प करने की तो मैं जरूर हेल्प करूंगा आपकी, किसी की भी, कोई भी आएगा।
0: थैंक यू सो मच आयुष। पॉइंट इज कि आज की दुनिया थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचते जितनी गहराई से आपने सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं?
1: मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, जॉब करता हूँ
0: जी।
1: फरीदाबाद हरियाणा का एक सिटी है जो कि दिल्ली NCR से का पार्ट है, दिल्ली के पास रहती पड़ती है
0: जी
1: जी। और मैं नोएडा में सैमसंग डिस्प्ले में काम करता हूँ।

0: बहुत बढ़िया आयुष भाई। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे जब आप छोटे थे? जी
1: बचपन में मैं क्या बनना चाहता था जब मैं छोटा था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी उसकी लाइफ में अलग अलग चीजें आती हैं, अलग अलग करियर पाथ दिखते हैं, तो वैसे ही मेरा भी हिसाब था। जब मुझे पायलट दिखता तो मैं पायलट बनना चाहता था, जब मुझे कोई इंजीनियर दिखता था तो मैं इंजीनियर बनना चाहता था, जब मुझे कोई ऑफिस जाने वाला बंदा दिखता तो मेरे को भी ऐसी ऑफिस जाना। तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे आगे बढ़ के क्या करना है। मैं बहुत जॉली सा बंदा था बचपन में, कि भाई ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा मजे करते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए तो 8th क्लास में मेरे को समझ आया कि हाँ भाई, अब तो हमें लाइफ के बारे में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा 8th 9th में। तो तब मैंने सोचा कि हाँ, मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिशियन वर्क, मतलब इलेक्ट्रिकल रिलेटेड एक्टिविटीज में। मेरे डैड जो है वो इलेक्ट्रिशियन है, तो उनको देख देख के मुझे लगा कि ठीक है, मेरे को इस डोमेन में करना है काम।
0: बहुत बढ़िया आयुष, बिल्कुल सही बात कही। बचपन में जब हम होते हैं तो किसी को देखते हैं तो वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, मन करता है वैसे ही बन जाएं, इंजीनियर, पायलट, आर्मी पर्सनल, मे बी सम
1: जी
0: पॉलिटिशियन, टीचर। इस मामले में मेरे एक मुझे बड़ा अच्छा सा याद आता है, एक मेरे दोस्त का छोटा सा बच्चा था, बेटा था, उससे मैंने पूछा, बेटे आप क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? तो उसने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, उसने कहा साहब मैं एक्टर बनना चाहता हूं। मैंने कहा अरे वाह, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बेटा एक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि एक्टर एक्चुअली सब कुछ बन सकता है अंकल, वो वकील बन सकता है, आर्मी पर्सनल बन सकता है, पुलिस बन सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, वो सब कुछ बन सकता है, इसलिए मैं एक्टर बनना चाहता हूं। मैंने कहा कमाल की बात कही इस छोटे से बच्चे ने, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना बिल्कुल सीधी सी सच्ची सी बात, आयुष ने बताई अपने मन की बात, बताई कोई छुपाव नहीं, कोई छल कपट नहीं, सीधी सीधी सी बात। तो चलिए दोस्तों सुने एक और बहुत ही प्यारा प्यारा संगीत।

0: बहुत बढ़िया आयुष। मुझे थोड़ा सा बताओ, लोग आपके बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी क्या रखते हैं? कुछ गलत फहमी हो जाती होगी लोगों को आपके बारे में, क्या गलत फहमी होती होगी आपको पता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोग मेरी मेरी मतलब साइलेंस को एज ए ईगो मान लेते हैं। कभी
0: ओके।
1: कभार ऐसा होता है कि मुझे पता होता है कि गलत है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर एक पॉइंट आता है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत किताबों रीड करने का शौक है, तो मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे को ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रखनी, मेरे को अपने कर्म को देखना है, मुझे दूसरे कर्म को नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है। तो मैं एक टाइम के बाद मैं चुप हो जाता हूँ उसे एक बार बताने के बाद। दूसरे लगता है ये ईगोइस्टिक है, ये अपने में रहता है। तो अपने में नहीं रहता, मैं अपने एक्शंस को इवेल्युएट करता रहता हूँ बार बार बार बार, ठीक है क्या ये सही है, क्या ये सही है, इसको
0: वेरी
1: कैसे और बेहतर कर सकते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: मैं दूसरे को चेंज नहीं कर सकता, खुद को चेंज कर सकता हूँ। लोगों को लगता है कि ये सेल्फ सेंटर्ड है, ईगोइस्टिक है, मेरे को लगता है ये गलत फहमी रखते हैं।
0: वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। दोस्तों, आपने सुना, आयुष को पता है कि लोग उनके बारे में क्या गलत फहमी, गलती से कुछ गलत फहमी क्रिएट कर लेते हैं, जबकि आयुष इस तरह के नहीं हैं। आयुष, मुझे ऐसा लगता है फॉलो करते हैं नो लॉकिंग ऑफ हॉर्न्स पॉलिसी को, कि ठीक है, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं, बहस करके जीत कर क्या हासिल होने वाला है? तो आयुष छोड़ देते हैं कि ठीक है, वो चुप हो जाते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। बड़ी ही प्यारी बात कही। आइए दोस्तों, सुनते हैं फिर एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: फिर भी अगर मैं देखूं तो जब मैंने डिसाइड किया था कि एक से मेरे को इंजीनियर बनना है, तो हर किसी का एक एम होता है कि आईआईटी जाना है, तो मेरा भी एक एम था आईआईटी जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया। और मतलब मेरी रीजंस की वजह से ही, कि मैंने शायद मैं थोड़ी कमजोरी होगी, शायद मैं अनलकी रह गया, मेरे रीजंस की वजह से, तो वो एक असफलता मुझे लगती है कि शायद अगर आईआईटी कर देता मैं तो शायद पहले से बेहतर होती, अभी से बेहतर होती नहीं। और उससे सीखा ये कि समय में अपना एफर्ट पूरा 100% डालना चाहिए। आप एक्सेल करो ना करो, ठीक है वो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, पर आपको एफर्ट पूरा डालना चाहिए। ये ना हो कि बाद में सोचो यार थोड़ा सा और करता तो हो जाता, वहां पे कमी रह गई।
1: सही कहा आपने। लगातार ये बात प्रैक्टिकल लोगों से सामने आ रही है, कई कई प्रोग्राम्स में, कई कई इंटरव्यूज में, कि असफलता होती है तो बहुत बुरी तरीके से दिल टूटता है, हिम्मत टूट जाती है, लेकिन अपना बेस्ट, अपना 100% डालने के बाद ही सफलता हाथ आती है। तो असफलताओं से डर कर होगा कुछ नहीं, हम कितना भी भागने की कोशिश करें भाग नहीं पाएंगे, तो बेहतर होगा कि फिर हम अपना 100% ही डालें, और फिर जो हमारी डेस्टिनी होगी वो तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। बहुत खूब कहा साहब, बहुत खूब कहा। तो चलिए दोस्तों, एक गीत भी सुनते हैं।

0: आयुष, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछा जाए कि आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी प्रशंसा या एप्रिसिएशन क्या मिला है?
1: एक्चुअली मैं ज्यादातर एप्रिसिएशन को एप्रिसिएशन नहीं देता, मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ लाइफ में।
0: ओके।
1: टेबल पर नहीं रखता क्योंकि फिर वरना वो ईगो मतलब वो सर पे चढ़ती है कि भाई तू बहुत अच्छा है इस चीज में, तू बहुत अच्छा, तो उसको मैं बहुत जल्दी नीचे रख देता हूँ, नहीं दिस इज मेरे को और करना है अभी।
0: ओके।
1: तो इस वजह से शायद मैं अभी रिकैप्चुलेट नहीं कर पा रहा कि क्या हो सकती है।
0: ऑल राइट, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल मैं ही आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने जीवन के तीन सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों के बारे में, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हों, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, इन्फ्लुएंस किया हो, उनके बारे में मुझे बताइए।
1: ये स्टार्ट करूंगा मैं अपने घर से।
0: ओके।
1: मेरी मॉम को देख के मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हूँ।
0: श्योर।
1: जिस तरह उन्होंने, वो अपनी स्टोरी बताती है कि स्टार्टिंग में जब वो अपने मम्मी के घर पे थी तो वो हर समर वेकेशन में कुछ कुछ चीजें सीखती रहती थी। उनको नहीं पता था कि बाद में काम आएगी नहीं आएगी, बट वो सीखती रहती थी जस्ट फॉर फन। बट वो जब मैरिज हुई उनकी, वो मेरे पापा के पास साथ आई, तो उनको सब चीजें काम आई। वो बहुत मेहनत करती है, वो कहती है कि मैं सीखती रहती थी, इस वजह से मैं आज यहाँ हूँ, मैं कुछ कर पा रही हूँ। और उनको मैं कंटिन्यूसली देखता हूँ घर में, तो शी इज ऑलवेज पुटिंग हर 100%, कुछ भी सिचुएशन हो वो हमेशा अपना 100% देती है। वो कभी नाराज नहीं होती, कभी कुछ नहीं होती, कभी परेशान नहीं होती।
0: वाओ।
1: तो उनको देख के एक मोटिवेशन फील होती है।
0: ओके ओके।
1: सेकेंड वन विल बी, एज मैंने आपको बताया कि 8th class में मेरा, 8th class बहुत ट्रांजिशनल थी मेरी लाइफ में।
0: अच्छा।
1: तो मैं सीरियस हुआ लाइफ में, उससे पहले मैं बहुत बस ठीक है चलता रहेगा, कर लेगी, हो जाएगा, वैसे टाइप का बंदा था, जॉली मस्त अपने। 8th class में जो ट्रांजिशन आया वो हुआ, मैं एक कोई टीचर से मिला, ट्यूशन टीचर। स्कूल में तो आज की डेट में हम सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, पढ़ाई ट्यूशन नहीं कराई जाती आज की डेट में। तो ट्यूशन टीचर से मिला, आज 8th class से पहले तक मुझे पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना एज इन मतलब हाउ वी हैव टू स्टडी।
0: ओके।
1: स्टडी करने की वो टेक्निक होती है हर किसी की, हर कोई कैसे लर्न करता है, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे लर्न कर पाता हूँ। बट उन्होंने एक तरीका बताया समझने का, चीजों को पढ़ने का, चीजों को, उससे बहुत ज्यादा ट्रांजिशन आया मेरे अंदर।
0: ओके।
1: इस तरह पढ़ना होता है, इस तरह मुझे समझ आ रहा है, तो आई लर्न हाउ टू स्टडी, और वो अभी तक काम आता है, वो लाइफ टाइम काम आया मेरे को।
0: वाह क्या बात है। और तीसरे व्यक्ति?
1: तीसरा व्यक्ति जो है वो अनफॉर्चुनेटली दुनिया में नहीं है।
0: ओह।
1: बट उनको देख के वो इंस्पिरेशन फील होती है, उनकी स्टोरी सुन के कि व्हाट वाज ही बिफोर एंड व्हाट ही लेफ्ट विद। उनको, उनके साथ बात करके, उनकी थॉट प्रोसेस समझ के, उनका अप्रोच समझ के लाइफ का, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बंदा इतना ऊपर आ सकता है। और मेरे सामने एग्जांपल है वो।
0: और कौन है वो?
1: मैं क्यों नहीं आ सकता? वो मेरे मौसा जी है।
0: ओके।
1: वो देहरादून में रहते थे। ये लाइफ स्टोरी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी, वो लोअर टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और अब फॉर्चुनेटली उनकी फैमिली अपर क्लास में आती है।
0: वेरी नाइस।
1: बिकॉज ऑफ ही चेंज्ड द वे हिज फैमिली लुक। उन्होंने एक बहुत बढ़िया कंपनी ज्वाइन करी, गवर्नमेंट कंपनी, नाम नहीं देख सकता, बट वहां पर उन्होंने कंटिन्यूसली जॉब करी, अपने आप को, अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, सेविंग्स अच्छी रखी। ठीक है, अपने अपने उसको आदतों को कंट्रोल में रखा, अपने ठीक है बॉन्ड्स को बहुत नीचे रखा, सेविंग्स हाई रखी, लाइफ को बहुत बहुत आराम से जिया। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने स्ट्रगल करी लाइफ में, बाद में स्ट्रगल करी अपने लाइफ को, जैसे हम कहते हैं इन्फ्लेट कर देते हैं, पैसे हमारे पास पैसे आने लगते हैं और उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उन्होंने कंट्रोल रखे अपने बॉन्ड्स, सब कुछ होने के बाद भी वो अपना ट्रेन में ही चल रहे हैं, सेकेंड AC, थर्ड AC में चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि फ्लाइट से जा सकता हूँ तो मैं फ्लाइट से ही जाऊंगा, होता है कि बंदे के पास जब पैसा नहीं होता तो वो समझता है कि पैसे की वैल्यू क्या है,
0: क्या है?
1: और जब पैसा आता है तो उसे पता होता है कि भाई पैसा बहुत मुश्किल से कमाया गया है, इसे थोड़ा सेव कर लेते हैं।
0: सही कहा आपने, सही कहा। बिल्कुल डाउन टू अर्थ, धरती से जुड़े हुए व्यक्ति जिन्हें मेहनत की वैल्यू पता थी, जिन्हें पता था कि कितनी मेहनत से क्या चीज कमाई जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आयुष आपने। सचमुच वो इसी तरीके की पर्सनालिटी रहे होंगे जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत सबक लिया जा सकता है। बहुत खूब आपने तीनों व्यक्तियों के बारे में बताया, अमेजिंग रियली। आप बिल्कुल सही राह पे हैं इंस्पिरेशन लेने की। तो चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं।

0: जिम इज अ टूल विच आई यूज।
1: बहुत खूब, अच्छी बात कही आपने। आज की डेट में मैं देख रहा हूं हमारे देश में भी कुछ, मेरे वक्त में जिस वक्त मैं यंग था, फिटनेस अवेयरनेस इतनी ज्यादा हम लोगों में नहीं थी। थोड़ा सा हम केयर फ्री थे, थोड़ा सा बचपना भी था, लेकिन वी वर जस्ट इंजॉइंग अवर यूथ। लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूं आज की यंग जनरेशन अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो चली है। वो लोग लगातार कोशिश करते हैं अपने आप को फिट रखने की, अपने आप को एक्टिव रखने की। एंड सिंसियरली, आई सिंसियरली अप्रिशिएट आज की जनरेशन को जो इस चीज का ख्याल रख रही है। अब उन्होंने जैसे भी इस चीज को सीखा हो, जहां से भी इस चीज का सबक लिया हो, ये बड़ी ही अच्छी बात है। दोस्तों, आपने सुना कि आयुष जिम को यूज करते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को सतर्क रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। बहुत खूब, तो चलिए हो जाए फिर एक और प्यारा प्यारा संगीत।

0: आयुष, क्योंकि आप आज की जनरेशन के हो और आज की जनरेशन इस चीज में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको मैं अथॉरिटी दूं, फर्ज कीजिए, तो क्या आप सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ बदलना चाहेंगे और वो क्या होगा?
1: सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ बदलना चाहेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया में मैं एक्सेस थोड़ी सी कम करना चाहूंगा लोगों की, जैसे कि एज बाउंडेशन, कंटेंट बाउंडेशन थोड़ी लगाना चाहूंगा, जिससे कि मैं एक बहुत बड़ा, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड गाय हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड गाय मतलब कोई बंदा किसी भी प्रोडक्ट को देख के समझता है यार ये इसकी जरूरत है, इसको कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। तो उसके हिसाब से हमारा इंडिया है वो लैक कर रहा है कंसंट्रेशन स्किल्स में। हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए, अपनी सिचुएशंस को बेटर करने के लिए। उसका एक एकमात्र कारण है कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है,
0: इंटरेस्टिंग.
1: और डिस्ट्रैक्शन मेजरली सोशल मीडिया से ही है। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का तरीका है हमारे पास, बट सोशल मीडिया क्योंकि हमारे पॉकेट साइज डिवाइसेस में आ गया है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसको कंट्रोल
0: इंटरेस्टिंग.
1: करने के लिए आपको मन से स्ट्रांग होना पड़ेगा, और जो कि आज की डेट में मैं भी नहीं उतना, बस दूसरों की बात करूँ मैं खुद नहीं हूँ। तो अगर रिस्ट्रिक्शंस हो, कंटेंट डिलीवरी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाए, और इस टाइप का कंटेंट सोशल मीडिया में जो कि हमें प्रोडक्टिव नहीं बना रहा, लेजर टाइप का कंटेंट थोड़ा कम हो जाए तो मैं जरूर चाहूंगा।
0: इंटरेस्टिंग, बड़ी खूबसूरत बात कही. देखो दोस्तों, आपने सुना, आयुष आज के जमाने के बच्चे हैं, आज के जमाने के यूथ हैं, और इन्होंने भी ये चीज रियलाइज करनी अब शुरू कर दी है कि सोशल मीडिया का कंटेंट थोड़ा चुना हुआ होना चाहिए, सो दैट हम लोग फोकस अपना बढ़ा सकें, कंसंट्रेट कर सकें. जैसा कि आयुष ने कहा कि हमारे देश में, हमारी जनरेशन में, हमारी पब्लिक में कंसंट्रेट करने की कैपेबिलिटी कम हो रही है, इस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स में वो क्वालिटी नहीं आ रही. बहुत अप्रोप्रिएट और बहुत ही स्पेसिफिक बात कही. बहुत खूब आयुष, थैंक यू सो मच, बड़ा ही प्रॉपर सजेशन.

0: आगे बढ़ते हुए आयुष, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, आभारी हूँ दो चीजों के लिए। एक तो कि आप मेरे प्रोग्राम में आए, आपसे बातचीतें की और आज की नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए आपने बड़ी ही एप्रोप्रिएट बातें बताई, और दूसरा ऑफ कोर्स आई एम स्टिल वेरी इमोशनल, वेरी ओवरवेलम्ड अबाउट आपने जो मेरी मदद की थी, बिल्कुल निस्वार्थ, मुझे मेरे दिल को छू के गई वो मदद, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि इस तरह की मदद काफी समय, मतलब कह लीजिए कई सालों तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो शायद मैं थोड़ा सा भटक गया था कि लोग आज के डेट में एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, लेकिन द वे यू हेल्प्ड मी, उसने मेरा विश्वास वापस से लाया कि हम सामाजिक लोग हैं, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। और उसके बाद आपके इस व्यवहार के बाद मैंने अपने आप से वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं जब कभी भी मिलेगा मौका मैं किसी ना किसी की मदद करूंगा जरूर, जो भी मदद मांगेगा मैं आगे बढ़कर उसकी मदद जरूर करूंगा।
1: बिल्कुल।
0: और उस चीज के लिए आयुष मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये है आयुष गोयल फरीदाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष।
1: थैंक यू।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रही, एक्ट्रेस रही हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एन रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन है। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच। गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज की।

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम। गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है नितेश कुशवाहा साहब। बाकी की बातचीत हम नितेश जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके कलाम भी सुनेंगे। नितेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार कि आप आए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मेरे मतलब इस छोटे से सफर को, मेरे छोटे से नाम को याद किया इतने बड़े कार्यक्रम के लिए, इतने बड़े प्रोग्राम के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको।
0: शुक्रिया है आपका जो आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमारे दोस्तों के सम्मुख हैं, दोस्तों के मुखातिब हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से करते हुए मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में कुछ रोचक बात बताइए।
1: जी सर, जैसा कि मैं बड़वानी से संबंध रखता हूँ, लेकिन पिछले 7-8-9 सालों से मैं इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मतलब बड़ा शहर है इंदौर, और स्वच्छता में लगातार नंबर वन आ रहा है। तो मैं अभी वर्तमान में इंदौर में निवास कर रहा हूँ
0: जी।
1: और इंदौर के बारे में बताते हुए मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इंदौर का नाम शायरी में इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ से डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हुए हैं
0: जी,
1: जिन्होंने शायरी के माध्यम से इंदौर शहर को पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में पहचान दी है, ख्याति दी है।
0: बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने साहब। राहत इंदौरी साहब को कौन नहीं जानता, उनके गीत, उनके कलाम, उनकी गजलें सभी लोग बेहद बेहद पसंद करते हैं। बहुत खूब। तो नितेश जी आगे बढ़ते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, मैं अपनी गजल पेश करता हूँ आप सभी के सामने। सुने कि तू सब कुछ जानने वाला अकेला, तू सब कुछ जानने वाला अकेला
0: जी,
1: बता

0: फिर क्यों हूं मैं इतना अकेला, तू
1: क्या बात है।
0: तू सब कुछ जानने वाला अकेला, बता फिर क्यों हूं मैं इतना अकेला। तेरी चाहत में तेरे गम भी चाहे, तेरी चाहत में तेरे गम भी चाहे, कभी
1: जी
0: तुझको नहीं चाहा अकेला। बहुत
1: क्या बात है,
0: धन्यवाद। तेरी
1: बहुत खूब।
0: चाहत में तेरे गम भी चाहे, कभी तुझको नहीं चाहा अकेला। मैं महफिल में हंसाने वाला सबको,
1: जी
0: एक शब्द आता है पसे पर्दा, जिसका जिसके मानी होते हैं पर्दे के पीछे। सुनो,
1: जी
0: मैं महफिल में हंसाने वाला सबको, पसे पर्दा बहुत रोया अकेला। और
1: जी
0: शेर ये भी देखिए कि बदन हूं मैं अगर तो वो भी होगा, बदन हूं मैं अगर तो वो भी होगा, कभी होता नहीं साया अकेला। बहुत
1: क्या बात है।
0: धन्यवाद। और ये शेर खास तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा, श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा,
1: जी
0: जो मैंने IIT इंदौर में भी पढ़ा, जो राहत साहब के सामने भी पढ़ा। धन्यवाद। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, हटा
1: जी
0: दी यार की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। बहुत
1: क्या बात है।
0: धन्यवाद। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। वो अपने साथ मुझको ले गया है, वो अपने साथ मुझको ले गया है, मैं जिसको छोड़कर लौटा अकेला।
1: क्या बात है।
0: तमाशा बन गई है सारी दुनिया, तमाशा बन गई है सारी दुनिया, बचा मैं देखने वाला अकेला। बहुत धन्यवाद।
1: बहुत खूब बहुत खूब। बचा मैं अकेला देखने वाला, क्या कहा
0: बता
1: है।
0: मैं देखने वाला किला। जी
1: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल साहब। तो आगे बढ़ते हुए नितेश भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: जी जगजीत साहब, जगजीत सिंह साहब, वैसे तो यूं तो मुझे उनकी कई सारी गजलें पसंद हैं,
1: जी
0: लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे वो जो गजल है, एक जिंदगी तू जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
1: जी
0: जिंदगी धूप तुम घना साया, जावेद साहब ने लिखी है।
1: जी
0: इसमें कुछ कुछ शेर तो बहुत ही शानदार है। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, तुम
1: जी जी जी जी जी
0: चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। तो ये गजल मुझे बहुत पसंद है, ये कई सालों से मेरे साथ में इस गजल ने सफर किया है, शुरुआती दौर में भी, सीखने के दौर में भी, या कहूँ कि गजल गजलों की तरफ आने की तरफ मेरा जो रुझान था वो जगदीश साहब को सुनते हुए आया है,
1: बहुत
0: इसलिए
1: बढ़िया,
0: मैं उनका जिक्र करना चाहूँ।
1: क्या बात है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं नितेश जी की फरमाइश पर जगजीत सिंह जी का गाया हुआ गाई हुई ये बहुत ही प्यारी सी गजल।

0: बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गजल। नितेश भाई आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मासूम सा सवाल
1: जी।
0: आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बचपन की बात कहूँ सर
0: जी,
1: तो कभी तो मेरा मन होता था कि मैं चित्रकार बनूंगा
0: जी,
1: मुझे कुछ कुछ पेंसिल और पेन के साथ कुछ कुछ चित्र बनाना अच्छा लगता था, लकीरें खींचना
0: जी।
1: और कभी कभी मन होता था कि शायद मैं गायक बनूंगा क्योंकि मुझे मेरे अक्सर गुनगुनाते रहता था
0: जी।
1: और उसके बाद चीजें पर कहानियां पढ़ते हुए मुझे लगा कि मैं कहानीकार हूंगा, मैं किस्सागो बनूंगा, कविताएं पढ़ते हुए मुझे लगता था कि मैं कभी भी बन सकता हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो कई सारी चीजें थी मन मस्तिष्क में, लेकिन हाँ ये जरूर था कि कलाकार मतलब कला की तरफ रुझान था, ये पता था कि कलाकार तो होना ही।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है नितेश भाई। इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र हैं, दोस्त हैं, उनका छोटा सा बेटा था। मैंने उससे पूछा एक दिन कि बेटे तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो उसने बोला कि साहब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कलाकार, फिल्म एक्टर बनना चाहता हूँ।
1: अच्छा,
0: तो ये बात बड़ी अजीब सी थी। बहुत बहुत सारे बच्चों से पूछो तो कोई इंजीनियर बनने के लिए बोलता है, कोई डॉक्टर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्यों बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी पर्सनल, पायलट ऐसा कुछ नहीं बनना चाहते? तो उसने कहा नहीं अंकल, पॉइंट ये है ना कि अगर मैं एक्टर बन जाऊंगा तो मैं सब कुछ बन सकता हूँ।
1: वाह बहुत खूबसूरत,
0: क्योंकि
1: क्योंकि
0: एक्टर वकील भी बन जाता है, एक्टर पायलट भी बन जाता है, मिलिट्री पर्सनल भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, गुंडा भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही खूबसूरत, इतने छोटे से बच्चे के अंदर इतनी बड़ी बात कहने की अक्ल आई, बहुत खूबसूरत साहब, बहुत खूबसूरत। इस वजह से ये सवाल मैंने अपने इंटरव्यू में रख लिया।
1: बहुत अच्छी बात है सर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लेखक भी एक्टर की तरह ही सारे किरदार निभा सकते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: जब हम किसी किरदार के बारे में लिखते हैं तो एक लेखन एकमात्र स्थिति है जिसे यहां तक मैं समझता हूँ, या एक्टिंग जो जिसमें व्यक्ति परकाया प्रवेश करता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: किसी और के जज्बात को सामने कैसे लाना है, किसी और के बारे में कैसे सोचना है, किसी और की दृष्टि से चीजों को कैसे देखना है, ये लेखन हो या कोई कला हो, ये मेरे ख्याल से कई सारी कलाओं में संभव है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सही फरमाया आपने साहब। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल हमको सुनाए।
1: जी बिल्कुल सर, मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ, एक गजल से जोड़ता हूँ मैं आपको।
0: जी
1: सुने के
0: इरशाद,
1: तेरी बातों का चिंतन कर रहे हैं
0: जी,
1: तेरी बातों का चिंतन कर रहे हैं, गजल में कुछ नयापन कर रहे हैं
0: जी,
1: तेरी बातों का चिंतन कर रहे हैं, गजल में कुछ नयापन कर रहे हैं, अभी बाजार से वाकिफ नहीं है, अभी बाजार से वाकिफ नहीं है, नए सिक्के जो खन खन कर रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत धन्यवाद,
0: बहुत खूब।
1: और ये भी सुने कि जमाने भर से अनबन करने वाले
0: जी,
1: जमाने जमाने भर से अनबन करने वाले तेरे आगे समर्पण कर रहे हैं।
0: वाह।
1: और ये भी सुने कि सुनाई देती है एक खनखनाहट
0: जी,
1: सुनाई देती है एक खनखनाहट जो तन्हाई के कंगन कर रहे हैं।
0: ओहो क्या बात है,
1: बहुत धन्यवाद। और ये भी सुने कि भुला बैठा हूँ शायद कोई वादा
0: जी,
1: भुला बैठा हूँ शायद कोई वादा, तभी आवाज बर्तन कर रहे हैं।
0: ओहो बात
1: है। और ये एक शेर ये भी सुनिए, ये भी परिवार का शेर है कि ये बेटे मिलके दुनिया जीत ले पर
0: जी,
1: ये बेटे मिलके दुनिया जीत ले पर अभी दीवार आंगन कर रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: ये बेटे मिलके दुनिया जीत ले पर अभी दीवार आंगन कर रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत खूब। एक नई धारा, एक नए विचार, एक नया तरीका आपके गजल कहने का, आपके कलाम बिल्कुल एक नई आत्मा लिए हुए, एक नई रूह लिए हुए सामने आ रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है साहब। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब।
1: धन्यवाद।
0: तो नितेश भाई, आगे बढ़ते हुए फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा दें।
1: जगदीश साहब की तरफ से फिर से लौटना चाहूंगा मैं एक बार
0: जी।
1: और उनकी एक ऐसी गजल जो जो ऐसे लोग वो सारे लोग लोगों ने सुन रखी है, वो सारे लोगों की पसंद की गजल है
0: जी,
1: जिन जो शायद गजल विधा से भी दूर है
0: जी,
1: और
0: जी।
1: वो गजल है फिल्म सरफरोश की गजल, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या, बे होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है,
0: बेखुदी क्या।
1: निदा फाजली साहब की लिखी हुई गजल
0: जी, बहुत
1: जगदीश साहब की आवाज
0: जी, बहुत ही प्यारी गजल। आइए दोस्तों सुनते हैं सरफरोश फिल्म की, आमिर खान और नसरुद्दीन शाह साहब के ऊपर फिल्माई गई, जगजीत साहब की गाई हुई ये बेहतरीन बेहतरीन गजल।

0: बहुत खूब नितेश भाई, आगे बढ़ते हुए आपसे एक छोटा सा ही सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर फर्ज कीजिए आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन्न कहीं से मिल जाए तो क्या तीन इच्छाएं मांगेंगे आप?
1: बड़ा बड़ा खूबसूरत सवाल है, इस बारे में कभी सोचा नहीं है मैंने।
0: आज सोचिए, आज
1: हालांकि हालांकि इसके बारे में हम सोचते हैं थोड़ा सा
0: जी।
1: तीन इच्छाएं
0: जी
1: जो पूरी हो सकती है
0: जी, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, आप तीन इच्छाएं मांगिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, पहली इच्छा तो मैं ये मांगूंगा सर कि मैं जो जो भी अच्छी इच्छाएं जीवन में सोचू वो सारी पूरी हो।

0: ओके ओके ओके जी,
1: मैं जो जो चाहूंगा वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाए
0: जी।
1: तो पहली इच्छा तो ये हो गई
0: जी।
1: दूसरी इच्छा मैं चाहूंगा कि जो लोग कम से कम अच्छा काम कर रहे हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, उनका बुरा नहीं होना चाहिए, उनका अच्छा होना चाहिए। दूसरी इच्छा मैं ये रखना चाहूंगा।
0: क्या बात है।
1: तीसरी इच्छा मैं ये चाहूंगा सर कि कलाकारों को एक अच्छा स्थान मिले समाज में।
0: जी बिल्कुल ठीक है।
1: और कलाकार भी बिल्कुल बिल्कुल वैसे जो शायर है, जो कवि हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे रह सके जैसे फिल्म स्टार रहते हैं।
0: क्या बात।
1: और उनको समाज में जिस नजर से देखा जाता है कि ये तो कवि है, ये तो शायर है, इनके पास तो मतलब ज्यादा पैसे नहीं होते होंगे, या जो इमेज बनी हुई है
0: जी,
1: एक कुर्ते पजामे वाली फटे हुए बैग वाली, वो इमेज सुधरे, मैं तीसरी इच्छा ये चाहूंगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब। मैं आपकी बात से बिल्कुल बिल्कुल वाकिफ हूं और मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल सही आपकी विशेष हैं जो पूरी होनी चाहिए। मोर ओवर मुझे तो ऐसा भी महसूस होता है नितेश भाई कि इसके लिए मुझे आपके लिए जिन्न बनना चाहिए और मेरे लिए आप जिन्न बन जाओ। हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, कलाकार एक दूसरे के साथ देंगे, तभी बाकी के लोग तो दरअसल ऑडियंस हैं, यू नो, उन्हें तो सिर्फ या तो तारीफ करना आता है या क्रिटिसाइज करना आता है, इसके अलावा तो उन्हें कुछ आता ही नहीं।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इसके अलावा अगर उन्हें कुछ आता होता तो वो हमारी ही जमात में होते ना, हमारे ही तरह कलाकार होते। तो हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे कि उन्हें हमारी तारीफ ही करनी पड़े। चलिए
1: बिल्कुल
0: कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, और बाकी जिन्ने साहब तो हमारे साथ हैं ही। बहुत खूब। तो आगे बढ़ते हुए फिर से नितेश भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी एक गजल हमें और सुनाएं।
1: जी सर बिल्कुल, मैं गजल की तरफ लौटता हूँ अपने फिर से।
0: जी
1: सुनिए
0: इरशाद।
1: जो ढोलक बजती बजती कांपती है,
0: जी
1: जो ढोलक बजती बजती कांपती है, किसी बेजा की चमड़ी कांपती है।
0: ओहो ओहो।
1: जो ढोलक बहुत धन्यवाद। जो ढोलक बजते बजते कांपती है, किसी बेजा की चमड़ी कांपती है।
0: क्या बात है।
1: किसी अपने से बिछड़े थे यहीं पर, किसी अपने से बिछड़े थे यहीं पर, इसी रास्ते पे गाड़ी कांपती है।
0: ओहो
1: बहुत धन्यवाद। किसी अपने से बिछड़े थे यहीं पर
0: जी,
1: इसी रास्ते पे गाड़ी कांपती है। और शेर ये भी सुने कि वो जिस दिन भूल कर आती है स्वेटर
0: जी,
1: वो जिस दिन भूल कर आती है स्वेटर, जमीन सारी की सारी कांपती है।
0: ओहो क्या बात है।
1: धन्यवाद। वो जिस दिन भूल कर आती है स्वेटर, जमीन सारी की सारी कांपती है। और ये शेर भी सुने कि ये डर रहता है वो मुश्किल में ना हो
0: जी।
1: हमारे यहाँ एक प्रतीक माना गया है, जब कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी के साथ वनवास पे होते हैं
0: जी,
1: तो उर्मिला रोज अपने घर के द्वार पर एक दीप जलाती हैं। सुनिए
0: जी,
1: वहां से शेर, ये डर रहता है वो मुश्किल में ना हो, ये डर रहता है वो मुश्किल में ना हो, कि जब भी लो दिए की कांपती हैं।
0: क्या बात है। ओहो।
1: और ये भी बहुत धन्यवाद। ये भी शेर सुने कि वो जब भी छोड़ती है हाथ मेरा
0: जी,
1: वो जब भी छोड़ती है हाथ मेरा, मेरी सांसों की डोरी कांपती है।
0: ओह माय गॉड। ओके।
1: और एक फिर से आखिरी शेर इस गजल का आपके सामने रखता हूँ और दृश्य के साथ रखता हूँ। जब मंदोदरी और रावण की अंतिम बार भेंट होती है
0: जी,
1: मंदोदरी आरती करने वाली होती है, वो जानती है कि आखिरी युद्ध है, इसके बाद स्वामी वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि रावण जिस मार्ग पे है, मंदोदरी हमेशा से कई बार समझाने की कोशिश करती है। सुनिए वहां से जो शेर में लेके आया हूँ।
0: क्या बात है।
1: सुनिए। यही अंतिम मिलन मंदोदरी का
0: जी,
1: यही अंतिम मिलन मंदोदरी का, इसी मौके पे थाली कांपती है।
0: अच्छा। ओहो।
1: आप देखेंगे कि वो थाली गिर जाती है
0: जी, जी, जी,
1: बुझ जाता है
0: जी जी जी जी जी।
1: तो वहां से दृश्य लाया हूं। बहुत धन्यवाद।
0: बहुत खूब। माय गॉड बहुत खूब। आपने पुराने समय में इतिहास में जाकर जो सीखने लायक चीजें थी, जिनको बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने या कवियों ने या शायरों ने बहुत कभी गौर नहीं किया, उन चीजों को आप निकाल के लाए, अपने लफ्जों में उनको पिरोया और हमारे सामने रखा। जिसके मतलब हमारे लिए एक नए तौर तरीके से निकल कर आ रहे हैं। मंदोदरी का किस्सा आपने बताया, उर्मिला का किस्सा आपने बताया, लक्ष्मण की व्यथा भी आपने बताई, बहुत खूब
1: प्रयास किया है।
0: बहुत बढ़िया नितेश भाई, बहुत बढ़िया सोच, बहुत ही अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हुए फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा किसी गजल गायक की हमें गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनाएं।
1: जी सर, तलत अजीज साहब की एक गजल है
0: जी जी जी,
1: जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था
0: जी,
1: कि अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद।
0: जी जी,
1: तो ये जो गजल है, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। इसमें जो जो जो भी शेर है वो शेर भी बहुत अच्छे हैं, और तलत अजीज साहब की जो आवाज है वो इसे इस गजल को और खास बना देती है।
0: बहुत खूब दोस्त। तो आइए दोस्तों सुनते हैं नितेश जी की फरमाइश पर तलत अजीज साहब की गाई हुई ये बहुत ही प्यारी सी गजल।

0: बहुत खूब नितेश भाई, आगे बढ़ते हुए बस एक छोटा सा सवाल और कि आपने अपने किसी अच्छे से दोस्त के बारे में बताइए कि वो आपका अच्छा दोस्त भला क्यों है।
1: हाँ जी सर, मैंने वैसे तो दो तीन दोस्त ऐसे हैं जीवन में जो मेरे लिए बहुत खास हैं, जो मेरे लिए बहुत विशेष स्थान रखते हैं। उसमें से एक है मेरा मित्र हिमांशु वर्मा, एक है अमन पाटीदार
0: जी,
1: और ऐसे और भी एक दो दोस्त हैं जो बहुत विशेष स्थान रखते हैं जीवन में
0: जी।
1: हिमांशु वर्मा के बारे में आपको बताऊं तो सब किस्सा ऐसा है कि हम दोनों करीब 8-10 सालों से साथ में हैं, जब से कॉलेज में थे 2013 से साथ थे करीब, और जब से हमारा साथ अभी तक भी साथ में, हम दोनों पीएचडी कर रहे हैं, दोनों का विषय भी एक है, दोनों के गाइड भी एक हैं
0: जी।
1: और हिमांशु वर्मा जी जो हैं वो गीतकार हैं, मुक्तक लिखते हैं,
0: क्या बात है,
1: गीत विधा में काम करते हैं। तो कवि सम्मेलनों का सफर भी हम लोगों का लगभग साथ में शुरू हुआ, लेखन का सफर भी साथ शुरू हुआ, और जीवन में जितने भी मतलब उतार चढ़ाव जो भी चीजें आती रही है लगातार हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं
0: जी। बहुत खूब, बहुत खूब
1: जी सर। तो मैं ये मानता हूँ सर, दोस्त ऐसा होना चाहिए
0: जी,
1: आपका मतलब आपको जब भी जरूरत हो, रात के किसी भी समय या जीवन की किसी भी मोड़ पर, जब भी आपको अपने मित्र की आवश्यकता हो, आपको बस चेहरा याद आए, आपको नंबर याद आए, आप फोन लगाएं और आपके लिए सामने वाला हाजिर हो, ये दोस्ती होती है सब।
0: बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। दोस्त इसीलिए होते हैं, दोस्त वो फैमिली होती है जो हम इस दुनिया में आकर बनाते हैं, परिवार वो होता है, परिवार वो होता है जो हमें ऊपर से अपने आप मिलता है, हम उसको चुनते नहीं है, लेकिन दोस्त
1: हम चुनते हैं, बिल्कुल
0: दोस्त हम चुनते हैं, तो वो हमारी डिजाइंड फैमिली है जिसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं। बहुत खूब कहा साहब आपने। तो आगे बढ़ते हुए फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक प्यारी सी गजल और सुना दीजिए हमें।
1: जी सर बिल्कुल, अगली गजल मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ, सुने
0: जी।
1: ये जैसे जो शायरी करने वाले जो लोग होते हैं, दरअसल मैं ये भी बताते चलूं कि शेर कभी लिखा नहीं जाता, शेर कहा जाता है, गजल कही जाती है
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: तो उसके आसपास का जो जी जी सर, दरअसल मेरी जो गजल है वो इसके आसपास थोड़े से इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए मैं कहना चाह रहा था।
0: क्या बात है।
1: और इससे शायद कुछ कई सारे जो हमारे मित्र ऐसे होंगे जिन्हें शायद पता नहीं होगा, उन्हें थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी, और मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है। उसी के इश्क के बीमार शेर कहते हैं
0: जी,
1: उसी के इश्क के बीमार शेर कहते हैं, वो जिसकी ओढ़नी के तार शेर कहते हैं।
0: आहा क्या बात है।
1: उसी के इश्क के बीमार शेर कहते हैं, वो जिसकी ओढ़नी के तार शेर कहते हैं। बस एक बार मोहब्बत से जिसने देखा था
0: जी,
1: बस एक बार मोहब्बत से जिसने देखा था, उसी की धुन में लगातार शेर कहते हैं।
0: ओहो क्या बात है, बहुत
1: बस एक बार, बहुत धन्यवाद। बस एक बार मोहब्बत से जिसने देखा था, उसी की धुन में लगातार शेर कहते हैं। और अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ ज़बान इनकी
0: जी,
1: अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ ज़बान इनकी, वगरना ये दरो दीवार शेर कहते हैं।
0: क्या बात है।
1: दरो दीवार मतलब दरवाजा और दीवारें, अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ ज़बान इनकी, वगरना ये दरो दीवार शेर कहते हैं। और शेर ये भी सुनिए सर
0: जी,
1: कि हमारे चार सू चारों ओर, हमारे चार सू बस शायरी ही रहती है, हमारे चार सू बस शायरी ही रहती है, हमारी मेज पे अखबार शेर कहते हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत धन्यवाद,
0: बहुत
1: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। हमारे चार सू बस शायरी ही रहती है, हमारी मेज पे अखबार शेर कहते हैं, और उसे लगा के ही माने हैं शौक गजलों का, उसे लगा के ही माने हैं शौक गजलों का, खुदा बना के जिसे यार शेर कहते हैं।
0: ओहो क्या बात है।
1: और ये भी सुने कि वही कहा है गजल में जो जिया है हमने
0: जी,
1: वही कहा है गजल में जो जिया है हमने, यही सबब है कि खुददार शेर कहते हैं।
0: क्या बात है।
1: और सुना है मीर की गजलें पसंद है उसको,
0: जी
1: सुना है, मीर की गजलें पसंद है उसको, नितेश वैसे भी दो चार शेर कहते हैं। बहुत धन्यवाद।
0: बहुत खूब नितेश वैसे भी दो चार ही शेर कहते हैं, क्या बात है।
1: बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत ही प्यारी गजल, बहुत ही दिल को छू लेने वाली गजल, ऐसा ही लगा बिल्कुल कि खासम खास आपके दिल से ही निकल रही है आवाज। बहुत खूब, बहुत खूब। नितेश जी, चलते चलते हमारे दोस्तों के लिए अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
1: जी, जगजीत साहब के गजल जो मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
1: जिसे मैं लगातार सुनता हूँ, निरंतर सुनता हूँ
0: जी,
1: वो गजल है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। हाँ, जगजीत साहब का एल्बम आया था एक बाद में जिसमें उन्होंने ये गजल उसमें शामिल थी।
0: ओके, ठीक है।
1: और ये सबसे ज्यादा मतलब जगजीत साहब की आवाज में ही लोगों तक भी पहुंची है।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं जगजीत साहब की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: नितेश भाई, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी गजलें हमने सुनी, आपकी बातचीत हमारे श्रोताओं तक पहुंची, आपके दिल के उद्गार हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। आप आगे बढ़े, आपकी जो तीन इच्छाओं के चलते आपने जिन्न से मांगी हैं वो सारी पूरी हो, हम सब यही दुआ करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी श्रोताओं का जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू। दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खासतौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
4: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी के तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
5: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहां पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा सारा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की RKVY रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे FPOs को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
6: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
4: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
7: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
4: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
2: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन साथियों इससे पहले उनकी हम रिपोर्ट आपको साझा करें, इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें। I'm not going to be able to do that.

Martínez.

0: પણ તરફ મારે થોડો
1: रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस भीली गीत को सुना और ये गीत खास तौर पर विवाह में बजाया जाता है। तो अभी आपने इसका आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेगमेंट हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
2: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
3: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
4: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए, सबसे पहले तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
2: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
4: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो वहां पर जीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो है वो खिला दें।
2: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
0: पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
1: लेकिन इस कैलेंडर को जानने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से फिर गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
5: Yeah.

0: તડપ મારે થોડું.
1: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
2: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
3: हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
4: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा। उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाऊ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
3: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
4: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे का एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
3: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
4: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं, बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा, इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
3: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है, उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अभी से अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
0: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
6: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान

अपना हक नहीं लड़ाई से, अपना हक नहीं लड़ाई लड़वा मांगो। रमे जान थी मारा भाग्य, मारी बहनों, मारा काका, मारी काकियों।

0: हमारे ही थोड़ो पर।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी वाते।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और कैसे हैं हमारे किसान साथी? हाँ, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी काफी अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। अब वो खेती किसानी से बिल्कुल फ्री हो गए हैं और हमारे किसान साथियों के मन में कई सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि खेती करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसा कि दुकानदारों के पास जो दुकानदारी का काम रहता है और उनको दिन भर चिंता लगी रहती है कि अब हम क्या कर रहे हैं, कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे करें, ऐसे ही हमारे किसान साथी रहते हैं कि जिनको चिंता बनी रहती है कि अब क्या करें। हमारी फसल तो ओके घर पर तैयार होकर घर पे आ गई है, आगे चलकर हम क्या करें। तो उन हमारे किसान साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि अगर झाबुआ जिले की अगर बात करें तो हमारे किसान साथियों ने जैसे कि चना हुआ, साथ साथ में सरसों भी बोते हैं और गेहूं की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है। और ऐसे में हमारे किसान साथियों के पास अब जो समय रहता है, अब वो क्या करते हैं कि घर पे फ्री बैठे होते हैं। तो उन किसान साथियों को हम एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि ये सलाह आप हमारे किसान साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जो किसान साथी जिन्होंने चना या फिर सरसों का उत्पादन किया है, चना हुआ, बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि चूंकि पहाड़ी इलाका है तो कम खेती होती है, मटर हुआ, तो ऐसे फसल जो हम उगाकर बाजार में बेचते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि किसान को क्या पड़ी रहती है कि जैसे ही फसल हमारी उगे और जैसे ही फसल उगकर घर पर आए और हम सोचते हैं कि हमें जो हमारा कर्ज पूरी हमने साल में खेती में लगाया था, उस कर्ज को निपटाने के लिए उनको तत्काल प्रभाव से वो खेती की जो फसल हुई है उसको बेचना पड़ता है। लेकिन किसान साथियों, कभी आपने सोचा है कि इसको थोड़ा रोक कर यदि हम बेचें, दूसरा यदि हम इन जैसे चना अपने क्षेत्र में होता है, झाबुआ जिले की बात करें, चना होता है तो चने की दाल बनाकर यदि हम पैकिंग कर और हम अपने किसान साथी बाजार में बेचें, अब उनको बाजार में बेचने के लिए हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बाजार में कैसे बेचेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा चूंकि तरह तरह की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, और जैसा कि हमने जिक्र भी किया था कि हमारे किसान साथियों की आमदनी किस तरीके से दुगनी हो, तो ये छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि हो सकती है। सबसे पहले कि वो पैकिंग कर बेच सकते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो बनाई जाती है उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे किसानों का संघ जो बना रहता है उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी बेच सकते हैं अपनी चीजों को, यानी फसल को पैकिंग कर उसको बेच सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जिन श्रोता साथियों के पास जमीन है, सिंचाई का पर्याप्त व्यवस्था है, तो वो सब्जियों का व्यवसाय कर सकता है। सब्जी, क्योंकि अब सीजन है जायज की फसल का, जायज की फसल में हम क्या करते हैं, सब्जी लगाते हैं। और हम खास तौर पर देखते हैं कि भिंडी का मौसम भी चल रहा है, भिंडी इस मौसम में लगा सकते हैं। साथ साथ में जो हमारी ककड़ी आती हैं उसको भी हम लगा सकते हैं। तो ये सब्जियां जो है वो हमारे किसान साथी जिनके पास कम जमीन है, साधन है सिंचाई का, ड्रिप पद्धति से हम उसको उगा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। अब इसके लिए किसान साथी सोच रहा होगा कि कैसे बनेंगे, तो इसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे, साथ साथ में किस तरीके से नए पद्धति से हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, यानी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम विषय विशेषक से सलाह लेकर आप तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। चूंकि धीरे धीरे बात काफी बड़ी हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे किसान साथियों को अब मन हो रहा होगा कि गीत संगीत हो जाए, तो जरूर सुनवाते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो भील टांटिया 90.8 FM, आप लोग रेडियो अपनी बातें।

अपना अपनी लड़ाई लड़वा मत। हमें जान थी मारा भाई, मारी बहन, मारा काका, मारी काकी।

0: शराब मारे ही थोड़ा सा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्याले से भील गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो विषय पर बातचीत करने के लिए विषय विशेषज्ञ तैयार है। आइए इनकी बात को हम सुनते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आमंत्रण के लिए और मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए। मैं जेसी शर्मा, चेयरमैन ग्लोबल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी आगरा से हूं और इसी विषय में पिछले 40 साल से अधिक समय से कार्य कर रहा हूं। जैसा कि मेरा मानना है, अपना जो देश है, भारत देश है, कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि की पैदावार, बागवानी की पैदावार, दूध की पैदावार, तमाम खाद्य पदार्थों की पैदावार को इतिहासा होती है
3: जी।
2: आज हम विश्व में कृषि में अव्वल माने जाते हैं। कृषि प्रधान देश के जो दुनिया में हमारी पहचान बनी हुई है, बागवानी में भी हम दुनिया में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। केवल एक देश हमसे आगे चल रहा है, बाकी समूचे विश्व में हम कृषि प्रधान ही नहीं, बागवानी प्रधान देश भी पाने का हम बहुत जल्दी हमें अवसर मिलने वाला है
3: जी।
2: और ये सारी चीजें हालांकि देश में बहुत अच्छी तरह से पैदा हो रही हैं, इनकी प्रचुर मात्रा में पैदावार होने के फलस्वरूप हम आज आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में। एक समय था कि हम विदेशों से खाद्यान्न की आपूर्ति किया करते थे, लेकिन आज हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि न केवल देश की आवश्यकता पूरा करते हैं बल्कि विदेशों को निर्यात भी बहुत बड़ी तादाद में खाद्यान्नों का भारतवर्ष से किया जा रहा है
3: जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से देखा जाए कि हम लोग इसे, जो हमारे युवा साथी है, युवा पीढ़ी है जो आने वाली, उसको कैसे हमें रोजगार में जोड़ सकते हैं इस कार्य को लेके?
2: बहुत अच्छा अवसर है, इसमें असीमित संभावनाएं हैं। ये ऐसा कार्य क्षेत्र है कि हमारे पास कच्चे माल की, खाद्यान्नों की, तिलहनी फसलों की, दलहनी फसलों की, बागवानी फसलों की और नाना प्रकार के उत्पादों की कोई कमी नहीं है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम जिस तरह पैदावार में विश्व में अग्रणी देशों में गिने जाते हैं, पैदावार के साथ साथ हमारा रखरखाव थोड़ा सा कमजोर है, भंडारण की व्यवस्था समुचित न होने के कारण और उद्योगों का भरपूर विकास न होने के कारण हमारी फसलों का लगभग 25-30% प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। यानी कि 5,000 करोड़ प्रति माह की फसलें प्रतिवर्ष बर्बाद हो रही हैं, जो एक गंभीर मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। मैं समझता हूं कि गंभीर चिंतन का विषय है।
3: बिल्कुल
2: लिहाजा इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। इससे संबंधी अनेकों ऐसे रोजगार स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बेरोजगारी भी दूर हो, युवाओं को रोजगार मिले और देश की होने वाली इस महान क्षति को, बहुत बड़ी क्षति को, इस विशाल क्षति को भी रोकने में हम कामयाब हो सकें। इसलिए इससे संबंधित प्रोसेसिंग व्यवसाय की, प्रिजर्वेशन व्यवसाय की सुरक्षित रख करके लंबे समय तक और इस्तेमाल किया जा सके, ऐसे उत्पादों की यूनिटें, इकाइयां लगाने की हमें आज बहुत आवश्यकता है और युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए।
3: बिल्कुल सर। सर यहाँ पर हमारे मन में एक छोटा सा सवाल उठता है कि जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे साथियों को बताएं कि क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से?
2: देखिए, इस देश में विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में
3: जी
2: गेहूं की फसल, चना, मैं समझता हूँ मटर भी यहाँ काफी होती है और भी अनेकों खाद्यान्न पैदा होते हैं। सोयाबीन का भी शायद कुछ क्षेत्र है यहाँ आसपास मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में
3: जी।
2: तो इससे संबंधी छोटे छोटे फ्लोर मिल हैं, आपके सोयाबीन के उत्पाद हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ साथ सोयाबीन से रिफाइंड ऑयल है, ऐसे उद्योग हमारे इस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। और जहां तक सवाल है फल सब्जियों का, तो मैं समझता हूँ यहाँ नींबू की और आपके जो है वो अदरक की, टमाटर की बताए से पैदावार होती है। इससे संबंधी बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं, जैसे टमाटर सॉस है, टमाटर प्यूरी है, टमाटर जूस है, टोमेटो पेस्ट है और इसके अलावा नींबू का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ यहाँ सिट्रस का एरिया है
4: जी।
2: और सिट्रस से संबंधित उद्योग जैसे कि नींबू जूस है, स्क्वैश है, शरबत है, नींबू का सिरप और अचार है, ये सब सफलतापूर्वक यहाँ ये उद्योग लग सकते हैं। आपका मटर बहुत होती है, मटर को आजकल सफल मटर के रूप में ठंडा करके फ्रोजन फूड के रूप में आईक्यूब यूनिट कहते हैं लगाकर मटर को, हरी मटर को रखा जा सकता है सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। आजकल सफल मटर काफी लोकप्रिय भी है
0: जी,
2: तो उसे भी यहाँ स्थापित करने के पूरे अवसर हैं। साथ ही साथ अदरक से भी संबंधित यहाँ काफी व्यवसाय लग सकते हैं, अदरक की सुखा करके रखा जा सकता है सौंठ के रूप में, इसका कैंडी नाम से उत्पाद बनता है जिसको कहते हैं सूखा मुरब्बा
0: जी,
2: और अचार भी बन सकता है और जूस भी निकल सकता है, जिंजर का एक बहुत अच्छा एक ड्रिंक भी बनता है, पेय पदार्थ बेवरेज जिंजर ड्रिंक जो जाड़ों में औषधीय क्वालिटी का होने की वजह से फूड प्रोडक्ट के साथ साथ मेडिकेटेड प्रोडक्ट भी है, उसकी अपनी औषधीय गुणवत्ता भी है। लिहाजा ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो कि यहाँ लोकल फसलों के आधार पर या आसपास के क्षेत्रों में होने वाली फसलों के आधार पर स्थापित हो सकते हैं और निश्चित रूप से युवाओं को एक अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्षेत्रीय उत्पादों का भरपूर उपयोग होगा और राष्ट्रीय जो फसलों की बर्बादी का जो सिलसिला है वो काफी कम होगा और ये क्षेत्रीय विकास में प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास क्षेत्रीय विकास के लिए एक बहुत अच्छा अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित होगा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथियों में हमारे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और ध्यान से सुनते सुनते और गीत संगीत भी हुआ है और इनकी बातचीत हमारे जे सी शर्मा जी हैं जो चेयरमैन हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि कितना अपना भारत में कितने उत्पादन होता है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था जो चलती है वो खेती से चलती है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और हमारे किसान साथी समझ गए होंगे कि हमारे जो किसान साथी जागरूक हैं उनको तो और जागरूक होने की जरूरत है और जो हमारे किसान साथी सोच रहे हैं कि वही परंपरागत खेती उसी ढंग से हम चलेंगे तो अब समय आ गया है कि हमें अब वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की आवश्यकता है। तो वैज्ञानिक ढंग से हमारे श्रोता साथी किस तरीके से खेती करें यह भी एक बड़ा सोचने वाली बात है। तो इसके लिए भी आपको बता देना चाहते हैं कि समय समय पर आपके झाबुआ जिले में जो हमारे KVK है यानी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर हमारे पदस्थ जो वैज्ञानिक रहते हैं, पदस्थ अधिकारी जो रहते हैं जो कृषि पर विशेषज्ञ हैं उनसे हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा परियोजना भी चला रही है तो ऐसे में हम इन सारे जो जानकारी है उनको इकट्ठा कर यदि हम अपनी खेती में बदलाव करें तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जरूर हम दावा से कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी आय में वृद्धि जरूर होगी। क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम नई पद्धति से वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खास तौर पर देखा जाता है क्योंकि पथरीला इलाका है, कैसे करें, पानी रुकता नहीं है और रुकने के साथ साथ जो हमारे किसान साथी उनके पास सीमित जमीन है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो ड्रिप जो कि हमने पहले ही बताया था कि इसकी योजना चलाई जा रही है, ड्रिप बाय स्प्रिंकलर हुआ इसकी योजना चला रही है, शासन की योजना से लाभ लेकर हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं क्योंकि अब वक्त है हमें इन योजनाओं का लाभ लेने का। खेती किसानी में आप किस तरीके से बीज उपचार कर यदि हम खेती बाड़ी करें तो जायज सी बात है कि आने वाले समय में हम अपनी खेती में परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी खेती को बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सोचने वाली और सुनने वाली बात है और आपको खुशी होगी कि आपके इस झाबुआ जिले में रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुन खुल गया है तो आप जरूर सुनिएगा क्योंकि बाहरी महत्वपूर्ण खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और जरूर सुनिएगा और जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। और हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे कि हम कैसे फीडबैक दें, फोन नंबर तो होना चाहिए, तो आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा फोन नंबर जो है जो आप हमें कॉल करके हमें बता सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके यदि सवाल है उस सवाल का जो आप हमें प्रश्न पूछेंगे उस सवाल का हम जवाब भी अपने विषय विशेषज्ञ से जरूर देंगे। नोट करिएगा, हमारा नंबर है 94251436603 यानी 94251413603। हिंदी में बता देते हैं 4942541303 इस नंबर पर कॉल करके और हमें अपने जो भी आपके सवाल हैं उसको आप रख सकते हैं और हम अपने विषय विशेषज्ञ से आग्रह करेंगे उन सवालों का आपका जवाब सही समय पर मिले, जिससे हमारे किसान साथी अपनी खेती में परिवर्तन करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का यानी विराम का, लेते हैं एक छोटा सा संगीतमय विराम। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात।

0: तो देखिए, जैसे खेती में जो मूलभूत खेती है उसके अतिरिक्त उसमें क्या जोड़ सकता है, आपको एक उदाहरण के साथ मैं बताऊं। यही जो आपका बिरगुआ है वहां पे एक किसान ने पिछले साल ब्रोकली लगाया
1: जी।
0: लोग सामान्य रूप से बोलते हैं कि ब्रोकली कौन खाता है, लेकिन उस किसान की ब्रोकली 300 रुपए केजी और करीब 1.5 लाख रुपए की उसने जो है
1: जी
0: आय अर्जित करी पूरे सीजन में। तो इस तरीके से चेरी टोमेटो है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपका सलाद में बहुत सारे आपके सलाद आजकल हैं जो मार्केट में आते हैं, उसके सीड भी अवेलेबल हैं। तो जरूरी ये है कि आप दो चीजें ध्यान रखिए कि एक तो मार्केट में किस फसल की कितनी डिमांड है
1: जी।
0: और उसकी क्या प्राइसिंग है
1: जी।
0: दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज ये है कि टमाटर ये सब भी करिए, लेकिन उसके लिए भी टाइमिंग सेट करिए कि किस टाइम पर मार्केट में जाने पर, जैसे धनिया टमाटर आज के परिवेश में अभी वर्तमान में मंडी में जाएं तो धनिया 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, इस तरीके की फ्लक्चुएशन रेट पर नॉर्मली बिकती है। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको हाई बेड तैयार करनी होती है धनिया की, जो सामान्य रूप से सामान्य खेत होता है उस पर वो नहीं ग्रो करती है। आप थोड़ा सा खेत के को आप हाई करिए, उस पर बेडिंग करिए, जिससे आप धनिया की सोइंग करेंगे तो जिस तरीके की धनिया आपकी मार्केट में अवेलेबल होती है सामान्य किसान भी उस धनिया को कर सकता है। तो अगर आपको इस तरीके के संसाधन या अपनी आय बढ़ानी है तो आपको ये सब चीजों की जानकारी लगातार बनाए रखनी पड़ेगी कि क्या मार्केट में किस सब्जी की, किस फसल की क्या डिमांड है। धनिया, जैसे धनिया केवल दोनों ही पर्पज से इस्तेमाल होती है, हरी सब्जी की, हरी मतलब सलाद या सब्जी में डालने के लिए, चटनी बनाने के लिए। दूसरा जो है उसके सीड का बहुत बड़ा स्कोप है। आप मंदसौर मंडी है मध्य प्रदेश में, लोग एक समय ऐसा आता है कि बड़े बड़े व्यापारी अपना जो है या बड़े बड़े जो जिनके पास पैसा होता है वो बुक कर देते हैं कि हमारा 200 बोरा रख दो, जब ऑफ सीजन होगा तब हम उसको सेल करेंगे। तो मेरा मतलब है कि थोड़ा सा ये भी चीजें हैं कि अगर जिस समय आप उत्पादित करके हुआ तुरंत बेच के आप बेचने के बजाय उसको रखे रहें, कुछ समय तक वेट करें, जब आपका ऑफ सीजन दिखे मार्केट में उस टाइम में आप इसको सेल करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो मैं बताया बागवानी और ये दोनों चीजें, आपका फिशरीज एक बहुत बड़ा है सेक्टर, आपको बताऊं कि कितना जल का कितना प्रभाव है कि उससे प्रॉपर नहरें बनाई जाएं या जिससे आपका बेतवा है या और जो नदियां हैं, तो ये भी एक रीजन रहा है थोड़ा पिछड़ेपन का। तो ये भी उसमें एक जरूरी है कि जल संसाधन, जल मैनेजमेंट, आज अमृत धारा या अमृत जो आपका योजना चल रही है कि हर घर पे जो है पाइपलाइन या तो ये भी हो कि हर किसान के घर पर कितना वन ड्रॉप वन क्रॉप जो आपका कॉन्सेप्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसको भी ये फॉलो हो यहाँ पर भी, तो ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे और उससे उनको फायदा होगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे किसान साथियों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी,
0: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपनी बातें।
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने हमारे विषय विशेषज्ञ संतोष पांडे जी को सुना, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जिस तरीके की हमने खेत बनाए हैं, जिस तरीके की हमारी इस झाबुआ जिले में हमारे किसान साथी खेती करते हैं और जैसा मिट्टी है उस हिसाब से हमें सब्जियों को लगाना चाहिए, उस हिसाब से हमें अपने खेती को करना चाहिए। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती करिएगा तभी आय में वृद्धि होगी। और खासतौर पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर डाला है कि हमारे किसान साथियों को थोड़ा रोक के हमें बेचना चाहिए, जो भी आपके उत्पादन हुआ है उसको हम सोच समझ कर बेचना चाहिए, तभी हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जब तक हम अपने वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पर पथरीला इलाका है और हमारे किसान साथी कितनी मेहनत करते हैं, कम से कम 10-15 पानी लगते हैं तब वो फसल का उत्पादन होता है। ऐसे में कौन सी पद्धति ऐसी होती है, कौन सी पद्धति ऐसी है जो अपने झाबुआ जिले में हम लोग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाइएगा, उनसे सलाह लीजिएगा, कृषि विस्तार अधिकारी भी आते हैं उनसे सलाह लीजिएगा, समय समय पर आत्मा भी परियोजना चला रही है है उनसे भी जाकर सलाह ले सकते हैं और अपनी खेती को वैज्ञानिक पद्धति से कर सकते हैं। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। फोन नंबर है हमारा 94-25-41-36-03। इस नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं खेती किसानी से जुड़ी। साथियों आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं इन प्यारे से गीतों को। नमस्कार। Thank you.

Thank you.

Yeah.

0: तड़प मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है अनुभवों की विरासत और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं ऐसे व्यक्तित्वों से जिनका जीवन केवल वर्षों का नहीं अनुभवों का खजाना है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही सधे हुए, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाले व्यक्तित्व डीएन शर्मा जी, जिन्होंने अपना जीवन बैंकिंग जैसी अनुशासित दुनिया में बिताया पर दिल हमेशा साहित्य की भावनाओं से जुड़ा रहा। वे न केवल एक सफल बैंक अधिकारी रहे बल्कि हिंदी साहित्य के प्रेमी, सामाजिक रूप से सक्रिय नागरिक और अपने 95 वर्षीय पिता के समर्पित पुत्र भी हैं। उनकी कलम सामाजिक पाखंडों को बेनकाब करती है और उनके शब्द समाज के आईने में हमें अपना असली चेहरा दिखाते हैं। आज के इस विशेष संवाद में हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा, उनके साहित्यिक विचार, उनके सामाजिक दृष्टिकोण और वह दर्शन जिसने उन्हें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखा है। तो आइए स्वागत करें डीएन शर्मा जी का और चले उनके साथ एक आत्मीय सफर पर अनुभवों की विरासत के इस प्रेरक संवाद में। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आपके पिछली जिंदगी से। आपने अपना एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग की दुनिया में बिताया, एक अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित यानी टारगेट ओरिएंटेड जीवन। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस यात्रा को कैसे देखते हैं?
1: जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 36 वर्ष 8 माह की मैंने बैंकिंग की सेवा की है। पंजाब नेशनल बैंक में कार्य किया और बैंक ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं बिहार, गुजरात, हरियाणा आदि आदि कई राज्यों में मेरी पोस्टिंग रही, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना हुआ, वहाँ की संस्कृति को देखा, निकट से जाना। बिहार एक बहुत ज़्यादा प्रचारित स्टेट है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने निवास किया, वहाँ रहा, तो ये पाया कि वहाँ के लोग उतने ही सीधे और सरल हैं, बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि वो बात बहुत पुरानी हो गई, 90 में हम वहां से वापस आ गए थे। इसके साथ ही बैंकिंग जीवन में जो लक्ष्य थे वो बैंक में थे, बाहरी जीवन में हम ग्राहक सेवा और एक टीम वर्क, ये दो भावनाएं मुझे वहां से सीखने को मिली। आप एक अच्छी टीम के साथ जब चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, और टीम बनाना आपके हाथ में, टीम के हर सदस्य का ख्याल रखना, तो अच्छी टीम का निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु। तो ग्राहक सेवा एक ऐसी सेवा है जो ना सिर्फ बैंक का नाम रोशन करती है, वरन एक जो कहते हैं ना कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है, ये संघ का एक मूल वाक्य है। तो नारायण सेवा यानी कि भगवान की सेवा। आप किसी अत्यंत कष्ट में जो आदमी है उसकी अगर अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं तो वो ग्राहक सेवा बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है, और वो हमने की है। कई बार ऐसा हुआ, एक बार एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। राजकोट में मेरी पोस्टिंग थी, रात 11 बजे मुझे फोन आया कि साहब आपका एटीएम काम नहीं कर रहा। मैंने कहा आप जी? तो बोला मैं अपने पिताजी को शहर वहां गांव से लेके आया हूँ और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, एटीएम काम नहीं कर रहा और मुझे पैसे चाहिए। मैं तुरंत एटीएम पे गया, पास में ज्यादा 1.5 किलोमीटर था राजकोट में जहाँ मैं रहता था, वहाँ उसकी परेशानी को समझा और सौभाग्यवश उस समय मेरे पास, मैंने कहा कितना पैसा चाहिए? कि साहब 5,000 चाहिए, आप चाहे तो मेरा ये कार्ड रख लें, मैं सुबह आके बैंक में आपको दे दूंगा पैसे। सौभाग्य से 5,000 रुपए। हम लोग बैंकर पैसे ज्यादा रखते नहीं है, लेकिन उस दिन किसी उस दिन किसी कारण से मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा उसको मैंने वही पैसा दिया, क्योंकि वो बोला अब रात में मैं कहाँ जाऊं साहब। मैं तो इसी विश्वास पे आया था कि एटीएम से पैसे मिल जाएंगे, तो मुझे वो विश्वास उसका बरकरार रखना था। पैसे दिए, दूसरे दिन आके वो मुझे दे गया, बात आई गई हुई। लेकिन उस समय विशेष में अगर उसकी मैं हेल्प कर सका तो ये मेरे लिए अवसर था।
2: संतोष मिला आपको, संतोष मिला आपको, बिल्कुल सही,
1: बहुत ज्यादा। हाँ
2: चलिए।

0: चलिए तो फिर थोड़ा सा और किसी तरफ रुख करते हैं।
1: जी
0: आपकी साहित्यिक रुचि के बारे में मैंने बहुत सुना है, क्या साहित्य की रुचि आपकी नौकरी के साथ साथ रही या सेवानिवृत्ति के बाद उसे गहराई से जीने का अवसर मिला है?
1: साहित्य से लगाव तो शुरू से ही रहा। बचपन में जब हिंदी में भी हमारे सिलेबस में गद्य और पद्य दोनों ही हुआ करते थे, तो बहुत सारे ऐसे गद्यों की पद्यों की मैंने ऐसे कंठस्थ हो गए जिन्हें मैं जोर जोर से बोल करके सुनाता था।
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: दिनकर साहब का रश्मि रथी है,
0: हाँ अच्छा, रश्मि रथी, बिल्कुल
1: अरे
0: बिल्कुल।
1: साहब वो बहुत, उसको भी मैंने बहुत गा गा करके भी सुनाया है।
0: अरे वाह, अरे
1: और
0: वाह, अच्छा।
1: हाँ, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही कोई चीजें खा लेंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे,
0: वाह,
1: पर
0: अभी
1: दुर्योधन
0: सुनेंगे कभी। वाह, बहुत बढ़िया।
1: वो भी दे न सका आशीष समाज की लेने। बहुत लंबी है तो उसके ये 2-3 लाइनें थी। बाद में जब किशोरावस्था आई तो उस जमाने की जो पत्रिकाएं थी उनमें साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी,
0: हाँ,
1: सारिका,
0: धर्मयुग, धर्मयुग।
1: धर्मयुग, ये अब बंद हो गई हैं,
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल,
1: इन्होंने ये साहित्य से ही जुड़ी सारी पत्रिकाएं
0: पत्रिका
1: थी।
0: पर बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और इनके जो विशेषांक आते थे किसी न किसी एक राइटर, किसी एक लेखक के जीवन जी को
0: जी
1: लेकर, तो उन
0: जी
1: लेखकों
0: बिल्कुल।
1: से भी मेरा वो हुआ। मुंशी प्रेमचंद हो, निराला जी हो, दिनकर जी हो, मनु भंडारी
0: दिनकर
1: हो,
0: मन मिटा रहे हो,
1: फणीश्वरनाथ रेणु हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, दिन हाँ,
0: वृंदावन
1: मोहन
0: लाल
1: राकू,
0: वर्मा, वृंदावन लाल
1: वृंदावन
0: वर्मा। बहुत,
1: मोहन राकू, और हिंदी
0: हाँ
1: गजलों के सर्जक दुष्यंत कुमार, तो मैंने सारिका से
0: हाँ
1: ही उनके हाँ
0: अच्छा
1: एक
0: अच्छा
1: पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हाँ,
0: यारो, कौन
1: कौन
0: कहता है आसमान में
1: कहता है
0: सुराख
1: हो
0: हो नहीं
1: नहीं
0: सका।
1: सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दूसरा कि हंगामा, सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं
0: बिल्कुल।
1: है,
0: मेरी
1: ये हालात
0: सूरत
1: या
0: बदलने चाहिए,
1: बदलने चाहिए था वो।
0: बिल्कुल
1: तो ये
0: बिल्कुल।
1: काफी इन्होंने जीवन में ये बातें अभी भी दिमाग में कौत की है। हाँ, और
0: आपकी इतनी सी बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी है। क्या बढ़िया
1: एक
0: बढ़िया पुरानी बातें, और वो हिंदी गद्य पद्य संग्रह आपने याद दिला दिया बचपन का, और
1: जी हाँ
0: कादम्बिनी, ज्ञानोदय, और धर्मयुग, और साप्ताहिक
1: जी
0: हिंदुस्तान की याद दिला दी,
1: जी जी
0: मजा आ गया।
1: कहा तो वो है ना,
0: चलिए,
1: मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी
0: जी, दिनकर जी का,
1: का
0: दिनकर,
1: ही
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत
1: है
0: बढ़िया।
1: ये ऐसी लाइन है, अमिट है, ये हमेशा रहेगी जीवन जी, मानना फिक्स है।
0: बिल्कुल।
1: मैं है।

0: आपको हिंदी साहित्य से तो विशेष लगाव है ही है, कौन से विशेष लेखक, हालांकि आपने दो तीन लेखकों अभी नाम दे दिया, या कवि जो आपके मन पे सबसे गहरी छाप छोड़ गए हैं, कौन है?
1: एक तो ये पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, ये जो पुष्प की अभिलाषा,
0: पुष्प की अभिलाषा, हाँ हाँ
1: क्या नहीं मैं फूलों में गूथा जाऊं, क्या नहीं मैं चढ़ा शीश पर हरी के इठलाऊं, है ना,
0: इठलाऊं
1: लास्ट, हाँ लास्ट में ना कि मुझे छोड़ लेना बनवा
0: छोड़ देना,
1: उस पत्थर पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर
0: ने। बहुत बहुत,
1: ये बहुत अच्छी लाइनें थी जो अभी तक भी देश सेवा के लिए प्रेरित करती है।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया
1: कहानियों में वो ईद का।
0: अब आपने रश्मि रति की बात की थी, आप चलिए कोई ऐसी रचना या कविता या पंक्ति जिसने आपके जीवन दर्शन को बदल दिया हो उसके बारे में कुछ बताएं, अगर उसको सुनाना चाहें थोड़ा सा ब्रीफ में तो आपका स्वागत है।
1: कविता मैं तो अपनी वो मेरी खुद की बताई हुई है लेकिन वो अभी सुनाता हूँ।
0: सुनाता हूँ
1: अभी बन पाई है, आज समय अभाव में ऐसा कम मिलता है, लेकिन है कि भीतर जज्बात गड़े हुए,
0: अच्छा
1: भीतर जज्बात गड़े हुए, बाहर मुकोटे चढ़े हुए,
0: ओहो ओहो,
1: सच की कीमत गिरती रोज, झूठ के सिक्के गड़े हुए,
0: वाह अच्छा अच्छा,
1: नैतिकता के गीत सुनाए, नैतिकता के गीत सुनाए, खुद लाभ के राह बनाए, जन सेवा के वचन बढ़े पर कर्म स्वार्थ में लिपट जाए, और लास्ट है कि दिखावे के छंद रचे असली मूल्य तो कहीं गुम, सामाजिक मंच पर नाटक चलता, अंतःकरण में मूक हैं हम।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारा चीजें बदल गई हैं, धर्मयुग और ये सब चीजें तो पुरानी हो गई है, आप बताइए इसके आज के डिजिटल में आप हिंदी साहित्य की भूमिका को कैसे देखते हैं, क्या ये पिछड़ रहा है या नए रूप में उभर रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: पिछड़ तो नहीं रहा, स्वरूप बदल रहा है।
0: अच्छा।
1: पहले प्रिंट मीडिया था, आज डिजिटल मीडिया है। प्रिंट मीडिया में जब कहानियां, उपन्यास या कुछ भी सृजन होता था, लिखा जाता था, तो थोड़े ही हाथों में जाता था, थोड़ी आंखें उन्हें पढ़ पाती थी, पर आज हर हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसपे आपकी कही हुई बात तुरंत सब जगह फैल जाती, तो वास्तविक रूप से तो जनमानस जो हमारा जो माइंड सेट है उसको प्रभावित करने का ये सोशल मीडिया है, यही तो है सर। पहले भी साहित्य यही करता था, पहले का साहित्य घटनाएं घटने के बाद उनका वर्णन करता था, क्योंकि शिक्षक तो एक अलग चीज थी, वो पिक्चर और उसमें वो अलग मीडिया है, लेकिन प्रिंट मीडिया में मैं जब बात करता हूँ तो जो फिक्शन वाला, जब घटनाएं घट जाती है उसके ऊपर उसका विवेचन होता था। आज तो दृश्य मात्र सब कुछ आपके सामने होता है, लोग हाथों हाथ उसके वीडियो भी बना देते, ये भी तो सत्यता आज बिल्कुल लोगों को जानने को मिल रही है, हर चीज उनके सामने है, तो उसके बाद वो अपने निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि माइंड सेट वैसा ही बनता है। तो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है और जो साहित्य, यानी कि साहित्य नहीं रचा जा रहा, साहित्य भी है लेकिन जो बातें पुरानी है, इतिहास का भी हमें पहले जितना बताया गया था उतना ही मालूम है, लेकिन आज लोग उसको कुरेद के सारे प्रस्ताव के सामने ला रहे, तो बहुत अच्छा भविष्य है। एक स्वरूप बदल गया, जागरूकता बढ़ गई, ये मैं मानता हूँ।
0: नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्विटर पे घटना घटती नहीं है, कोई स्टेटमेंट देता नहीं है और उसके रिएक्शन से एकदम ट्विटर पे या फेसबुक पे और इन पे आने शुरू हो जाते हैं और कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सीडेंट होते ही उसकी एकदम तुरंत खबर भी आ जाती है और रिलीफ भी पहुंच जाती है, हर प्लस एंड माइनस दोनों रिलीफ पहुंचती है। देखे दोनों बात
1: दूसरी बात है कि जो युवा जो है जिसको अपन समझते हैं कि साहित्य में रुचि नहीं लग रहा, वो भी इसमें पूरा सक्रिय है ना, वो उसके पास पहले पहुंच रहा, वो उसके पास पहले पहुंच रहा, वो उसकी प्रतिक्रिया पहले आ रही।
0: बिल्कुल सही बात। अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल होने लग गए और काफी सफल हो गए और काफी युवाओं की भीड़ भी होती है वहाँ, तो मतलब ठीक है, उसका अपना एक माइनस पॉइंट भी है, थोड़ा सा वहाँ कमर्शियलाइजेशन है, लेकिन फिर भी चल ही रहे हैं वो अलग बात है।
1: ये जयपुर डायलॉग अभी होगा 7-8 नवंबर, मैं 3 साल से जा रहा हूँ, ये तीसरी बार होगा मेरे।
0: हाँ जयपुर डायलॉग होने वाला है, मैं भी जाऊंगा।
1: संजय बहुत अच्छे, वहाँ सारे राष्ट्रवादी विचारकों के लोग आते हैं, उनसे व्यक्तिगत आप मुलाकात करते हैं, उनसे सेल्फी खिंचवाते हैं, तो बड़ा आनंद आता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आऊंगा। और मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, वो संजय दीक्षित का बड़ा फैन है, वो भी आ रहा है अमेरिका से सिर्फ इसके लिए आ रहा है। बोले कमाल है ना,
1: कमाल नहीं, मेरे अपने राजकोट मेरे साथ जो काम किए हैं व्यास जी महाराज, वो भी आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही फोन कर दिया कि आप वही है। मैंने कहा हाँ, बोले मैं उसमें आ रहा हूँ सर। मैंने कहा
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।

0: उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कनिया आ रे बर्फी के सब रस ले लिया रे बिंदड़ी माले मुनिया।
1: चलिए तो ये जो आपने कविता भी सुनाई इससे ये लगता है कि आप समाज की जो दोहरी मानसिकता है या पाखंड है या हाइपोक्रेसी है इसको ये आपको सबसे ज्यादा खटकती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों हो रहा है और आपको ही क्यों ऐसा महसूस होता है कि हाइपोक्रेसी बहुत ज्यादा है, हाइपोक्रेसी और पाखंड बहुत है हमारे समाज में, डबल स्टैंडर्ड जिनको कहते हैं।
2: इसका मूल कारण जब मैं खोजता हूँ तो एक जो धारणा हम लोगों के मन में बिठाई कि पुण्य मिलेगा, है ना, एक आम धारणा बिठा देते ना, ऐसा करने से पुण्य मिलेगा, गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा करने से यह होगा। भाई मूल तो यह है कि वो पाप करे ही क्यों, ताकि धोना पड़े। दूसरा पुण्य कमाना का आज मैं देखता हूँ, अभी जा रहा था मेरे नाती को छोड़ने, तो सड़क पर कुछ लोगों ने हरा चारा वहां रखा हुआ और गायें थोड़ी सी वहां कर रखी है, और अब जो पुण्य कमा रहा है वो 10 रुपए की वो एक पुड़ी खरीद के वहां बिखेरता, वो सड़कों पे ट्रैफिक तो बर्बाद हो ही रहा ना, ट्रैफिक का नुकसान, लेकिन वो पुण्य कमा रहा है, ऐसा पुण्य तो कोई काम का नहीं है। दूसरा बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की, ये जो वृद्धाश्रम और ये जो खोल रहे हमारी संस्कृति में ही नहीं, हमारे जीवन मूल्य ये कहते ही नहीं थे। जो वृद्ध था उसकी तो घर में ही सेवा होती थी,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: तो ये जो जीवन मूल्य राजनीतिक सुचिता कहाँ है सर, राजनीतिक सुचिता है? हम अच्छा हमारे समाज में ये कहते हैं कि कमजोर की सहायता तो करते नहीं है और विश्व के कल्याण का नारा लगाते हैं, तो विश्व का कल्याण कब होगा, जब मेरा पड़ोसी अगर वो किसी कारण से अभाव में है तो उसकी तुरंत सहायता हमको करनी चाहिए ना, वो हम नहीं कर पा रहे। तो ये है दिखावा, आप जा रहे हैं मंदिर में लोगों को दिखाने के लिए, वहां खूब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर भी अगर कोई गरीब या कोई वीक आदमी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, कभी उसको पूछेंगे नहीं जाके कि भैया क्या जी, कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। तो ये अगर ऐसा करे तो अपने आप ही सारा समाज स्वस्थ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं देखता हूँ। और
1: सही
2: दोहरी मानसिकता सर अब खाली इसमें ही नहीं है, आप देखें आर्थिक जीवन मूल्यों का तो बहुत ही पतन हो, अगर आर्थिक जीवन मूल्य का मैं यही मानता हूं कि आज देखते हम मिलावटी क्यों मिलता है सर, नकली क्यों होता है, हर मसाले खाने की चीज जिससे हमारा स्वस्थ रहना है आदमी को, उसमें मिलावट, नकली मिठाइयां आ रही, नकली मावा आ रहा, तो ये आर्थिक रूप से मैं इसको आर्थिक जीवन मूल्यों का पतन देखता हूँ, वहां पारदर्शिता नहीं है, आप कमाए ना भाई, हर एक आदमी बैठा है कमाने के लिए, रोजी रोटी है, आप आजीविका करें, लेकिन जीवन वहां पे भी तो मूल्य रखें कुछ, कि मैं कुछ भी हो जाए मैं नकली या ये सब स्टैंडर्ड का काम नहीं करूंगा। ये यहाँ मैं वो देखता हूँ, हम देखते सारे सरकारी, हर आदमी क्यों भाग रहा है सरकारी नौकरी मिल जाए, क्यों, क्योंकि वहां वो तनख्वाह जो मिलेगी ना काम करने की, वो उससे संतुष्ट नहीं होता, वो तो काम करने के अवज में जो मिलने वाला है उससे संतुष्टि आती है,
1: उससे संतुष्टि।
2: अच्छा मुंशी प्रेमचंद ने साहब इसको कब नमक का दारोगा 100 साल पहले,
1: नमक का दारोगा बहुत साल
2: उसने लिख दिया था कि ये ऊपर की इनकम तो वो ये अमावस्या का चांद है जो दिखता नहीं है लेकिन बढ़ रहा
1: है,
2: और खाली तनखा तो पूर्णमासी का चांद है जो एक बार दिखती है महीने और बाद में सिनेशन है लुप्त हो जाती है, वो चीजें आज भी जब है समाज में हम ठीक नहीं कर पाए, ये मेरे को कचोटती है बात।

0: बिल्कुल यार, मुझे भी आपकी बातों पे याद आ गई एक सज्जनता का दंड, एक प्रेमचंद जी की कहानी हुआ करती थी
1: हाँ,
0: तो
1: प्रेमचंद जी ने तो,
0: उसमें भी
1: प्रेमचंद जी ने जो सामान्य मानसिकताओं का जो वर्णन किया ना, वो सब, वो
0: बहुत
1: अभी तक मैं
0: बहुत
1: उनके नजदीक किसी को नहीं पाता।
0: बिल्कुल
1: उनकी
0: सही
1: गहरी
0: बात
1: संवेदनशील लेखन जो था ना उनका, एक
0: है,
1: आदमी
0: बहुत
1: के अंदर तक घुस करके उसकी भावनाओं को जो उजागर किया है, कोई भी कहानी उठा ले वो
0: कोई भी
1: अभी
0: कहानी
1: तक। हाँ, अभी मैं बहुत कम साहित्यकारों को ऐसा मानता हूँ, हालांकि सबकी अपनी अपनी विधा है,
0: ना,
1: सब
0: सही बात
1: अपने
0: है।
1: अपने क्षेत्र में है, लेकिन वो मानवीय मूल्यों और ये संवेदनशीलता को जो लिखा है वो मुंशी प्रेमचंद।
0: बहुत बहुत सही बात है, क्या पुरानी बातें याद आ गई आपके साथ बात करके। चलिए, अब साहित्य समाज में परिवर्तन ला सकता है, या कुछ लगता है आपको कि अगर साहित्य पॉजिटिव लिखे या अच्छा लिखे तो उससे कुछ समाज में परिवर्तन आ सकता है? क्या किया जाए इस स्थिति?
1: देखो, अभी मैं जब साहित्य के बारे में अपन बात करते हैं तो मैं
0: जी
1: ये देखता हूं कि अभी युवाओं का जो हुआ, ये एक IITian हुआ है ना, जिन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड हाफ वाइफ, और ये जिसपे एक पिक्चर भी बनी है अभी, एकदम से विस्मृत हो रहा है नाम उसका। तो उनका साहित्य
0: अच्छा,
1: देखता हूँ तो युवाओं के लिए तो उन्होंने कम से कम चार पांच उनके अच्छे उपन्यास हैं।
0: चेतन भगत की बात कर रहे हैं क्या आप?
1: हाँ, चेतन भगत, चेतन
0: चेतन भगत की
1: भगत
0: बात कर रहे हैं? हाँ,
1: है, वो भी साहित्य
0: चेतन,
1: है। तो
0: हाँ, वो
1: उन्होंने,
0: भी सर।
1: लेकिन उन्होंने, मैंने पढ़ी उसकी दो दो उपन्यास मैंने पढ़े हैं उनके।
0: हाँ, मैंने
1: तो
0: भी पढ़े, मैंने भी पढ़े।
1: वो जो युवा है ना, उसके आज की परिस्थितियां, आज में उसके द्वारा किए गए कार्य, या आज किस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा, उसका वर्णन किया। तो वो इतना प्रभावी और परिवर्तन वाला मैं नहीं मानता उस साहित्य को। अभी मैं देख रहा हूं कि समाज में धार्मिकता का एक ज्यादा बोलबाला चला हुआ है अभी पूरे समाज में,
0: जी
1: कोई भी
0: जी
1: हो,
0: जी
1: कोई भी,
0: बिल्कुल
1: चाहे
0: बिल्कुल
1: हिंदू
0: बिल्कुल
1: हो, मुस्लिम
0: हो
1: हो, क्रिश्चियन हो।
0: जा, बिल्कुल बिल्कुल
1: तो मेरा ये मानना है कि ये वास्तविक परिवर्तन तो हमारे गुरु लोग हैं या संत महात्मा। अभी देखते हैं हम, एक महात्मा जी अगर प्रवचन देने आए हैं वो पंडाल भरे हुए हैं,
0: बंडाल भरे हो जाता
1: और
0: है।
1: आप देखें
0: और
1: अभी विद्याधर नगर में भी काफी ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं,
0: हाँ, हुई है, और महिलाओं की
1: स्टैम्पेड भी
0: संख्या
1: होती है,
0: बहुत होती है उसमें,
1: बहुत
0: महिलाएं
1: होती
0: तो
1: है।
0: भरी पड़ी है, भरी पड़ी है,
1: हाँ साहब,
0: क्या है।
1: तो वो है संत महात्मा। अच्छा, मुल्ला मौलवी है। मौलवी साहब ने मस्जिद में जो तकरीर कह दी है वो ज्यादा प्रभावी है। तो वो अगर हमारे समझदार होंगे तो वो समाज को परिवर्तित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही।
1: ये मेरा ऐसा मानना है कि हम, चूंकि अभी भी हम धर्म गुरुओं के उपदेशों से ही प्रभावित होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं और
0: वो
1: आगे
0: आज
1: भी
0: भी हो
1: होंगे,
0: रहा है।
1: तो भले ही हम कहते रहे कि हमारी सोच, हम तो बहुत वैज्ञानिक हैं, लेकिन कर्म कांडों से तो मुक्त ना हो पाए हम। तो
0: बिल्कुल सही बात,
1: परिवर्तन, परिवर्तन के लिए मुख्य जो हस्तियां हैं, तो उनमें मैं इनको मानता हूं कि साहित्य एक, उसकी रीच बहुत कम, साहित्य को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो
0: बिल्कुल सही
1: इनकी
0: बात।
1: रीच ज्यादा है। तो अगर वास्तविक परिवर्तन लाना होगा तो हमें इनसे ही, इनसे गुजारिश करनी होगी कि ये अच्छी बातें बताएं।
0: सही बात
1: है, वैसे हमारा दर्शन बहुत बढ़िया, सनातन का भी दर्शन बहुत बढ़िया, विश्व बंधुत्व की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया है, यही
0: जी
1: सब हमारे है, हमारे विश्व का कल्याण हो, यही कहते हैं ना साधु।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है,
1: तो
0: यही
1: ये,
0: है।
1: हाँ, ये ज्यादा प्रभावकारी और परिवर्तनकारी इन लोगों की भूमिका है, ये अच्छे होने चाहिए। और दूसरा,
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: सही।
1: जो, हमारे जो शिक्षक वृंद है, जो प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, बड़े नहीं, प्रारंभिक, क्योंकि वहां हमारा बेस तैयार होता है, हमारी सोच का जो बेस है मूल, वो वहां तैयार होता है। तो वहां पे हमें जो भी हमारे शिक्षक वृंद है वो इतने उत्तरदायी अपने आप को समझे कि यार मेरा ये ड्यूटी है मैं बच्चों में अच्छे संस्कार डाल, तो वहां से शुरू होगा, मेरा ये मानना है कि
0: बिल्कुल
1: समाज
0: सही
1: में
0: है,
1: पल।
0: ये पॉइंट आपका बहुत सही है। शिक्षक की जो समाज में स्थिति अब बन गई है
1: बन गई है। हाँ
0: वो बहुत ही पीड़ादायक है, मैं तो यही कहूंगा। एक जमाने में गुरु का, जो प्राइमरी का स्कूल का टीचर होता था, वो जिंदगी भर याद रहता था, और कितना भी आदमी बड़ा बन जाए उसके जाके चरण स्पर्श
1: पांव
0: करता था,
1: छूते ही थे, पांव
0: पांव
1: छूते ही
0: छूते ही
1: थे सर।
0: पांव छूते थे।
1: आज
0: लेकिन
1: भी
0: अब
1: हम तो छूते
0: तो
1: हैं, हम तो छूते हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे जो पुराने गुरु हैं। अब
0: अब ये
1: नई जनरेशन
0: ये
1: नई।
0: पंचायत नगर पालिकाओं ने, इनने बिल्कुल टीचर्स का बहुत बहुत ही वो एक्सप्लोइटेशन कर दिया है, पर पूरा
1: एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है, दूसरा वो अपनी जवाबदारी से भी मुक्त हो गए। वो उनका ये मानना है कि ये इतना पैसा मिल रहा है, ये काम किया जाएगा
0: बहुत बहुत है, बहुत
1: ये।
0: है। और फिर सरकारी नौकरी है इसलिए कोई बात है नहीं।
1: इनका कुछ है नहीं। अच्छा, पढ़ाने का काम सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे
0: वो लंबा
1: हैं
0: लंबा लंबी डिस्कशन है।

0: चलिए, अब थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं
1: जी,
0: आपके। आपसे चर्चा में पता लगा आप अपने 95 वर्षीय पिता की देखभाल कर रहे हैं। ये बहुत ही अलग है। ये अनुभव आपको जीवन, धैर्य और परिवार के बारे में क्या सिखाता है, और क्या ऐसा इमोशनल कनेक्ट है आपका अपने पिताश्री से जिसको आप इस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं हमें।
1: जी सर, हमारे तो हमारी जो मूल अवधारणा है ही कुटुंब की। हाँ, कुटुंब में जो सबसे बुजुर्ग होते थे उनकी एक आवाज भी सारा कुटुंब सहन जाता था, पूरा परिवार। याद करें सर आप भी, और आज
0: जी
1: ये स्थितियां कहाँ आ गई हैं। आज
0: बिल्कुल
1: आज अपने ही बच्चे या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं, अरे आप तो कुछ पता नहीं सर, आप कितनी जानते हैं। लेकिन
0: सही
1: हमारे सांस्कृतिक मूल्य वही हैं, जीवन मूल्य वही हैं। अब पिताश्री आज 95 पूर्ण करके, अभी 96 तो हम मनाएंगे, उनकी दिवाली के बाद आती है उनकी, हर साल हम उनकी जन्मदिन मनाते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। अब
0: बहुत
1: क्या है,
0: सुंदर
1: शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए, तो चलने में भी उनको मैंने बिल्कुल मना किया हुआ कि आपको कहीं पे भी जाना हो तो मुझे बोला, मैं साथ चलूंगा। तो जितनी भी चिकित्सा की जरूरत है होती है इस एज में, डॉक्टर को
0: नेचुरली।
1: दिखाना है मैं जाऊंगा साथ में, दवाई लानी है मैं जाऊंगा साथ में। मैं जब उनके सुबह सुबह का मेरा समय होता है 11 बजे के आसपास, तब उनके पांव दबाने का और हाथ दबाना, तो
0: अच्छा।
1: जो ही मैं वो शुरू कर पाऊंगा सब, तो वो निद्रा में ही चले जाते हैं। वो सुख की उनकी जो अनुभूति है ना,
0: अरे
1: निश्चिंत
0: वाह।
1: होकर के, वो मुझे जो ऊर्जा देता है ना, वो दृश्य, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर पा रहा हूँ। भगवान की इतनी कृपा हुई है मेरे पे कि हम कुछ कर पा। दूसरी बात, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब समाज में, वो द्विगुणित होके त्रिगुणित होकर वापिस आएगा।
0: वापस
1: हम
0: आएगा।
1: बिल्कुल, हम जैसा जो भी कर, हम अगर किसी को गालियां और ये दे रहे हैं तो वो उससे ज्यादा हमको पड़ने वाली है आगे। या तो हम अगर ये संस्कार अपने बच्चों में दे पा रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, तो उनमें भी वो संस्कार आएंगे। हालांकि मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है कि लोग ऐसा मुझसे भी करें, लेकिन अगर संस्कार हैं तो स्वभावतः ही वो होगा,
0: सही
1: ऐसा
0: बात
1: मैं
0: है,
1: मानता हूं। तो ये है
0: बिल्कुल
1: सर।
0: सही, बिल्कुल सही बात है।
1: पिताश्री का तो जो पितृ ऋण है वो तो हम चुका तो नहीं सकते, तो उसको थोड़ा थोड़ा किस्तों में इस प्रकार से हम पूर्ण हुआ चाहते हैं। तो और सुख जो मिलता है वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है साहब।
0: ये बहुत ही सुंदर विचार है, और कुछ बड़ा पीड़ा का विषय है कि आज के समाज में ये प्रवृत्ति बहुत ही कम है। बच्चे महानगरों में रह रहे हैं, कुछ विदेश में रह रहे हैं, तो पिता को जो
1: बिल्कुल बिल्कुल छोड़
0: सेवा करने
1: देते
0: का
1: हैं,
0: जो सुख है वो तो
1: वो
0: बिल्कुल।
1: नहीं मिल पा रहा है। हाँ
0: मैं किसी जमाने में बापूनगर में था तो बहुत सारे ऐसे लोग आया करते थे बैंक में,
1: हाँ
0: जो इस तरह से
1: हाँ
0: क्या कहें इसके बाद।
1: तो उसी को
0: बहुत,
1: देख के तो जैन साहब ने टाइम बैंक बनाया
0: हाँ, टाइम बैंक बनाया है हमारे पीसी जैन साहब ने, बिल्कुल सही
1: हाँ
0: बात।
1: तो वो टाइम बैंक क्या है, आपको समय दो बुजुर्गों
0: यही है,
1: को,
0: समय दो, जो लोग लोनली हैं उनको समय दो, यही बात है, बिल्कुल सही
1: उनको
0: बात,
1: समय ज्यादा चाहिए सर। वो आज की
0: बिल्कुल
1: तारीख में, हमारी माताश्री चली गई थी 2014 में, तो उसके बाद वो जो लोनलीनेस होता है ना एक, तो
0: हाँ वाह,
1: वो उनकी बात सुनेगा कौन
0: कौन
1: वो।
0: सुनेगा, बिल्कुल
1: और दूसरी कोर्ट में कहा दिया है कि सुनते नहीं है, तो वो
0: हाँ।
1: स्थितियां ऐसी है कि हम कोई बात कहे भी तो 2-3 बार में धीरे से कान के पास ले जाकर वो
0: क्या
1: समझाना पड़ता है।
0: सुन, समझाना पड़ता।
1: तो उनका जो वो, मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे ग्रैंड सन, मेरा जो पोता है उसकी हरकतें है और पिताश्री की हरकतें, वो मिलती जुलती है।
0: मिलती है, बिल्कुल, कहता है
1: तो
0: बचपन वापस आ जाता है, बिल्कुल
1: हाँ
0: सही
1: सर,
0: बात,
1: वही केयर उनको देते हैं, वही केयर इनको चाहिए, हमको भी तो मिली है सर।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: ये है मेरी भावना।
0: बहुत

0: आप सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं, किन
1: जी
0: सामाजिक मुद्दों या गतिविधियों से जुड़े हुए हैं शर्मा जी आप?
1: सामाजिक में तो देखो सर, मैं एक ही बात मेरे को ये समझ में आई कि सेवानिवृत्ति के बाद आप जब दैनिक कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, अब जाना नहीं है कहीं, ड्यूटी
0: जी
1: पे नहीं जाना है, तो आपके
0: जी
1: पास समय होता है, तो एक रिक्तता आ जाती है, अरे अब क्या करें। तो
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तब जुड़ा मैं संघ से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, और उस
0: आरएसएस से जुड़े? अच्छा,
1: जी उसमें नियमित है मेरा सुबह का 1.5 घंटा शाखा में जाना, और ये सब
0: अच्छा,
1: कर वहां की
0: ओके,
1: मूल भावना है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो वो देश को दें या समाज को जो कुछ हम दे पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक और है उसमें सेवा विभाग है, तो
0: अच्छा
1: सेवा विभाग में कुछ ऐसी बस्तियां होती है या क्लस्टर रूप में लोग रहते हैं, वो वंचित
0: अच्छा
1: हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित है, अभावग्रस्त है।
0: अच्छा
1: ऐसे लोगों की जो बस्तियां हैं, अभी जयपुर शहर में 223 के करीब ये ऐसी बस्तियां चिन्हित की हुई, वहां जाकर
0: अच्छा
1: के
0: अच्छा
1: जी,
0: जी
1: वहां पे बाल संस्कार केंद्र है, वहां 4 प्रकार के आयाम है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य चिकित्सा का है, और स्वावलंबन का है, एक शिक्षा का है, और स्वरोजगार का है। इनके
0: अच्छा
1: तहत इनके तहत हम उनको वो कार्य करवाते हैं बाल
0: अच्छा
1: संस्कार में। अब ऐसी ऐसी बस्तियां जहाँ वो सब पेरेंट्स तो निकल जाते हैं लेकिन बच्चे रहते हैं, वहां 2 घंटे के लिए एक कोई शिक्षिका लगा के उनमें संस्कार जगाते हैं कि किस तरह उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ ये है। तो एक तो वो कार्य है, दूसरा अपना ये है ही सर, ये एसोसिएशन में भी अब पुराने साथी हैं, सब मिल
0: हाँ,
1: करके
0: उसमें मिलते हैं मिलते हैं। हाँ, वो तो है
1: नहीं
0: ही।
1: आप उसमें भी सचिव बना दिया मेरे को, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन में जयपुर यूनिट का, तो उसका भी कार्य रहता ही है।
0: उसका
1: तो
0: रहता है।
1: आज ही शाम को 4 बजे बैठक रखी है उसकी, त्रैमासिक।
0: अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया।
1: ये है समाज में।

0: चलिए, अब मैं एक से अंतिम एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सफलता और सुख की परिभाषा अब आपके लिए क्या है इस दौर में, और क्या ये आपके युवा दिनों से अलग है जब आपने पहले कुछ सोचा था और अब कुछ महसूस होता है? क्या कैसे परिभाषित करेंगे?
1: देखिए सर, सफलता हम तब मानते हैं कि जैसे आज आज की तारीख में मेरी सारे जवाबदारियां जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सभी बच्चे मेरे अच्छे अच्छे अपने कार्य कर रहे हैं, अपने अच्छी जगह है। मेरा बेटा अभी IBM में है, अच्छी पोजीशन पे है। एक बेटिया SBI में सीनियर मैनेजर है और एक बेटी लेक्चरर है वहाँ जोधपुर में। तो वो सब
0: अच्छा
1: अपने अपने क्षेत्र में
0: अपने
1: अच्छा,
0: अपने
1: हाँ अच्छा कर रहे,
0: सेटल
1: तो वहां तक तो ठीक है। अब आता है बात सफलता और सुख। तो सफलता तो यह है कि आपने सबको अच्छा किया है। अब सुख की परिभाषा मैं ये समझता हूं कि एक स्वस्थ शरीर और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये दोनों है तो हम सुख में है। हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे सफलता या असफलता हमारे अपने कर्मों पर ही तो आधारित है। हम उसे कितनी कुशलता से कितने योग्यता से करेंगे वही तो है। तो
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और कृष्ण भगवान ने कहा भी कर्म तो हर इंसान को करना ही है, कर्म तो आपको कर्मशील तो रहना ही है। तो कर्म जब करेंगे ही और उनका परिणाम भी मिलेगा ही तो फिर अच्छे कार्य क्यों ना किए जाए, ये मेरा एक मूल सिद्धांत रहा है और मैं अपने जीवन से अभी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हाँ, युवावस्था में क्या अलग थी विचार, युवावस्था में तो एक छोटी छोटी बातों पे भी हम कुंठाग्रस्त हो जाते थे और
0: हाँ
1: ये
0: सही
1: क्यों
0: बात
1: नहीं हुआ है।
0: है।
1: वो कुंठाएं
0: हाँ
1: आपको विचलित भी करती है, उन पे अपन को कंट्रोल। अब तो खैर अध्यात्म भी थोड़ा बहुत अध्ययन करने को मिलता है, करता भी
0: जी
1: हूँ। तो वहां जो दर्शन है हमारा जीवन का वो बिल्कुल अलग है। और ये क्योंकि वो अध्यात्म में तो संन्यास है और इधर कर्मयोग है, तो कर्मयोग जो अभी जो लोग कर्म में है उनको तो कर्म करते ही रहना और योग्यता के साथ करना।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: जी
0: तो शर्मा जी, बहुत ही खूबसूरत सच्चा संवाद रहा आज का, और DN शर्मा जी ने हमें सिखाया कि जीवन की सफलता केवल कैरियर या पद में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, संवेदनाओं और रिश्तों को निभाने में है। इनकी यात्रा हमें एहसास कराती है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ते हैं और अनुभवों के साथ जीवन की गहराई। बैंकिंग की दुनिया से लेकर साहित्य के संसार तक और अब समाज के उत्थान के प्रयासों तक उनका हर कदम हमें प्रेरित करता है। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं शर्मा जी का, और आज हमारे साथ अपनी सोच और संवेदनाओं को साझा करने आए हैं। श्रोताओं, याद रखिए, जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम कर्तव्य, करुणा और कर्म तीनों का संतुलन साध पाते हैं। इस प्रेरणा के साथ आज हम आज के कार्यक्रम के रंग अनुभवों की विरासत को यहीं विराम देते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं DN शर्मा जी का श्रोताओं की तरफ से, रेडियो स्टेशन की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमें मौका मिला तो हम शर्मा जी को फिर कभी कष्ट देंगे। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: जिंदगी के रंग लेखकों के संग के इस प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज एक लेखिका हैं, एक राइटर हैं, जिन्होंने जिंदगी में हमारी फैमिली लाइफ में हमारी जिंदगी में कुछ समझा, उसके बारे में कुछ लिखा और वो आज अपनी बातें हमें बताना चाहती हैं। हमारे साथ जो राइटर हैं उनका नाम है अंजू राजपूत देसाई जी। अंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मैं सब बिल्कुल अपना ये सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का। समीर जी ने मुझे इंट्रोड्यूस तो कर दिया। मैं हूँ अंजू राजपूत देसाई, मैं गोवा में रहती हूँ, गोवा के पणजी शहर में, और मैं हूँ एक पेरेंटिंग कोच, एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, एक टीचर भी हूँ मैं, योगा और डांस की इंस्ट्रक्टर भी हूँ। उससे बढ़कर मैं एक 23 साल के खूबसूरत नौजवान लड़के की माँ भी हूँ। और मेरी जो ये किताब है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो पेरेंटिंग के ऊपर ही आधारित है।
0: बहुत खूब। तो मैम इस किताब को जो पेरेंटिंग के ऊपर निर्धारित है, पेरेंटिंग के ऊपर बेस्ड है, लिखने का जो थॉट था आपके दिमाग में, विचार, ये कहाँ से आया? आपके निजी अनुभवों से या शायद आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, कहाँ से आया?
1: सर इंस्पिरेशन का कहूँ तो इसके तीन स्रोत हैं। देर आर थ्री रीजंस व्हाई आई चोज टू डू दिस। अव्वल तो ये है कि जैसा मैंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल रह चुकी हूँ और अभी भी मेरी सर्विसेज कंटिन्यूड हैं। मैं पैन इंडिया सर्विसेज देती हूँ और कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं मेरे साथ। एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, एज अ कोच ऑल्सो आई एम सर्विंग। तो ये जो मेरा ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ये दिस हैज इंस्पायर्ड मी, दिस हैज मोटिवेटेड मी टू गो आउट एंड टॉक अबाउट माई जर्नी एंड माई एक्सपीरियंसेस। ओके, तो ये जो मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरा पहला मोटिवेटर है कि मैं आगे बढ़ूं और इन इन इस टॉपिक पे मैं कुछ बोलूं, अपने विचार प्रकट करूं। दूसरे हैं हमारे मेंटोर, मतलब विचार तो काफी समय से था कि ये किताब लिखनी है इस टॉपिक पे, बट कैसे कैसे इसको व्यक्त करना है। वैसे मैं बता दूं सब आपके सुनने चाहने वालों को कि ये मेरी डेब्यू किताब है। I'm a debutant author and I have just started my innings with Over and Out, a guide on overparenting, जो मेरी किताब का नाम है। इसको अस्तित्व में लाने के लिए मेरे जो मेंटोर हैं मनीष सर, मनीष शर्मा सर, ये इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये चलाते हैं दीप पेरेंटिंग नाम का एक संस्था, जो मेरे जैसे 3000 और कोचेस को जिन्होंने जन्म दिया और इनको ऑथर्स, काफी सारे लोगों को इसमें से ऑथर्स भी बनाया। तो इनका एक बहुत बड़ा हाथ है कि मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ एक ऑथर के रूप में। और तीसरा जो कारण है, जो सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से, हम सब जिससे कनेक्टेड हैं, एक बहुत ही मेरा क्या कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास कि हम पेरेंटिंग जब हम करते हैं ना, ये सिर्फ हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। जब एक बच्चा एक घर में पैदा हो रहा है, वो तो सिर्फ एक घर में नहीं पैदा हो रहा है, वो पूरे देश में, पूरे विश्व के लिए एक हम नागरिक को तैयार कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग को मैं हमेशा से एक नेशनल ड्यूटी मानती आई हूँ, क्योंकि हम कल के समाज के लिए एक व्यक्तिमत्व तैयार कर रहे हैं और वो किस प्रकार की व्यक्ति बनेगी, ये पेरेंट्स के अपब्रिंगिंग पे, पेरेंट्स पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और इसीलिए ये तीन कारणों की वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी एक छोटी सी ड्यूटी निभाऊं और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं व्यक्त करूं। सर

0: आपकी इस किताब में, अंजु जी, इस बुक में मेन थीम क्या है, क्या मैसेज है पेरेंट्स को?
1: जी, तो जैसे ये किताब का नाम सजेस्ट करता है, ओवर एंड आउट, अ गाइड ऑन ओवर पेरेंटिंग। ओवर एंड आउट मतलब जैसे आपने बाउंड्री को क्रॉस किया, लग गया छक्का। इसका मतलब when the ill effects of parenting will start at that time. वैसे तो हम सब as a parent के role में, nature में, हर पेरेंट, चाहे चिड़िया को ले लो, जानवर को ले लो, हम सब पेरेंट का यही रोल है कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट करें, हम उनका उनका रख रखाव करें। रोल तो यही दिया गया है, बट कुछ पेरेंट्स आज की डेट में, खासकर जो नए पेरेंट्स हैं, जो थोड़े, लेट्स से थोड़े और अच्छी फैमिलीज से आते हैं इकोनॉमिकली, है ना, ये लोग थोड़ा ओवर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। तो मेरी थीम इसी के ऊपर है, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि जब हम ओवर प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे हमारे मीक और फीबल बन जाते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। सो दैट्स द थीम सर ऑफ माय बुक।
0: अमेजिंग। तो बात पेरेंटिंग की हो रही है, बात हम जो भी माता पिता हैं उनको बतलाने की हो रही है कि उनको अपने बच्चों की परवरिश दरअसल आज के परिवेश में किस तरह से करनी चाहिए। तो आपका जो टारगेट सेगमेंट है, जो नए, जो पेरेंट्स हैं, हमारे समाज में कई तरीके के सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं, तो वो कौन है, कौन से सेगमेंट के पेरेंट्स हैं जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं?
1: जी, वैसे तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि एक ही प्रकार के या इसी स्ट्रेटा के लोग हैं जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, जो ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं कि नॉट ओनली द मॉडर्न एंड नॉट ओनली द इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल, यू नो, बट कई ऐसे पेरेंट्स हैं। वैसे इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, अब मेरे ख्याल से काफी सेमी अर्बन प्लेसेस में भी ऐसा हो गया है कि लोगों के पास थोड़ी बहुत सुविधा आने लग गई है। तो जैसे पेरेंट्स के पास सुविधा आ रही है, इनको ऐसा लगता है कि भाई हमने इतनी गरीबी में या हमने इतना डिसएडवांटेज्ड सिचुएशन में टाइम निकाला है, तो हम हमारे बच्चों को इतना देंगे कि वो कभी कंप्लेन ना करें। इस वजह से भी ओवर पेरेंटिंग हो रही है। ये उन पेरेंट्स को टारगेटेड है जो ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं बेसिकली। सो जो जनरल फिनोमेना है, दैट गोज टुवर्ड्स मेजरली द अर्बन एरियाज, द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, एंड दिस इज द बुक इज टारगेटेड, द बुक इज रिटन टू हेल्प ऑल दोज पेरेंट्स।
0: राइट।

0: मैम हमें ये बताइए, जिससे कि हमारे सारे सुनने वालों को पता चल जाएगा, तो एक कि आपकी बुक का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब चैप्टर वाइज है, लैंग्वेज आपने कौन सी रखी है, एनेक्डोट्स डाले हैं, स्टोरीज, मतलब किस क्या स्ट्रक्चर क्या है आपकी बुक का?
1: बिल्कुल बिल्कुल, लैंग्वेज मैंने ऐसी यूज की है कि भाई वैसे तो मैं एमए हूँ विथ इंग्लिश लिटरेचर, तो I could have used better vocabulary also, but मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जिनके लिए लिखी जा रही है उनको समझ में आना चाहिए and they should relate to it. और इसीलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. हालांकि माध्यम मैंने इंग्लिश ही चुना है क्योंकि वी आर टारगेटिंग दोज हु आर मेजरली इन द लेट्स से सेमी अर्बन एंड द ए एंड बी लिस्टेड सिटीज, तो इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है. एवरी बुक हैज द बुक हैज 11 चैप्टर्स, ओके, जिसमें कि 10 चैप्टर्स आर टेकिंग अप वन टॉपिक ईच, एंड वन टॉपिक मीन्स वन स्टोरी, अ स्टोरी विच कैन बी रिलेटेड टू योर सराउंडिंग्स. जैसे कोई पढ़ रहा है इस किताब को तो वो शुरू ही होती है एक कहानी के साथ, और वो कहानी जब कोई पढ़ रहा हो तो उनको ऐसा लगे कि ये तो बगल वाले शर्मा जी या वर्मा जी के घर का ही सीन लग रहा है, या हो सकता है किसी के अपने घर में भी ये चल रहा हो सिनारियो, तो ये इमीडिएटली कनेक्ट होने वाले एवरीडे इंसिडेंट्स के ऊपर मैंने इसको आधारित किया है. और आगे हमने इसमें उसके कारण भी दिए हैं मैंने, और उसके कुछ सॉल्यूशंस देने की भी मैंने कोशिश की है.
0: क्लियर, बहुत क्लियर. अब हमें समझ में आया कि किस तरीके से आपकी किताब का स्ट्रक्चर है. वी कैन ईजिली, बड़े कंफर्टेबली लैंग्वेज, कंफर्टेबल लैंग्वेज में हम इसको पढ़ सकते हैं, और स्टोरीज के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं. ऐसा जैसा आपने बताया कि हमारे अगल बगल के घरों में ऐसा हो रहा हो ऐसा लगेगा. बहुत खूब
1: जी.

0: तो आज के समय में जो हमारे पेरेंट्स हैं जिनको आपने टारगेट किया है या जिनके लिए आपने ये किताब लिखी है, उनके सामने कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं? आपके हिसाब से आपने एनालाइज किया होगा कि पेरेंटिंग में उनको कौन सी चुनौतियां आ रही हैं।
1: जी जी जी तो जब हमारे टाइम में पेरेंटिंग हुआ करता था, मेरे टाइम में, मान लीजिए मैं जेन एक्स, जिस एज ब्रैकेट में हम पढ़ते हैं, जिस एरा में हम पैदा हुए हैं, मैं जेन एक्स हूं, तो हमारे टाइम में फैमिलीज का साइज बड़ा हुआ करता था। मेरे परिवार में ही खुद मेरे पिताजी के जो मेरे जो दादाजी थे उनके 10 बच्चे थे, माने 10 बेटे और 10 बेटियां, ऐसा करके 10 बच्चों का इनका इतना बड़ा परिवार था। तो जब हम बड़े हुए तो हमारे आसपास इतने चाचा चाची, चाचा चाची उनके बच्चे, बुआ उनके बच्चे, तो हम इतने बड़े परिवारों में बड़े हुए। उस टाइम का डायनामिक्स अलग था। उस टाइम में मैं खुद, हम तीन, मेरी माताजी और पिताजी को, हम तीन बेटियां थी और उसके अलावा हम तीन नाम मात्र के थे, लेकिन हम रहते कितने लोगों के साथ थे, 7-8 तो हम लोग भाई बहन साथ में रह रहे थे। तो उस टाइम में डायनामिक्स टोटली अलग था पेरेंटिंग का। मेरी मम्मी मुझे थप्पड़ लगा देती थी, मैं जाके तुरंत चाची जी से चिपक जाती थी, तो वो मना लेते थे, या नाना नानी दादा दादी जो भी थे। आजकल के बच्चों को ये नसीब नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अधिकतर, हम जब देखेंगे ना, अर्बन सेटअप में न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, किसी भी वजह से, मान लेते हैं सामाजिक हो, आर्थिक हो, जो भी इनकी जरूरतें हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर रही हैं, क्योंकि केवल माता पिता और बच्चे, इतना ही उनका परिवार उतने में ही सीमित रह गया है। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस, क्योंकि क्या कहते हैं, पेरेंट्स को खुद इमोशनल, टाइम वाइज सब एक सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है, तो इसलिए पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस जो है वो चेंज हो गई हैं। और अब क्योंकि इकोनॉमिक हम लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए माता पिता को काम भी करना पड़ेगा। तो पहले तो मम्मियां घर में रहा करती थी, अब मम्मियां घर में नहीं है, माँ और पिताजी दोनों काम पे जा रहे हैं, तो वो जो उनकी बिजी लाइफ है उसके साथ ये लोग जो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज अगेन अनदर, येट अनदर चैलेंज। क्योंकि पेरेंट्स खुद एक मेंटल ट्रॉमा से, या जो मेंटल एक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उसमें ये एडेड रोल है उनके लिए पेरेंटिंग, है ना। क्योंकि वो लोग इतने बिजी हैं, दे हैव टू फाइंड सपोर्ट इन द सेंस, बच्चों को क्रेश में रखा जा रहा है, या घर में भाइयां उनका ख्याल रख रही हैं, प्ले होम्स में डाला जा रहा है, तो पेरेंट्स का जो डायरेक्ट विजिलेंस और इंटरवेंशन है वो कम हो गया है, और दूसरों पे निर्भरता इनकी बढ़ गई है। और जो नोट करने वाली बात ये है कि जिन पे निर्भर हो रहे हैं वो परिवार के मेंबर नहीं है, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, ओके। एंड द ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन डिजिटल गैजेट्स, एडल्ट्स हों या बच्चे हों, डिजिटलाइजेशन कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ आवर लाइफ, और वो जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, जिसमें हम हमारे कल्चर को साइड में रख के वी आर एडॉप्टिंग ऑल वेस्टर्न प्रैक्टिसेस, मान लीजिए, या कल्चर मान लीजिए, वो भी एक चैलेंज है हमारी सोसाइटी के लिए। एंड सोशल मीडिया, विच टॉप्स द लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज, ऑल दीज आर, बहुत सारे हैं, बट दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस विच आई हैव ट्राइड टू एड्रेस, एंड आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट, वी नीड टू टॉक अबाउट दीज।
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट।

0: आज की डेट में जैसा आपने बताया और हमारे सुनने वाले रिलेट कर पा रहे होंगे, दे माइट बी रेजोनेटिंग विद योर थॉट्स। कई पेरेंट्स हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस से परेशान हैं, वो काम भी करते हैं और घर पे भी आते हैं, तो आपकी बुक उनके बारे में क्या कहती है, कोई समाधान देती है, कोई सॉल्यूशंस, कुछ डिस्कशन करती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, वर्क लाइफ बैलेंस इज लाइक आई सेड अर्लियर इज वन ऑफ द राइजिंग कंसर्न, लेकिन हम पेरेंट्स से ये कहना चाहते हैं इन द रोल इन द कैपेसिटी एज अ पेरेंट कोच कि आप अब माता पिता हैं, आप जैसे मूर्तिकार शिल्पकार एक खूबसूरत शिल्प को जन्म देते हैं, आप भी अपने बच्चों की पर्सनालिटी को आकार दे रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट बर्थिंग अ चाइल्ड, पेरेंटिंग इज नॉट ओनली अबाउट रेजिंग अ चाइल्ड, providing their needs, it's about raising adults who are kind, resilient and capable. ये quote है जो over and out a guide on parenting के page number 114 में मैंने डाला है और मैं इसकी ardent believer हूँ। बहुत ही strong विश्वास है मेरा कि as a parent हमारा role जो है खुद से थोड़ा सा extend हो जाता है, हम बन जाते हैं एक शिल्पकार और जितना पेशेंस जितना प्यार हम इस रोल में डालेंगे उतना ही निखर के आएगा उस बच्चे की पर्सनालिटी, एंड दैट इज द रीजन वी कैन नॉट यूज बीइंग बिजी एज एन एक्सक्यूज टू नॉट बी देयर विद आवर चिल्ड्रन। ओके, बट सच्चाई तो ये भी है कि लोगों को कमाना पड़ रहा है टू ब्रिंग टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज, काम तो हमको करना पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है चूज करना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी टाइम एक कॉन्सेप्ट है जो रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। अब क्वालिटी टाइम क्या है? क्वालिटी टाइम का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी के साथ, भले वो बच्चा हो या पार्टनर हो, आप अगर उसके साथ दिन भर भी हैं और आप लगे हुए हैं अपने मोबाइल में, अपने काम में, या आप कॉन्स्टेंटली किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, योर फिजिकल प्रेजेंस डज नॉट मैटर। अगर आप 24 घंटा भी रह रहे हो उनके साथ, इट विल नॉट मैटर, क्योंकि यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर। Okay, so that quantity is not making a difference. What we say choose quality. And quality starts from 15 to 30 minutes a day. 15 to 30 minutes. जब हमने इतना बड़ा रोल उठा ही लिया है माता पिता बनने का, तो क्यों ना दिन के हम 15 से 30 मिनट स्पेशली इस रोल के लिए निकालें। और देखिए, क्वालिटी टाइम की खूबी ये भी है कि हम ये नहीं कहते कि आप अपना सारा काम धंधा छोड़ के आप मतलब बैठ जाओ, कर सको तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है कि आपने सब साइड में रख दिया और आप 15 से 30 मिनट आप बैठे हो अपने बच्चों के साथ। क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ऐसी एक्टिविटी कीजिए अपने बच्चे के साथ वो 15 टू 30 मिनट्स में, जहां आप सुपरवाइजर नहीं बने हो उनके। ये नेचुरली आता है ना माता पिता में कि हम माता पिता बने हैं तो भाई हम अपने आप को एक ऊपर पेडेस्टल के ऊपर रख रहे हैं, हम सुपरवाइजर बन रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। आप उस माइंडसेट से हट जाइए, अपने बच्चे को अपना पार्टनर समझ लीजिए। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं आप अपने बच्चे को पार्टनर समझिए एंड यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग, क्रिएटिंग अ बॉन्ड विथ योर चाइल्ड। यू कैन डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, चूज प्ले। प्ले इज द बेस्ट पार्ट फॉर यंगर चिल्ड्रन, प्ले इज द बेस्ट पार्ट टू बिल्ड अ कनेक्शन। आप खेलिए उनके साथ, वो आपके लिए भी डिस्ट्रेस एक डिस्ट्रेसर के हिसाब से काम करेगा और बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने में भी काम आएगा। सो यू प्ले, यू कैन चूज आर्ट, और अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं उस दिन, आपको घर का काम करना है, आपको खाना बनाना है, आपको बर्तन मांजने हैं, आपको सब्जियां काटनी है, कुछ भी करना हो, क्यों ना बच्चे को भी ले लिया जाए। कितना ब्यूटीफुल तरीका है बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाने का। तो यू कैन चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिजियर पेरेंट्स, प्लीज मेक श्योर यू फाइंड आउट स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, एंड अपने आसपास जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसको प्लीज लेवरेज कीजिए। Look out for people who can help you. Look out for elders. Look out for friends. See how you can carpool. School mein chhodne jana hai, carpool kijiye. Please reach out to coaches like us. Hum baithe hain yahan aapki sahayata ke liye. Reach out to us. We are there to personally customize a plan and support you with that.
0: Right. That's beautiful. तो दोस्तों विचार कीजिए और हम अंजू जी जैसे लोगों कोचेस से सहायता ले सकते हैं अगर हम कुछ परेशानियां फेस कर रहे हैं.

0: तो अंजू जी मुझे ये बताइए कि जो आज आप इस रेडियो प्रोग्राम के थ्रू आपसे जो हमारे श्रोता लिसनर्स जुड़े हुए हैं, अगर वो आपकी बुक लें और उसमें से तीन बातें याद रखना चाहें तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे एज एन ऑथर कि मेरी बुक से आप लोग ये बस तीन बातें याद रख लीजिए?
1: बिल्कुल, तीन बातें आपको जो याद रखनी है वो है अपने तीन सीज, आई वुड पुट इट एज थ्री सीज, सी यानी एबीसी वाला सी, थ्री सीज। वन इज कनेक्ट, द सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट एंड द थर्ड वन इज कम्युनिकेट, है ना। कनेक्ट यानी बिल्ड अ कनेक्शन विथ योर चाइल्ड, मेक श्योर कि आप अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करें, ऐसा बॉन्ड जो आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव को झेल ले, है ना। क्योंकि जैसे बच्चा आपका

0: मैं नहीं जानती किस एज के पेरेंट्स ये जो हमारा स्ट्रीमिंग है वो सुन रहे हैं. हो सकता है आपका बच्चा अभी टॉडलर है, हो सकता है यू आर अ न्यू पेरेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न, है ना, और यू आर अ पेरेंट ऑफ अ टीनेजर. देखिए जैसे बच्चा भी बड़ा हो रहा है वो भी सीख रहा है, तो देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ एंड द चाइल्ड्स लाइफ ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट योर रिलेशनशिप एज अ पेरेंट टू सस्टेन, यू विल हैव टू कनेक्ट विद द चाइल्ड. कनेक्ट इन द सेंस क्रिएट अ बॉन्ड विद द चाइल्ड. द सेकेंड सी इज कॉम्प्लीमेंटिंग. Please make sure you use appreciation as a tool and not complaining or criticizing. Complain करना, criticize करना आपको अपने बच्चे से दूर लेके जाएगा. Instead appreciation use कीजिए, सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, पार्टनर के लिए भी. जिन घरों में पार्टनर्स या पेरेंट्स एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दे आर द वंस हु विल कंटिन्यू लिविंग विद ईच अदर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम हैप्पीली. ओके, एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कम्युनिकेटिंग इन द राइट मैनर विथ योर चाइल्ड. कम्युनिकेशन हर रिश्ते की ना एक की है. इट्स अ की टू अनलॉक एवरीबडीज हार्ट्स. जस्ट लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिटन अबाउट हाउ यू नीड टू कम्युनिकेट विथ योर चिल्ड्रन. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिटन. यू कुड ऑल्सो गो अहेड एंड रीड माई बुक विच ऑल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट कम्युनिकेशन विथ योर चिल्ड्रन एंड विथ ईच अदर. आई होप यू have good happy relationships and happy parenting experiences. Having said this,
1: beautiful, amazingly three things which we can always learn.
2: Anju ji ki book se bahut badhiya.

0: आपने कम्युनिकेशन की बात की, 3 C's की बात की, जिसमें एक सी है कम्युनिकेशन
1: जी।
0: तो जाहिर से बात है पेरेंट्स, माता पिता और बच्चों के बीच में जो ट्रस्ट और कम्युनिकेशन होना चाहिए होता है, उसको और स्ट्रेंथन कैसे करें, उसको और मजबूत कैसे किया जाए आज की डेट में, आज की इरा में।
1: जी बिल्कुल, व्हाट अ लवली क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड समीर जी, आई वुड लव टू आंसर दिस। अच्छा मैं एक आपसे सवाल पूछती हूँ, ठीक है। ट्रस्ट का ना एक फॉर्मूला होता है,
0: जी।
1: ट्रस्ट का फॉर्मूला ये है कि अगर मैंने, मान लीजिए अंजू है और समीर जी हैं यहाँ पे, अंजू ने समीर जी पे 100% ट्रस्ट जताया, तो आपको क्या लगता है समीर जी अंजू पे कितना ट्रस्ट जताएंगे रिटर्न में?
0: ऑफ कोर्स रेसिप्रोकेशन का जो नियम है, जो प्रकृति ने दिया है, अगर आप मेरे पर 100% ट्रस्ट कर रहे हैं तो एक सही इंसान होने के नाते 100% ट्रस्ट मैं भी आपके ऊपर करूंगा।
1: सही जवाब, आपको इसके लिए कोई प्राइज नहीं मिलता लेकिन मिलती है, मिलती है तालियां, थैंक यू सो मच। अच्छा अब बताइए, अगर मैंने आप पे 90% ट्रस्ट किया तब आप मुझे कितना लौटाएंगे ट्रस्ट?
0: I would actually be forced to give 90%, but to test you, because अभी सिर्फ 10% ही कम हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 100% दूं, शायद आप भी 100% पे लौट आए।
1: लेकिन रियलिटी ये है समीर सर कि अगर आपने, मैंने 100% दिया, आप 100 लौटाओगे, मैंने अगर 90 भी दिया ना, आप 0 लौटाओगे।
0: हाँ फिर तो ट्रस्ट टूट जाएगा ना बेसिकली।
1: बिल्कुल, क्योंकि ट्रस्ट की जो बुनियाद है वो शेक हो जाती है। ट्रस्ट का यही फॉर्मूला है इस दुनिया में, तो समझ लीजिए आपका जो वो बच्चा है, अगर आप उस पे किसी भी प्रकार से कोई भी छोटा सा भी डाउट जताते हैं, एस्पेशली टीनेजर्स, एस्पेशली मैं यहाँ खास इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है फ्रॉम द न्यू बॉर्न चाइल्ड अप टू द मिड स्कूलर, मिड स्कूलर का जो है रैशनल जो ब्रेन है, लॉजिक, वो उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, एंड दैट एज चाइल्ड लुक्स एट द पेरेंट एज अ होलसम फिगर, उसके लिए 100% है माता पिता जो कह रहे हैं। आपने सुना होगा कभी टीचर से भी, मैं भी टीचर के रोल में रह चुकी हूँ, पेरेंट्स आके मुझसे हमेशा कहते थे कि मैम आप जो बोलते हो स्कूल में ये बच्चा ना, मतलब आके उसको बोलना है कि टीचर ने जो बोला वो करना ही है। ओके सो वो एडल्ट्स को ऐसे देखते हैं जैसे एक सीनियर फिगर हो, मॉडल, लाइक अ रोल मॉडल टिल दे आर मिड स्कूलर एज, बट जैसे ही वो बच्चा टीनेजर होने लगता है ना, उसका रैशनल और लॉजिक डेवलप होने लग जाता है अपने आप। तो हो सकता है कई बार वो बच्चा, कई बार क्या होता ही है ऐसे कि वो अपना दिमाग लगाने लग जाता है, और तब वो पेरेंट का जो सुपीरियर माइंडसेट है ना वो शेक हो जाता है कि कैसे, हाउ इज दिस चाइल्ड क्वेश्चनिंग माय बिलीव्स, हाउ इज दिस चाइल्ड क्वेश्चनिंग थिंग्स, क्यों नहीं सुन रहा है ये, ठीक है। और उस टाइम में जो है पेरेंट्स के ये डाउट्स क्रीप होने लग जाते हैं अंदर, तो शुरू हो जाता है कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कौन दोस्त आए थे तुम्हारे साथ, क्या बातें हुई तुम्हारे बीच में, है ना। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के सवाल जो है वो आप दोनों के बॉन्ड में एक ट्रस्ट की दीवार को कमजोर कर रहे हैं। जब आपने 90% ट्रस्ट जताया, वो आप पे 0% जताएगा, वो नहीं बताएगा आपको वो कहाँ गया था। Okay, so that is the very reason parents need to be very mindful. Please do not judge, don't doubt, don't express doubt, don't ask questions also of this sort ki wo bacche ko lagne lage bataun ya nahi bataun, bataunga to kya karenge, nahi bataunga to kya sochenge. Okay, iska sabse acha tarika main bata rahi hu, कोई भी चीज अगर आपको जाननी हो ना बच्चे के लाइफ में कि आपने स्कूल में क्या किया, आपने कौन कौन से दोस्त आए, टीचर ने क्या कहा, तो आप ना शेयर करना शुरू कर दो उससे, जैसे ही मिले स्कूल से आया बच्चा शेयर करना शुरू करो कि आज ना मैंने दिन में ये किया ये किया ये किया और तुम बताओ, ठीक है। तो जब हम शेयर करते हैं दैट इज अ बेटर वे ऑफ गेटिंग टू नो द अदर पर्सन, right everybody, so that is how you build trust in your child, express yourself, share yourself and see the trust between you soaring high.
0: Okay, that's right, aap usme trust dikhaiye to wo apne aap se hi aapko copy karne ke chakkar mein trust build up hota chala jayega. Bahut sundar,
1: bilkul bilkul.
2: चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली।

0: अंजू जी आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूंगा, ठीक है हमारा जमाना बहुत बदल गया है, बहुत मॉडर्न हो गए हैं हम, लेकिन फिर भी ठीक है हम भारतीय हैं और अपनी संस्कृति को तो हमें पकड़ के रखना ही होगा। अगर शायद हम जर्मनी में रह रहे होते तो जर्मनी की संस्कृति को पकड़ के रखते। अभी भारतीय हैं तो हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति और मॉडर्नाइजेशन जो आज की थॉट प्रोसेस है, दोनों कैसे सिखाएं बैलेंस आउट करते हुए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्या सही शब्द यूज किया है, ये तो बैलेंसिंग एक्ट ही है। ओके, क्योंकि हम आगे भी बढ़ रहे हैं, ये 2025 भी है, लेकिन हमारे वैल्यूज जो है, ट्रेडिशन जो है, उसको तो पकड़ के रखना ही पड़ेगा। तो क्या है समीर जी, हम जो एक परिवार हैं, परिवार वी हैव डिफरेंट कोर वैल्यूज, ठीक है। हम पेरेंट्स बने हैं तो हम हमारी लेगेसी तो हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। ओके, जैसे मेरे माता पिता ने वो जिस प्रकार से जिए, उन्होंने हमको कुछ सिखाया। हर घर का एक अपब्रिंगिंग का अलग वैल्यू सिस्टम होता है। वी वांट पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई देयर ओन कोर वैल्यूज, कि आपकी जो कोर वैल्यूज हैं वो क्या हैं। जब आप वो आइडेंटिफाई क्लैरिटी के साथ कर पाएंगे, तभी आप उसको बच्चों को भी सिखा पाएंगे। जब आपका ही वैल्यू शेकन है, वैल्यू सिस्टम शेकन है, भाई हम भगवान में मानते हैं लेकिन हम पूजा नहीं करते, ठीक है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज योर कोर वैल्यू, एंड हैविंग आइडेंटिफाइड दैट, यू आर इन अ पोजिशन टू टेक इट अहेड। अब क्या है, बच्चा आप भले उसको दिन में चार बार बोल लो, बेटा हाथ मुंह धो ले जाके दिया बत्ती कर ले, हाथ मुंह धो ले जाके दिया बत्ती कर ले, लेकिन जब तक आप वो नहीं कर रहे हो ना, तब तक बच्चे का जो रैशनल माइंड है वो उस दिशा में काम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। द चाइल्ड इज वॉचिंग लर्निंग, और वो आपके फुटस्टेप्स फॉलो करेगा। ओके, दैट इज व्हाई यू नीड टू रोल मॉडल योर बिहेवियर। अगर आप चाहते हो कि ये बच्चा फोन पकड़ के ना बैठा रहे 24 घंटे 12 घंटे जो भी है, तो आपको पहले वो गिव अप करना पड़ेगा।

0: Okay, you will have to give it up. You will have to find another way when and how you're going to engage into that kind of behavior. Okay, so you will have to role model the expected behavior. कल्चर के हिसाब से या जो भी है, अगर आप बड़ों के पैर छू रहे हैं, आप अपने पत्नी जी से किस प्रकार बात कर रहे हैं. कई फैमिलीज में ऐसा होता है, ये हमारा सोशल सेटअप है. कई फैमिलीज में होता है ऐसा कि घर की बहू से, मान लो बड़े जो सास ससुर हैं या पति हैं, वो उनसे अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, चिल्ला के बात कर रहे हैं. फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आपका बच्चा चिल्ला के बात ना करे आपसे, जब आप वो दे रहे हो, वो ऑब्जर्व कर रहा है और वो वही कॉपी कर रहा है. सो यू हैव टू रोल मॉडल. ओके, इफ यू वांट टू टेक द कल्चर वाइज अहेड, देन यू विल हैव टू हैव अ रूटीन. ठीक है, ऐसा रूटीन जिसको आपने बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन किया हो. फॉर एग्जाम्पल, तो लेट मी जस्ट कंक्लूड अनदर कंक्लूसिव स्टेटमेंट फॉर द प्रीवियस पॉइंट. प्लीज रोल मॉडल द एक्सपेक्टेड बिहेवियर. जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप खुद पहले कीजिए, फिर बच्चा आपको ऑटोमेटिकली देख के आपके पदचिन्हों पे वो चलेगा. तीसरा पॉइंट जो है, अगर हमको कल्चर को आगे लेके जाना है, इट इज अ टिप, इट्स अ सजेशन कि आप एक रूटीन को फॉलो कीजिए. ऐसा रूटीन जो आपने एक्सप्लेन किया हो अपने बच्चों को, जबरदस्ती लादा गया नहीं. ऐसा वाला पेरेंटिंग आजकल चलता ही नहीं है बच्चों के साथ, क्योंकि ये करो क्योंकि मैं बोल रही हूँ, दिया जलाओ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, गायत्री मंत्र बोलो क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं चलता है. यू विल हैव टू एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ द पर्टिकुलर रूटीन. और इसको रोज रूटीन में रखिए, दिया बत्ती करने वाला या हाथ जोड़ने वाला या जो भी आपके घर के प्रैक्टिसेस हैं. आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जो भी आपका रूटीन है, आप उसको फॉलो एक फॉलो कीजिए और आप भी वहां पे प्रेजेंट रहिए, ताकि आप बच्चे को रोल मॉडल करके दिखा सके. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट और इजी वे ऑफ गेटिंग द चाइल्ड टू फॉलो कल्चरल प्रैक्टिसेस, उसको एक्सपोजर देना इन चीजों का. क्योंकि बच्चा जब ऐसी जगहों पे जाएगा जहां ये चल रहा है, तो उसको ये नॉर्मल लगेगा. अदरवाइज क्या है, जैसे स्कूलों में जाते हैं बच्चे, अब मेरे बेटे को ही ले लीजिए, वो जहां से आया, हम एक कल्चरल फैमिली है, लेकिन जिस स्कूल में वो जा रहा था वहां पे बहुत वेस्टर्नाइज प्रैक्टिसेस हैं स्कूल के हिसाब से. ठीक है, वो एक ICSE की स्कूल थी और वहां पे बहुत वेस्टर्नाइज प्रैक्टिसेस थी, तो उसको मुझे रिलेटिव्स के यहाँ या पूजा में या मंदिरों में मुझे लेके जाना पड़ा, ताकि मैं उसको एक्सपोजर दे सकूं इन प्रैक्टिसेस का. और वो उसके क्या कहते हैं, कल्चर तो खून में रच बस जाता है, तो वो उसके दिमाग में फिट हो जाए. तो मैंने उसको बहुत सारे एक्सपोजर्स दिए. प्लीज बी ओपन टू कम्युनिकेशंस. हम क्या करते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कभी कभी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे ने पूछ लिया अबाउट लेट्स से जेंडर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आजकल के बच्चों में, तो ये जेन जी, अल्फा, बीटा, ये तो बहुत ही फेस कर रहे हैं जेंडर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, या मान लीजिए अबाउट सब्सटेंस जैसे अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गया. दीज आर सम ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस जिनको हमको उनको इनिशिएट करना पड़ेगा. और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने बात नहीं की इसके ऊपर, तो ये जो है इंफॉर्मेशन ये बाहर से लेने लगेंगे, स्पेशली थिंग्स लाइक सेक्सुअल एडुकेशन, क्योंकि इनके हॉर्मोन्स तो वो सब लेके आएंगे ही इनकी बॉडी में. तो ये चीजें अगर हमने ओपनली कम्युनिकेट नहीं किया घर पे, तो ये बाहर के अनरिलायबल सोर्सेस से जाएंगे, वहां से इंफॉर्मेशन उठाएंगे, एंड देन हम कल्चर चिल्लाते रह जाएंगे एंड द डैमेज वुड बी डन. ओके, सो ओपन कम्युनिकेशन हेल्प्स ऑलवेज. ऑलवेज डियर पेरेंट्स, please remember, mutual respect is the key to a good relationship, whichever relationship. क्योंकि वो बच्चा है, आप उसको दबा नहीं सकते हैं. चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, चुप रहो, ऐसी बातें मत किया करो. Please do not do that. Make sure you explain to the child, understand कि उसकी age क्या है and what kind of explanation, age appropriate explanation हम बिल्कुल दे सकते हैं बच्चों को. And these are some of the practical tips and techniques how you can do your balancing act.
1: Amazing. So, that's right. That's absolutely right. So, दोस्तों आपने सुना, जाहिर सी बात है कई बार ये ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ये अपने आप से हमको आ जाएगी, जब हमारा बच्चा है तो हम हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन फिर हम बिजी हो जाते हैं और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो वहाँ पर जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा है वो उन्होंने, अंजू जी जैसे लोगों ने उसको बुक में लिखा है, तो हम वहाँ से ये मैसेज ले सकते हैं। अंजू जी आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो वेरी मच, जो आपने इतने एफर्ट्स लिए, समझा इस चीज को और हमारे लिए इसको इस किताब में लिख के सामने पेश किया है। अब ये हमारी नियत है, हमारी इंटीग्रिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसको देख लें, समझ लें और अपनी जिंदगी को और अपने बच्चों की जिंदगी को अच्छा बना लें। अंजू जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए, सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच मैम
0: जी। यस सर, सर
1: प्लीज
0: वन लास्ट मैसेज टू द पेरेंट्स
1: जी,
0: आपके जो बच्चे हैं ये हमेशा बच्चे नहीं रहने वाले हैं, जल्दी बड़े हो जाएंगे, तो आपकी ये पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि उनका जो ये चाइल्डहुड की जो जो जर्नी है उसको मेमोरेबल बनाइए एंड क्रिएट अ बॉन्ड विथ योर चिल्ड्रन, दैट्स इट। हैविंग सेड दैट, आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एक्सपोजर, माय बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, प्लीज बाय द बुक,
1: यस एब्सोल्युटली,
0: ओवर एंड आउट अ गाइड ऑन ओवर पेरेंटिंग,
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
2: जिंदगी के रंग हजार,
1: दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर, सुनना ना भूलिएगा।

शुभ प्रभात दोस्तों, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं राकेश पंचाल जी के बारे में, जो एक उद्यमी हैं और समाज सेवी भी। इन कपकपाती सर्द रातों में गर्मा गर्म भोजन के बाद जब हम अपने लिहाफ में घुसते हैं, तब कितनी बार हमें ख्याल आता है कि न जाने कितने देशवासी भूखे पेट फटे अधूरे कपड़ों में अपनी जान की पनाह मांगते हुए बाहर भटक रहे होंगे। अगर ख्याल आया तो समर्थ होते हुए भी हमने इंसानियत की क्या खिदमत कर दी है। राकेश पंचाल जैसे लोग इन सवालों के जवाब हैं, मगर अफसोस ऐसे जवाब बहुत कम हैं। आज से करीब 44 साल पहले गुजरात के वसो गांव में पैदा हुए राकेश के पिता मनुभाई पंचाल का निर्माण सामग्रियों का एक छोटा सा कारोबार था। पिता और काका के संयुक्त परिवारों की सारी जरूरतें इसी एक बिजनेस से पूरी होती थी, लिहाजा कारोबार का तनाव अक्सर घर तक चला आता। राकेश और उनसे 2 साल बड़े भाई का बचपन इसी तनावपूर्ण माहौल में तमाम तरह की समझौतों के बीच गुजरा। गांव के सरकारी स्कूल में ही राकेश की पढ़ाई हुई। यह गुजराती माध्यम का स्कूल था। राकेश पढ़ने में काफी अच्छे थे और सेवा भावी पिता और उनके बड़े भाई ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। किशोरावस्था में राकेश को जो जो पेशा आकर्षित करता वो उसे अपनी कॉपी में दर्ज कर लेते। वैज्ञानिक से अदाकार और इंजीनियर से पत्रकार बनने तक की उनके सपनों ने कई उड़ानें भरी, मगर आसपास कोई ऐसा न था जो उनमें से किसी एक की गहराई से उनको वाकिफ करा पाता। 12वीं में गांव के 4 बच्चे ही पास हो सके थे, उनमें से एक राकेश भी थे। पड़ोस के साइंस कॉलेज में उन्हें आसानी से दाखिला मिल गया, मगर गुजराती माध्यम से इंग्लिश मीडियम का सफर आसान नहीं था। परेशानी वाली बात यह थी कि उन्हीं दिनों दादाजी के देहांत के बाद संयुक्त परिवार की चूलें हिल गई थीं और उनका तनाव पहले बड़े भाई की पढ़ाई निकल गया और फिर राकेश भी इससे प्रभावित होने लगे। नतीजा यह हुआ कि फर्स्ट ईयर का इम्तहान वो पास नहीं कर सके, मगर वो लगातार कॉलेज जाते रहे। राकेश को लगता था कि दूसरे साल में वो पिछले पेपर भी क्लियर कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और वो अनुत्तीर्ण करार दे दिए गए। सिर्फ माता पिता अपने संतान को कभी फेल नहीं मानते। परिवार का कारोबार बट चुका था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मगर मनु भाई ने बेटे से पूछा, आगे पढ़ना चाहते हो? राकेश ने इंग्लिश मीडियम से ही कोई कोर्स करने की ख्वाहिश बताई। उन दिनों बैंगलोर के कई संस्थान 12वीं के अंक पर आधारित विभिन्न तरीके के डिप्लोमा कोर्स कराते थे। राकेश का अगला पड़ाव बैंगलोर बना। पिता ने ब्याज पर कर्ज लेकर फीस के पैसे दिए, ये बात राकेश कभी नहीं भूले। काफी अच्छे ग्रेड के साथ उन्होंने वो पाठ्यक्रम पूरा किया। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हाथ में था, मगर उसके आधार पर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए जोशी कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चरर की नौकरी ले ली, तो चंद महीनों में वो भी हाथ से निकल गई। अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह संवाद न कर पाने की वजह से विषय की महारत पर भारी प्रभाव पड़ रहा था। राकेश बेहद आहत थे। पिता से पैसे नहीं मांग सकते थे और बैंगलोर जैसे महंगे शहर में जीने की बड़ी परेशानियां थीं। आखिरकार वो वसो लौट आए। संजोग से उन्हीं दिनों मशहूर निर्माता निर्देशक देवांग पटेल एक गुजराती धारावाहिक के सिलसिले में वसो शूटिंग के लिए आए। राकेश को उसमें काम करने का मौका मिल गया। एक्टिंग के क्षेत्र में दिलचस्पी उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री के लिए बड़ौदा ले गई, मगर इस दौरान गुजराती धारावाहिकों में इतने काम मिल गए कि उसकी व्यस्तता में वो डिग्री भी अधूरी रह गई। राकेश को काम तो मिल रहे थे, मगर मनपसंद भूमिकाएं न मिलने से वो निराश थे। उन्हीं दिनों ईटीवी गुजराती चैनल में एंकर्स और पत्रकारों के लिए लिखित परीक्षाएं हो रही थीं। पिता ने ही राकेश को ये बताया और उन्होंने फौरन आवेदन कर दिया। साल 2007 की बात है। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए राकेश चुन लिए गए। बतौर एंकर हैदराबाद में उनके इस नए सफर का आगाज हुआ। अगले 7 सालों के पत्रकारीय करियर में राकेश दिल्ली और मुंबई में वॉइस ऑफ इंडिया और मिड डे गुजराती वेब पोर्टल से भी जुड़े, मगर इस बार पिता की खराब सेहत उन्हें फिर वसो ले आई। पिता स्वस्थ हुए तो उन्होंने राकेश से अपने कारोबार के विकल्प पर गौर करने के लिए कहा। राकेश भी इस बार राजी हो गए।
उन्होंने पिता के साथ 2 सालों तक कारोबार और जिंदगी की बारीकियां समझी। नोटबंदी के दौरान पिता ने उनके लिए एक अलग दुकान की व्यवस्था की और इसके साथ ही तरह तरह के सपनों का ये मुसाफिर स्थायी रूप से कारोबारी बन गया। सेवाभावी पिता ने एक दिन राकेश से अपनी दिली इच्छा जताई कि वो गरीब लोगों के लिए राम रोटी सेवा यानी कि मुफ्त भोजन शुरू करना चाहते हैं। तब राकेश ने कुछ बेदिली से कहा कि इसमें तो काफी पैसे लगेंगे, हम ये काम कुछ दिनों के बाद ही कर सकेंगे। इस गुफ्तगु के तीसरे दिन पिता अचानक दुनिया से चल बसे। बेटे के दिल में एक कसक रह गई कि पापा की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो लानत है इस जिंदगी पर। पिता की मौत के तीसरे दिन ही गरीबों को मुफ्त भोजन कराने की राम रोटी सेवा अब विसामो टिफिन सेवा के नाम से बसो तालुका के गांव गांव में मशहूर है। इस क्षेत्र के करीब 500 बेघर अशक्त और गरीब बुजुर्गों को राकेश की संस्था रोजाना मुफ्त भोजन मुहैया कराती है। उनके ट्रस्ट में 18 लोग काम करते हैं। ये अब तक 2.5 लाख टिफिन भोजन वितरित कर चुके हैं। काश देश के हर तालुके को एक राकेश मिल जाए तो कोई बुजुर्ग कभी भूखे पेट नहीं सोएगा, उन्हें कंबल भी नसीब होगा और बिस्तर भी।

आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं अश्विथा शेट्टी जी से। कौन कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई नहीं की जा सकती? अगर देखिए मन में पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो गरीबी हो या कोई दूसरी बाधा, जब कोई व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है तो वो एक दिन कामयाब होकर ही रहता है। आप कहेंगे कहना बड़ा आसान है लेकिन बरतना बड़ा मुश्किल। जी दोस्तों, बरतना मुश्किल तो होता ही है। इस दुनिया में जो कुछ आसान है वो कामयाब तो है ही नहीं। एक छोटे से दक्षिण भारतीय गांव मुकुद्दल में जन्मी अश्विथा शेट्टी ने इस बात को सिद्ध कर दिया। ये एक ऐसे गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं जहां पर लड़कियों को बोझ समझा जाता है, तो ऐसे में पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना तो दूर की बात है। इसके बावजूद अश्विथा ने सभी बाधाओं को पार किया। शिक्षा के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि आज वो कई ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम है द बोधि ट्री। अश्विथा बचपन में अपने परिवार के साथ बीड़ी बनाने का काम किया करती थी। सोचिए दोस्तों, जिस गांव में अश्विथा रहती थी वहां की महिलाओं की हालत बहुत खराब थी। एक तो अशिक्षा और ऊपर से वो पुरुषों द्वारा भी सताई जाती थी। कहीं ना कहीं इससे उन्हें कुछ करने की प्रेरणा मिल गई और बस पढ़ने का जुनून सवार हो गया। दरअसल 13 साल की उम्र में अमेरिकी लेखिका हेलेन केलर की आत्मकथा उन्होंने पढ़ी। बस उसे पढ़कर तो उन्हें एहसास हुआ कि उनमें खुद के जीवन को बदल देने की ताकत तो है। उन्होंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। वो बताती हैं कि उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय शिक्षा के, इसलिए वो हार नहीं मान सकती थीं। शिक्षा के जरिए अश्विथा ने अपनी किस्मत बदल डाली और आज वो पूरी दुनिया के लिए बड़ी प्रेरणा की तरह काम कर रही हैं। वो कितनी ही महिलाओं को पढ़ने में मदद भी करती हैं। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, जो मशहूर दर्शन शास्त्री थे और हमारे देश के पूर्व माननीय राष्ट्रपति भी थे। अपना देश बहुत आगे निकल आया है। अब देश में संपन्नता के अनगिनत ऐसे डेरे हो गए हैं जहां खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पैसा पानी की तरह बह रहा है, निरंतर महोत्सव चलता रहता है। पर एक समय वो भी था

जब भारत में संपन्नता के बस कुछ ही डेरे थे। देश अभावों का जंगल हुआ जा रहा था। अंग्रेज जो भारत से लूटते थे उसका महज 4% ही यहां के लोगों पर खर्चा करते थे। सेहत और शिक्षा पर ना बराबर का खर्च होता था। तो 1901 में देश में सिर्फ 186 कॉलेज और विश्वविद्यालय थे। पूरे देश में मुश्किल से 20-25 हजार ही कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होते थे। कभी विश्व गुरु रहे देश में सिर्फ 5.4% साक्षरता खूब मुंह चिढ़ाती थी। लाखों छात्र चाहकर भी पढ़ नहीं सकते थे। तमिलनाडु के इस तेलुगु लड़के के साथ भी यही स्थिति रही। वो स्कूल पास कर चुका था, आगे पढ़ने के लिए ज्यादा धन चाहिए था और पिताजी इस स्थिति में थे नहीं कि पढ़ा पाते। वो अपने बेटे को सलाह देते रहे कि बेटे पुजारी बन जाओ, सम्मान का काम है, लोगों के साथ उठना बैठना भी आसान हो जाता है। स्कूली शिक्षा के बाद पिताजी तो क्लर्क बन गए थे, लेकिन भला क्लर्क के काम में क्या कमाई होती। मुश्किल से 10 रुपए तनख्वाह मिलती थी। कमाई का कंबल